एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की पंचमी है। तदनुसार 26 जून 2026 शुक्रवार का दिन है। हमारी आज की प्रातकालीन सभा अब आरंभ होती है।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

0: अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्बनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। छोटा हूं, इस समय 6:05 हो चुके हैं। आपको बताते हैं दिन भर में हमारे प्रसारण होने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत

अब से कुछ ही समय पश्चात 6:10 पर आप सुन पाएंगे चिंतन। 6:15 का समय होगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। 6:45 का समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत बहार का। 7:20 पर आप सुन पाएंगे श्री रामचरितमानस गान। 7:30 पर कार्यक्रम नमस्कार चूरू। 8:00 का समय आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारण का, जिसमें आप सुन पाएंगे समाचार प्रभात। और इसके पश्चात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। 8:30 का समय सुगम संगीत के कार्यक्रम सुर संगम का। इसके पश्चात 9:00 आप सुन पाएंगे आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 9:10 का समय देशकान का। 9:15 पर कार्यक्रम धरा की पुकार। 9:30 का समय होगा आपके ईमेल्स पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। 10:00 आकाशवाणी मुंबई से आप सुन पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम। ग्यारह बजकर पांच मिनट पर आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इसके पश्चात 12:00 NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 12:30 का समय होगा लोक संगीत के कार्यक्रम माटी के स्वर का। 1:00 जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 1:05 पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम महिला जगत। 2:00 दिल्ली से आप सुन पाएंगे मिड डे न्यूज। 2:15 पर आप सुन सकेंगे दोपहर समाचार। और 2:30 का समय फिल्म संगीत के कार्यक्रम का तराने नए पुराने। इसके पश्चात सायंकालीन सभा में शाम 5:00 आप सुन सकेंगे युवाओं के लिए कार्यक्रम युववाणी। 6:00 हिंदी में समाचार। 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार, जिसे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा। 6:10 का समय देशभक्ति फिल्मी गीत का। 6:20 पर आप सुन पाएंगे संस्कृत में समाचार। 6:30 का समय आकाशवाणी जयपुर से प्रसारण का, जिसके अंतर्गत पहले आप सुन पाएंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। इसके पश्चात 6:40 पर जिले की चिट्ठी। और 6:45 का समय राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार का। खेती और गृहस्थी ये आप सुन पाएंगे 7:00। 8:00 का समय होगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम गुलदस्ता का। 8:45 पर दिल्ली से समाचार संध्या। 9:00 न्यूज एट 9:00। 9:15 पर कार्यक्रम बातें ही चाले। रात्रि 10:00 ईमेल पर आधारित राजस्थानी गीतों का फरमाइश कार्यक्रम गोरबंद। 10:30 का समय होगा शास्त्रीय संगीत का। रात्रि 11:00 दिल्ली से आप सुन पाएंगे हिंदी में समाचार। और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण और अब प्रस्तुत है चिंतन। शुद्धम चिंतन में आज जिस विचार पर हम चिंतन करेंगे वो इस प्रकार से है कि जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं तब दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। श्रोतों, इस बात से आप भी पूरी तरह से सहमत होंगे कि व्यक्ति के अंदर मजबूती या कमजोरी उसके खुद के मन के विचारों से ही होती है। उसके पीछे कोई बहुत बड़े शरीर की आवश्यकता नहीं होती है, मन की मजबूती की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ी सेना का सेनापति जो शरीर में बाकी जैसे सैनिक होते हैं वैसा ही होता है, लेकिन उसमें अदम्य साहस होता है, उसमें नेतृत्व करने की क्षमता होती है, उसमें बहादुरी होती है, जिसके पीछे वो अपने जैसे सैनिकों की एक बहुत बड़ी सेना को संचालित करता है। आप देखते हैं सर्कस में रिंग मास्टर जो होता है उसकी शारीरिक बनावट अगर देखें तो एक शेर के सामने वो कुछ भी नहीं है, शेर उसको चंद मिनटों में समाप्त कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी उसकी बहादुरी होती है, उसकी एक तैयारी होती है, कलाकारी होती है कि वो शेर को और एक नहीं कई शेर को वो अपने चाबुक से इस प्रकार से संचालित करता है कि जैसे मानो वो उसके गुलाम हो। इस बात से आप बखूबी समझ सकते हैं कि व्यक्ति का जो आत्मबल होता है वही उसकी ताकत होती है। आपने इतिहास में भी ऐसे बहुत से देखे होंगे व्यक्ति जिनको अगर आप शारीरिक तौर पर देखोगे तो वो बिल्कुल पतले से, शरीर में उनके किसी प्रकार की कोई ताकत का आपको आभास भी नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत कुछ ऐसा कर गए जो कि आज के समय में एक मिसाल के तौर पर हम इतिहास में पढ़ते हैं। उनकी बहादुरी के किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति सिर्फ अपने आत्मबल के जोर पर सब कुछ कर लेते हैं। एक सेना जब अपना आत्मबल त्याग देती है तो एक छोटे सी सेना की टुकड़ी से भी वो हार जाती है, लेकिन उसके विपरीत अगर एक छोटी सी सेना की टुकड़ी है लेकिन उसका आत्मबल कमजोर नहीं है, सुदृढ़ है, तो ऐसे में ऐसे उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है कि छोटी सी सेना ने बहुत बड़ी विशालकाय सेना को परास्त कर दिया। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति का आत्मबल होता है, अपने आप पर भरोसा होता है, और जब अपने आप पर भरोसा होता है तो फिर उस व्यक्ति को दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता। चिंतन में इतना ही, और अब भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में ये भक्ति रचना। और इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यही संपन्न होता है। एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 6:45 हो चुके हैं। समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत बहार का।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत आप आए बहार आई, इस फिल्म का जिसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आया सावन झूम के इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत लेखन आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और इसी जोड़ी का लिखा और संगीतबद्ध किया अगला गाना आपको सुना रहे हैं दो रास्ते फिल्म से, आवाज मोहम्मद रफी की।

दो बदन इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोंसले की आवाज में। इस गीत को लिखा शकील बदायूनी ने और इसे संगीत दिया रवि ने। आप सुन रहे हैं FM चूरू से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार।

लता मंगेशकर मुकेश की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे धरती कहे पुकार की। इस फिल्म से इस गीत को लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने और इसे संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मोहम्मद रफी की आवाज में पत्थर के सनम फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं। गीत लेखन मजरू सुल्तानपुरी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, पराया धन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने और इसे संगीत से सजाया आरडी बर्मन ने। और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत गीत बहार का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। और अब समय है श्री रामचरितमानस गान का।

श्री रामचरितमानस के आरंभ में देवताओं, संत, असंत तथा वाल्मीकि जैसे सरस्वती पुत्रों की वंदना के पश्चात तुलसीदास जी ने श्री राम के भक्तों, बंधु बांधवों, सहयोगियों आदि की अभ्यर्थना की है और उसके बाद किया है प्रभु के नाम की महिमा का गान। राजा जनक, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, पवन पुत्र हनुमान, सुग्रीव, जामवंत आदि की वंदना कर भक्त कवि ने अपने आराध्य के चरणों में मस्तक नवाया है। उन्होंने माता सीता को भी प्रणाम निवेदित किया है। श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करते हुए र, आ तथा मा अक्षरों में उन्हें ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के दर्शन हुए हैं।

शो तुम अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान FM 102.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 7:30 हो चुके हैं। समय है कार्यक्रम नमस्कार चूरू का। नमस्कार चूरू का आज का अंक लेकर मैं हूं आपके साथ, आपका साथी राजीव कुमार शर्मा। स्वीकार कीजिए नमस्कार।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चुरू से कार्यक्रम नमस्कार चुरू। कार्यक्रम में हम बात करेंगे आज के दिन की विशेषता की। तो आपको बता दें कि आज मुहर्रम है और इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम की शुरुआत 2026 में 16 और 17 जून से हुई है और मुहर्रम का महत्वपूर्ण दिन यौम आशूरा जिसे कहा जाता है यानी मुहर्रम की 10वीं तारीख और वो आज के दिन हो रही है, इसलिए आज 26 जून को मुहर्रम मनाया जा रहा है। मुहर्रम केवल इस्लामी नववर्ष का प्रतीक ही नहीं है बल्कि इसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व भी है और ये है आशूरा का दिन जो है। इस दिन कहा जाता है कि कर्बला की जंग में पैगंबर मोहम्मद के जो नवासे थे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथी, उनकी इस दिन शहादत हुई खलीफा के पद के लिए जो लड़ाई हो रही थी उसके पीछे उनकी शहादत कर दी गई। अमल और इबादत मुसलमान इस महीने में विशेषकर आशूरा के दिन रोजा रखते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और अल्लाह की इबादत में अपना वक्त बिताते हैं और इस महीने में जरूरतमंदों की मदद करना, गरीबों को दान देना और प्यासों को पानी या शरबत पिलाना बहुत शबाब का काम माना जाता है। इसलिए आज के दिन मुहर्रम के माध्यम से कई जगह इस प्रकार के स्टॉल लगाई जाती है जिसमें इस प्रकार के शरबत वगैरह लोगों को पिलाए जाते हैं। मुहर्रम के मौके पर भारत में राजपत्रित अवकाश होता है जिसके कारण देश भर में सरकारी कार्यालय, बैंक और शैक्षणिक संस्थान बंद रहते हैं। आज के दिन की दूसरी विशेषता आपको बताएं कि आज महान सुधारक और कोल्हापुर रियासत के छत्रपति राजश्री शाहू महाराज की जयंती प्रतिवर्ष 26 जून को मनाई जाती है। वर्ष 2026 यानी आज के दिन उनकी 152वीं जयंती मनाई जा रही है। महाराष्ट्र सरकार इस ऐतिहासिक दिन को पूरे राज्य में सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाती है। शाहू महाराज 26 जून 1874

को जन्म हुआ और 6 मई 1922 को इनका देहावसान हुआ। मराठा साम्राज्य के भोंसले राजवंश के एक ऐसे दूरदर्शी राजा थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन वंचितों, दलितों और शोषितों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। शाहू महाराज का ऐतिहासिक योगदान क्या रहा अगर इसकी बात करें तो 26 जुलाई 1902 को कोल्हापुर रियासत में पिछड़ी जाति और दलितों के लिए नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण लागू किया गया था 50%। इसी ऐतिहासिक कदम के कारण उन्हें भारत में आरक्षण का जनक माना जाता है। मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के मामले में वो भारत के ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने अपने राज्य के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य कर दिया था। उन्होंने गरीब छात्रों के लिए कई छात्रावास भी खुलवाए। उन्होंने अपने राज्य में बाल विवाह पर कड़ा प्रतिबंध लगाया, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी और देवदासी व बंधुआ मजदूरी जैसी क्रूर प्रथाओं को समाप्त किया। यानी इनके द्वारा किए गए कार्यों से आप बखूबी ये जान सकते हैं कि बहुत ही सुधारवादी सोच के महाराजा थे राजश्री शाहू महाराज। शाहू महाराज ज्योतिबाराव फूले के विचारों से गहराई से प्रभावित थे। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिभा को पहचाना, उनकी उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मदद की और 1920 में मणगांव परिषद में उन्हें दलितों का सच्चा नेता घोषित किया था। राजश्री की उपाधि उन्हें कैसे मिली तो उसके लिए आपको बताएं कि उनके लोक कल्याणकारी कार्यों और न्यायप्रियता को देखते हुए कानपुर की कुर्मी क्षत्रिय सभा ने उसे राजश्री यानी राजाओं में ऋषि की उपाधि से नवाजा था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर और अन्य जिलों में इस दिन विभिन्न स्कूलों, कॉलेज और सरकारी दफ्तरों में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके विचारों पर व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं। तो आज के दिन हम नमन करते हैं छत्रपति शाहू जी महाराज को। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू से कार्यक्रम नमस्कार चूरू।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार चूरू और आज इस कार्यक्रम में अब हम आपसे बात करेंगे आज के दिन की विशेषता की। तो आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जाता है। आज 26 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1987 में इस दिन को इस दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा की। इसका मुख्य उद्देश्य था समाज की नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी से मुक्त बनाना। इस साल अगर थीम की बात करें तो प्रत्येक वर्ष जो दिवस मनाया जाता है उसकी एक विशेष थीम होती है। तो इस वर्ष की जो थीम है वो है विश्व दवा समस्या। लगातार बनी रहने वाली समस्याएं, नई चुनौतियां, अभिनव प्रतिक्रियाएं, ये वर्ल्ड ड्रग प्रॉब्लम के रूप में रखी गई और इसको आधिकारिक थीम बनाया गया। ये थीम इस बात पर जोर देती है कि नशे की समस्या समय के साथ और अधिक जटिल हो रही है। इस वैश्विक संकट से निपटने के लिए हमें पुराने तरीकों को छोड़कर नए वैज्ञानिक और सहानुभूतिपूर्ण रास्तों को अपनाने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय यानी UNODC इसके द्वारा जारी इस वर्ष की थीम के मुख्य बिंदु अगर हम जानना चाहें तो हम जान सकते हैं कि लगातार बने रहने वाली समस्याएं जैसे कि पारंपरिक रूप से चली आ रही नशीली दवाओं की तस्करी और लत की पुरानी समस्याओं को पूरी तरह खत्म करना, सिंथेटिक ड्रग्स जैसे फेंटानिल और नए साइको एक्टिव पदार्थ, इनका तेजी से बढ़ता बाजार और इंटरनेट व डार्क नेट के जरिए बढ़ती अवैध सप्लाई, इसके साथ ही साथ रोकथाम और पुनर्वास, इसके लिए आधुनिक तकनीक, डिजिटल जागरूकता और साक्ष्य आधारित स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करना, इस प्रकार के लक्ष्य इस बार थीम के रूप में स्वीकार किए गए हैं और इन पर क्या कार्य किया जा रहा है। यदि आपके पास भी, आपके पड़ोस में, आपके आसपास कोई व्यक्ति नशे की लत से जूझ रहा है और उसे परामर्श या उपचार की आवश्यकता है तो भारत सरकार की राष्ट्रीय नशा मुक्ति हेल्पलाइन 1-4446 इस पर संपर्क कर मुफ्त में सहायता प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा पुनर्वास केंद्रों की सूची और गाइडलाइंस के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसका पोर्टल देखा जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप नशा मुक्त भारत अभियान की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, आपको उसमें पूरी डिटेल मिल जाएगी। आप सुन रहे हैं नमस्कार चूरू।

श्रोताओं, एफएम चूरू से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार चूरू। हमारा अगला प्रसारण आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली से, जिसमें पहले सुनेंगे समाचार प्रभात 8 बजे और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव

की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता

बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2500 रुपये शुल्क देना होगा।

0: विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
1: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
2: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काले रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अपितु संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
3: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है।

0: आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिन्दुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है, ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है, पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना 1,000 रुपये महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई एनआरसी की जरूरत, लोकसत्ते ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि केदार में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and Queen Maxima of Netherlands discuss India's digital public infrastructure-led revolution. Government restores commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several unidentified persons in connection with Ayodhya Ram Mandir donation case. IMF says India continues to be major driver of global economic growth despite economic impact of Iran conflict and higher energy prices. In football, Ecuador advanced to FIFA World Cup knockout stage, beating Germany 2-1 in New Jersey. And in cricket, Shefali Verma powers India to 5-wicket win over Bangladesh in Women's T20 World Cup in Manchester. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi yesterday. Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. Prime Minister Modi will be on a state visit to Seychelles from the 27th to 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with 2 Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, the Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Hermeni, and review the full spectrum

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। हमारा अगला प्रसारण आप सुन पाएंगे आकाशवाणी जयपुर से, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटाए। देश के विभिन्न हिस्सों में मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है और प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मानसून की पहली बारिश हुई। अगले 4 से 5 दिनों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत प्रदेश के प्रमुख शहरों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में प्रस्तावित राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड को अधिसूचित करने की प्रक्रिया को गति देने के निर्देश दिए हैं। इससे भवनों में ऊर्जा की खपत को कम किया जा सकेगा। मुख्य सचिव ने इस कोड के अनुपालन मैकेनिज्म को भी प्रभावी बनाने के निर्देश दिए ताकि प्रदेश में भवन निर्माण के क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्रोत्साहन दिया जा सके। मुख्य सचिव ने यह निर्देश कल शासन सचिवालय में प्रदेश में एनर्जी ट्रांजिशन पर गठित राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। मुख्य सचिव ने सरकारी भवनों में रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के कार्य की समीक्षा करते हुए

कहा कि इससे राजकीय कार्यस्थलों पर बिजली की बचत को प्रोत्साहन मिला है। बैठक में ऊर्जा सचिव आरती डोगरा ने ग्रिड की स्थिरता, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के क्रियान्वयन सहित ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। केंद्र

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को राहत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय रक्षा बलों का एक दल भारतीय नौसेना के 2 जहाजों के साथ समारोह में भाग लेगा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी से बातचीत करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1-800-117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। सुझाव साझा करने का आज अंतिम दिन है। देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से रविवार को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत जन्म से 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों और विशेष रूप से बनाए गए पोलियो बूथों पर यह दवा पिलाई जाएगी। इस दिन खुराक से वंचित रहे बच्चों को 29 और 30 जून को स्वास्थ्यकर्मी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर दवा पिलाएंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आज से उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने की 21 तारीख को आयोजित हुई थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशूरा ए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य, न्याय और नेकी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। प्रदेश भर में इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले जाएंगे। पाली में बांस, लकड़ी और रंग बिरंगे चमकीले कागजों तथा कपड़ों से ताजिए बनाए गए हैं। जुलूस को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं और यातायात मार्ग में बदलाव किया गया है। सवाईमाधोपुर में भी विशेष तैयारियां की गई हैं। मातमी धुनों के साथ विभिन्न मोहल्लों से ताजिए निकाले जाएंगे। इस दौरान समाज के लोगों ने छबील लगाकर ठंडे पेय पदार्थ पिलाने की भी व्यवस्था की है। चूरू में मुस्लिम समाज द्वारा बीती रात कत्ल की रात मनाई गई और शहर से 10 से अधिक ताजिए निकाले गए। इन जुलूसों में मोमिनों द्वारा हैरत अंगेज करतब भी दिखाए गए। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी की है। नए पासपोर्ट बनाने या पासपोर्ट को रिन्यू करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार ये नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने का शुल्क ₹5,000 होगा। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने का शुल्क ₹3,500 होगा और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए राशि ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट का शुल्क ₹1,500 तथा 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट का ₹2,000 है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रीय नशा मुक्ति क्विज की शुरुआत की जा रही है। इस क्विज का उद्देश्य युवाओं को नशे के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ तथा नशा मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। ये क्विज देशभर में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। देशभर के युवा इस ऑनलाइन क्विज में अगले

0: महीने की 15 तारीख तक भाग ले सकेंगे। इसी कड़ी में प्रदेश में भी कई कार्यक्रम हो रहे हैं। सवाईमाधोपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और चिकित्सा विभाग की ओर से कल नशा छोड़ो खुशहाल जीवन जोड़ो थीम पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। सवाईमाधोपुर में बाघ संरक्षण के प्रयास बढ़ाने और वन्य जीवों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर मंथन के उद्देश्य से 5वां रॉयल रणथंबोर इंटरनेशनल टाइगर वीक ITW आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कंजर्व इंडियाज फाइनेस्ट टाइगर थीम पर आयोजित ये कार्यक्रम 28 जून तक चलेगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के वन्यजीव प्रेमी विशेषज्ञ शामिल होंगे।
1: 3 दिवसीय इस आयोजन में देश भर के नीति निर्माता, पर्यावरणविद, पर्यटन उद्योग और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि शामिल होकर बाघ संरक्षण तथा वन्य जीवों की सुरक्षा संरक्षण पर गहन मंथन करेंगे। इनमें पूर्व न्यायाधीश, पूर्व राज्यपाल, इकोलॉजिस्ट, फोटोग्राफर, मूवी मेकर अपने विचार रखेंगे। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरणीय सरोकारों को मजबूत करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को 11 विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया जाएगा। कंजर्वेशन के अतिरिक्त वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, पेंटिंग प्रतियोगिता होगी तथा अग्रिम पंक्ति में तैनात वन कर्मियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत भी की जाएगी। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर।
0: प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मानसून की पहली बारिश हुई। राजधानी जयपुर में करीब 1 घंटे तक तेज हवाओं के साथ हुई बरसात से निचले इलाकों के घरों और दुकानों में पानी भर गया। कई स्थानों पर पेड़ गिर गए। इसके अलावा अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, कोटा, लूणकरणसर, दौसा, धौलपुर, झालावाड़ और जोधपुर सहित कुछ अन्य स्थानों पर भी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य में आगामी 4-5 दिनों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि आज से जुलाई के पहले सप्ताह तक पश्चिमी तथा पूर्वी राजस्थान में सामान्य से कम वर्षा हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने पीएमई ड्राइव योजना के तहत सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटाए। देश के विभिन्न हिस्सों में मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। और प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मानसून की पहली बारिश हुई। अगले 4 से 5 दिनों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय 9:10 हो चुके हैं। प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम धरा की पुकार के अंतर्गत वार्ता। वार्ता का शीर्षक है सौर ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण। वार्ताकार है अरविंद सोनी।

श्रोताओं, सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त की जाती है और सूरज की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही मुख्य रूप से सोलर एनर्जी कहा जाता है। इसके फायदों को देखते हुए दुनिया के अधिकतम देश अब जागरूक हो रहे हैं और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है और सौर ऊर्जा स्वच्छ है। यह कोई कार्बन उत्सर्जन या अन्य गर्मी बढ़ाने वाली ग्रीन हाउस गैसें नहीं बनाता है। यह जीवाश्म ईंधन के खनन या ड्रिलिंग से जुड़े पर्यावरणीय नुकसान से बचाता है। इसके अलावा बिजली संयंत्रों के विपरीत सौर ऊर्जा भी बहुत कम पानी का उपयोग करती है, जो भाप टरबाइनों का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करती है। सौर ऊर्जा कभी खत्म न होने वाला संसाधन है और यह नवीनकरणीय संसाधनों का एक बेहतर विकल्प है। साथ ही यह वातावरण के लिए भी लाभदायक है और ऊर्जा के अन्य स्रोतों की तुलना में यह काफी सस्ता भी है। ऊर्जा की मांग को पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के बजाय सौर ऊर्जा के जरिए आसानी से पूरा किया जा सकता है। साथियों, आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में मनुष्य ने बहुत सारी ऐसी सफलताएं हासिल कर ली हैं जिसकी इंसान कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। ऐसे ही आज हमने ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जिससे धरती पर पड़ने वाली सूरज की किरणों को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। भारत की गिनती ऐसे देशों में होती है जहां

साल में 365 दिनों में से लगभग 300 दिन धूप रहती है। यही कारण है कि सौर ऊर्जा के मामले में भारत का भविष्य काफी अच्छा है, और भारत ही नहीं दुनिया के अधिकतम देश सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज पारंपरिक संसाधनों के माध्यम से विद्युत उत्पन्न करना निरंतर महंगा होता जा रहा है, इसलिए इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। चलिए आज जानते हैं क्या है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है। साल 1839 में इसकी खोज अलेक्जेंडर एडमंड बेस्क्वेरेल ने के द्वारा की गई थी। इन्होंने फोटो वोल्टिक इफेक्ट के माध्यम से बताया था कि सूर्य की किरणों को विद्युत उत्पादन कैसे किया जा सकता है। आज के समय में कई गांवों और शहरों में सोलर पैनल के द्वारा बिजली पैदा कर इसका उपयोग किया जा रहा है। सूर्य की किरणों से आने वाली ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही सौर ऊर्जा कहा जाता है।

सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधनों का सबसे बेहतर विकल्प है। श्रोताओं, सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा से मतलब एक ऐसी ऊर्जा से है जो कभी खत्म नहीं होगी। वैज्ञानिकों का मत है कि धरती पर सूर्य की किरणें आने वाले 500-600 करोड़ वर्षों तक रहेगी। इसलिए हम सौर ऊर्जा से विद्युत पैदा करके पर्यावरण को भी सुरक्षित करके अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। आज पूरी दुनिया के लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक हो रहे हैं। दरअसल पारंपरिक संसाधनों से प्राप्त होने वाली बिजली की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिसके कारण भी लोगों का रुझान सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ रहा है और सरकार की तरफ से भी लोगों को सौर ऊर्जा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सौर ऊर्जा वातावरण के लिए अत्यधिक लाभकारी है, क्योंकि यह वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य कई हानिकारक गैसें नहीं छोड़ती हैं, जिसकी वजह से वातावरण प्रदूषित होने से बच जाता है। सौर हीटिंग, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण और तापीय ऊर्जा आदि सौर ऊर्जा से ही चलती है। सौर ऊर्जा के द्वारा प्राप्त होने वाली बिजली में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होती है। सरकार द्वारा भी सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करने के लिए सोलर पैनल की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सोलर पैनल या सोलर सिस्टम कैसे काम करता है, ये जानना भी जरूरी है। एक देश को आगे बढ़ाने के लिए ऊर्जा के पर्याप्त स्रोत होना जरूरी है। इसी ऊर्जा के स्रोत में एक बेहतर स्रोत है सोलर पैनल। यह प्रदूषण मुक्त ऊर्जा पैदा करता है, इसलिए इसे ऊर्जा का सबसे उपयुक्त स्रोत माना जाता है। इसके अलावा इसमें किसी प्रकार के ईंधन, पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता भी नहीं रहती है। यह सूरज की रोशनी से काम करता है। यह धूप के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करके हमें उष्मा या विद्युत देता है। दरअसल सूर्य से निकलने वाली रोशनी में ऊर्जा के कण पाए जाते हैं।

कहते हैं, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। इन्हीं फोटॉन को ऊष्मा या विद्युत के रूप में प्राप्त करना ही सौर ऊर्जा कहलाता है, और सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ही सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाता है, और सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ही सोलर पैनल का उपयोग किया जाता है। सौर पैनल में परस्पर संबंध सौर सेल लगे होते हैं। यह सौर सेल सिलिकॉन की परतों से बने हुए होते हैं। जब सूरज की रोशनी इन सेल पर पड़ती है तो सेल द्वारा फोटोन की ऊर्जा अवशोषित की जाती है। इसके बाद ऊपरी परत में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन सक्रिय हो जाते हैं और ऊर्जा का प्रवाह आरंभ हो जाता है। फिर ये ऊर्जा बहती हुई सौर पैनल में फैल जाती है। बस इसी तरह से सोलर पैनल ऊर्जा का निर्माण करते हैं।

सौर ऊर्जा हमारे लिए अत्यंत लाभकारी है। सौर ऊर्जा का उपयोग अनेक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। सौर ऊर्जा निकाय को कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि सौर ऊर्जा के पैनलों को आसानी से घरों में कहीं भी रखा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऊर्जा के अन्य स्रोतों की तुलना में काफी सस्ता भी है। यह नवीकरणीय ऊर्जा है जो कभी खत्म नहीं होगी। इसके अलावा जहां बिजली की सुविधा नहीं है या कमी है, वहां लोग अपने घर की छत के ऊपर सोलर पैनल लगवा कर बिजली का उपयोग कर सकते हैं। इसका कोई बिल भी नहीं भरना पड़ता है। सौर ऊर्जा वातावरण के लिए काफी लाभदायक है, क्योंकि ऊर्जा उत्पादन में पूरी दुनिया में

हर साल लगभग 20 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड और कई अन्य दूषित तत्व निकलते हैं, जो कि वायुमंडल को प्रदूषित करने के साथ साथ वायुमंडल में तापमान में वृद्धि का भी एक प्रमुख कारण बनते हैं। साथियों, सौर ऊर्जा के द्वारा पर्यावरण का संरक्षण किया जा सकता है और आने वाले भविष्य को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में खेतों में भी सोलर पैनल का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें बिना किसी बिजली कनेक्शन के प्राकृतिक रूप से बिजली उपलब्ध कर सकते हैं। इसका फायदा यह है कि खेतों में कृषि उपकरणों को चलाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में गर्म पानी करने के लिए विद्युत के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करके खर्च में भी काफी कटौती कर सकते हैं तथा वातावरण को भी प्रदूषण मुक्त रखने में सहयोग कर सकते हैं। साथ ही कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा कृषि पंप के लाभ भी बेशुमार हैं। सौर ऊर्जा से चलने वाले कृषि पंप के द्वारा किसानों को सिंचाई के लिए बिजली और डीजल जैसे महंगे स्रोत पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। इसके द्वारा आप फसलों तक पानी आसानी से पहुंचा सकते हैं। यह वायु प्रदूषण भी कम करते हैं और पर्यावरण के लिए भी अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। आइए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में व्यक्तिगत पहल करते हुए सौर ऊर्जा संयंत्रों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।

श्रोतो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम धरा की पुकार। इसके अंतर्गत वार्ता सुनी आपने सौर ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण। वार्ताकार थे अरविंद सोनी। FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 9:30 हो चुके हैं। समय कार्यक्रम आपकी पसंद का। तो शुरू करते हैं आपके ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। हमें इसके बारे में जिन श्रोताओं ने मेल भेजे हैं उनकी शुरुआत हम करें तो सबसे पहला मेल, और इसका टाइमिंग हम आपको बता दें, 6 बजे से 8 बजे के बीच जो मेल हमें इस कार्यक्रम के लिए प्राप्त होते हैं उनको ही हम इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो ये सबसे पहला मेल जो हम इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं उसको भेजने वाले हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, शुभचंद्र बजाज, कालका बिट्टा बजाज। और इसी क्रम में अगले श्रोता है गांव लोहगढ़ ठाकुराम वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। बागपत यूपी से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। और इसी क्रम में ये श्रोता है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, श्रीमती सरिता, प्रिंस एकांश, बदलापुर मुंबई से प्रणीता गवाणकर, सिद्धांत अर्जुन, और बहापुरा नागपुर से वैशाली शैलेश, सुमित और कुमारी ध्वनि। इस क्रम में अगले श्रोता जिन्होंने हमें मेल भेजा है वो है फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद शेख। और इसी क्रम में अगले श्रोता है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित कुमार, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा, जिला गाजीपुर से या प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल। और इस क्रम में अगला मेल है दतरेंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा का। प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैठण से ये श्रोता है डॉक्टर सुरेश जाधव, अनिता जाधव, आरती, पूजा प्रसाद, सोन।

बेबीसिया जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता, धनोरी तिलीवाला उत्तराखंड से श्रोता है निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू। मजनू का टिल्ला से श्रोता है कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ये श्रोता है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही और महराज जहां। इसी क्रम में अगले श्रोता है पटेल नगर मलौट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजूरिया, गीता रानी जाजूरिया, गगनदीप आरजू और गुड्डू। और अगले श्रोता हमारे पास हैं इसी क्रम में जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। और इस क्रम में ये श्रोता है दत्तरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नोखेलाल। इन सभी श्रोताओं की एक सामूहिक पसंद पे आपको सुनवा देते हैं गीत, और उसके पहले आपको एक श्रोता का नाम और बता देते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में मेल भेजा है। ये है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से एपीएस नावकर, निर्मला नावकर, विशाल, मलकापुर महाराष्ट्र से सोपान तायडे, नारायण इंगले और आशीष मुरहेकर। तो आइए आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत फिल्म शर्मिली से।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अभी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
5: श्रोताओं आप सुन रहे हैं एफएम चुरू से कार्यक्रम आपकी पसंद, जो है आपके ईमेल्स पर आधारित। तो अगला ईमेल जो इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं, उसको भेजने वाले हमारे श्रोता हैं हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष। इस क्रम में अगले श्रोता है छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये राधिका गजभिये, अनिष्का और तन्मय। बिलाई छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिंपल। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। चंडीगढ़ सिटी से हमारे श्रोता हैं विमला अनेजा और सतीश अनेजा। और इसी क्रम में मेरिट कैंट से दिग्दर्शन गॉड, कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई। फाजिल का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशाल खेड़ा, विशु, लड्डी, शालिनी, टिवांशी, वाणी, आरबी खेड़ा और इनके साथ गीत झुमका। अगले श्रोता है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला। गणेशवाड़ी कोल्हापुर से संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका। भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा, सुरिंदर कौर रंधावा। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके और श्रव्या। इसी क्रम में मेरिट कैंट से हमारे श्रोता है दिग्द

दर्शन, और ये श्रोता है संजय साहू पोटिया कला से, पोटिया कला दुर्ग से। इनके साथ है सुजाता, शशांक और सीमा। इसी क्रम में अगले श्रोता है कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान निकट प्रवीण, नगर निगम वार्ड नंबर 28, नाच मंजिल महसूल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज, नदीम, शमीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा। और इसी क्रम में अगले श्रोता है अनिल बी गोड़ के, और इनके साथ है, ये लिखते हैं अंबई तहसील सिल्लोड जिला छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से। इनके साथ है वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री और यज्ञेश। और इसी क्रम में अगला मेल है डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। इसी क्रम में अगले श्रोता है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या। तो श्रोताओं, इस क्रम में और हमारे श्रोताओं के मेल भी हमारे पास हैं, उनको हम शामिल करेंगे। इसके बीच में सभी श्रोताओं के लिए सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। इस क्रम में अगले श्रोता जिनका मेल हमें इस कार्यक्रम के लिए प्राप्त हुआ है वो है टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला श्याम कुमार, चीनू आसमा, दीपक और अनुश्री। गांव फरासी, जिला हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी और पुष्पेंद्र कुमार। इसी क्रम में अगले हमारे श्रोता हैं जिन्होंने कार्यक्रम के लिए मेल किया है वो है धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान और पूजा परिहार। इन्होंने लिखा है भोपालगढ़ राजस्थान से। और इसी क्रम में अगले श्रोता गांव कुम्हार हेड़ा, सहारनपुर से सैयद मसरूर, शायना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और अदीप। और आदर्श नगर मलूट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी, सौरभ, साइना और निवान। पद्मा टेक टाकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से लिखने वाले श्रोता हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल, नीति, स्वरूपि, अश्विन, मंगला बेन और राजेंद्र। और इसी क्रम में हनुमानगढ़ टाउन से राजस्थान से लिखने वाले श्रोता है रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जीशान खान। छत्रपति संभाजी नगर से ये श्रोता है राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राजेश, राशि, श्रीमती शीतल। कुंडलवाड़ी महाराज से गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी, राजेश, राकेश और रिशिता। टोरोवाल नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता थांदी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका और बेबी वाणी थांदी। उमरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से ये श्रोता है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। कच्छ भुज से ये श्रोता है जगदीश सोनी, पारस और प्रतिमा देवी। इसी क्रम में गुजरात गांधी धाम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चुरू से कार्यक्रम आपकी पसंद। इस कार्यक्रम में आप हमें मेल भेज सकते हैं और हमारे बहुत से श्रोता ये शिकायत करते हैं कि उनके मेल कार्यक्रम में शामिल नहीं होते। तो आपको बता दें, 6 बजे से 8 बजे के बीच में जो भी मेल हमें प्राप्त होते हैं उनमें क्रम से हम 6 बजे से मेल शुरू करते हैं और जितने एक कार्यक्रम में मैक्सिमम हम शामिल कर सकते हैं वो करते हैं। इस समय की अवधि से पहले अगर आपने कोई मेल किया है

इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होता है और इस समय के बाद अगर भेजते हैं तो भी शामिल नहीं हो सकता है। इसलिए कार्यक्रम का जो समय है 6 से 8 उसके बीच में आप मेल करें, ना इससे पहले ना इसके बाद, उसको हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं। हमारा अगला प्रसारण आप सुन पाएंगे आकाशवाणी मुंबई से, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम जिसमें आप श्रोता कॉल के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं और अपने विचार रखते हैं। आज भी कुछ ऐसे ही विचार आप श्रोताओं के द्वारा विविध भारती को लेकर, विविध भारती के कार्यक्रमों को लेकर। तो सुनते हैं आज का हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती
1: जी। नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम है जी कल्लू मनियार, त्यूड़ी वाला।
0: कल्लू जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: रामपुर मनियारा और जी जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश।
0: अच्छी बात है, अपने बारे में बताइए, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया, शुक्र है मालिक का, आपकी दुआएं हैं। मेरा चूड़ी का काम है, मैं चूड़ी जो है साइकिल पर ले जाता हूँ।
0: अच्छा, साइकिल पर चूड़ियाँ लगा के आप बेचने जाते हैं?
1: जी हाँ, गाँव में जो रामपुर के चारों तरफ गाँव है ना, उनमें जाता हूँ।
0: तो कैसे बांधते हैं चूड़ियों को साइकिल पे? गिरने का डर नहीं रहता है? चूड़ियाँ टूट जाएंगी तो?
1: अरे बांध के ले जाता हूँ मैं चूड़ी को बहुत अच्छी तरीके से।
0: अच्छा, फिर घर घर फेरी लगाते हैं?
1: अभी फिर मैं गांव में जाता हूँ, फिर बच्चे खुद ही बता दें कल्लू ताऊ जी आ रहे हैं, चूड़ी पहन लो। अच्छा। घर वाले बुला ले रहे हैं फिर।
0: अरे वाह, यानी आप बहुत फेमस हैं कल्लू ताऊ जी के नाम से ना?
1: जी।
0: अच्छी बात है।
1: चूड़ी बेचता हूँ कांच की।
0: कांच की चूड़ियाँ बेचते हैं। तो महिलाएं किस तरह की चूड़ियाँ ज्यादा पसंद करती, कौन सा रंग ज्यादा लेती हैं?
1: मैरून रंग ज्यादा पसंद करती हैं जी।
0: मैरून रंग पसंद करती हैं, चमकदार?
1: हाँ जी, मैरून रंग ज्यादा पसंद करती हैं, और रंग भी तो काफी हैं वैसे, बाकी ज्यादातर मैरून चलता है।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: और कांच की चूड़ी है, शुभ मानते हैं इसको, कांच को?
0: बिल्कुल, हमारे यहाँ सुहाग का प्रतीक मानते हैं चूड़ियों को, कांच की चूड़ियों को पहना जाता है।
1: जब मैं चूड़ी पहना देता हूँ तो नचकारती हैं फिर चूड़ी, फेंटर नचकारती हैं मेरा औरतें, ये सुहाग की चीज है ना
0: जी। तो एक चूड़ी ज्यादा देते हैं आप?

0: बिल्कुल दो देता हूँ जी मैं तो।
1: अच्छा दो दे देते हैं आप?
0: दो जो देता हूँ, जोड़ा ही भगवान तुम्हारा बनाओ रखे, जोड़ा ही मैं दे रहा।
1: अरे वाह, चलिए कल्लू जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बताइए अपनी पसंद का गाना।
0: फिल्म का नाम है जी आपकी परछाइयाँ, और आवाज है रफी की, गाने के बोले ये है तमन्ना तेरे घर के सामने।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी मैं जीतन यादव बड़ा गांव जिला गोना मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैम।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ, दुकान पे बैठा हूँ, आपके नंबर मिला रहा था।
0: अच्छा, क्या दुकान है आपकी, किस तरह की?
1: किराने की दुकान है मैम।
0: अच्छा, सभी सामान रखते हैं?
1: जी मैम।
0: तो सुबह खुल जाती होगी कितने बजे, 8 बजे या 10 बजे?
1: 7 बजे खुल जाती है, रात के 10 बजे तक चलती है।
0: तो लंच में घर जाते होंगे या खाना साथ लेके आते हैं?
1: नहीं नहीं मैम, दुकान घर पे ही है और घर पे ही बैठा रहता हूँ, घर पे ही रेडियो है, विविध भारती का साथ है।
0: अरे वाह, फिर तो आपके मजे हैं कि जब हुआ एक बार घर के अंदर चले गए, खाना वाना खाया, पानी वानी पी, चाय वाय पी और आ गए, है ना?
1: जी जी।
0: मतलब घर के अंदर ही है तो और भी आराम हो गया है, घर के अन्य लोग भी आकर दुकान को संभाल लेते होंगे।
1: जी जी, और आने लोग आते हैं और विविध भारती को सुनते हैं, वो खासकर हेलो फरमाइश सुनते हैं तो बहुत आनंद आता है।
0: आपकी दुकान पे आके सुनते हैं श्रोता?
1: जी।
0: तो उन्हें बताइए कि मोबाइल पे न्यूज ऑन AIR ऐप जो है डाउनलोड कर लें और सुने।
1: जी मोबाइल पे सुनते हैं, पर दुकान से ग्राहक आते हैं भी सुन के जाते हैं।
0: अच्छा लगता है हम लोगों को कि हमारे श्रोता इतनी शिद्दत के साथ हमें सुनते हैं। कैसा लगता है आप सबको हेलो फरमाइश कार्यक्रम?
1: अच्छा लगता है।
0: क्या अच्छा लगता है इसमें?
1: दोस्तों को श्रोताओं को मौका मिल जाता है बातचीत करने का और गाने अच्छे लगते हैं सबसे बड़ी बात।
0: बिल्कुल सही कहा, बातचीत का मौका मिलता है और आपकी पसंद के गाने भी इसमें आते हैं, है ना?
1: जी।
0: तो चलिए आज आपकी पसंद का गाना बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज मजबूर कलम का गीत सुनना चाहता हूँ, रिम झिम बरसता ये बाहर पानी अंदर ये आग लगी है, मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज में गीत है।
0: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये झमाझम गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार मंदाकिनी जी।
0: नमस्कार। अरे आपको पता है मंदाकिनी है इधर?
1: जी मैम आपकी आवाज से पहचान जाते हैं।
0: अरे तो हमारे कार्यक्रम बहुत शिद्दत से सुनते हैं, गहराई से सुनते हैं ना?
1: जी मैम।
0: नाम बताइए अपना।
1: जी मैम मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ, जिला महोबा उत्तर प्रदेश से।
0: कैसे हैं सुनील जी?
1: बहुत बढ़िया मैम।
0: अच्छा
1: आप कैसे हो?
0: मैं भी अच्छी हूँ। अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप सुनील जी?
1: जी मैम अभी तो हम भट्टों में काम करते थे राजस्थान में।
0: अच्छा राजस्थान में कहाँ?
1: जी भरतपुर में करते थे मैम।
0: और अब क्या कर रहे हैं इन दिनों?
1: अभी मैम छुट्टी हुई तो अभी घर आए, दो चार दिन हुए घर आए हुए अभी।
0: अच्छा तो भरतपुर में कैसा लगता है आपको, कैसा माहौल है वहाँ का?
1: जी मैम बढ़िया माहौल है, अच्छा लगता है वहाँ पे रहना, काफी साल हो गए अभी जाते जाते।
0: तो आपका परिवार कहाँ रहता है, महुआ में?
1: जी मैम।
0: तो आते जाते रहते होंगे ना, दिक्कत तो होती होगी अप डाउन करने से?
1: जी मैम दिक्कत तो होती है, अब ऐसा है कि 8 महीनों के लिए चले जाते हैं तो 8 महीना वहाँ पे लगातार काम करना होता है भट्टों पे, तो 8 महीने अब फिर आपके प्रोग्राम तो हम 1 बजे रात से ही सुनना चालू कर देते थे।
0: अच्छा आपको टाइम मिल जाता था?
1: टाइम तो इतना रहता है कि हमको 1 बजे रात को उठना पड़ता था काम के लिए, तो आपका प्रोग्राम 1 बजे रात से ही चालू हो जाता था, फिर सुबह 11 बजे तक, फिर यहाँ पर 4 बजे से आपका प्रोग्राम चालू रहता था करीब 10 बजे तक रात को।
0: क्या बात है ना, प्यार है आपको विविध भारती से कि रात को 1 बजे से कार्यक्रम सुनना शुरू कर देते हैं।
1: जी मैम आपका सखी सहेली का टेलीकास्ट दोबारा होता है 3 बजे रात को।
0: हाँ बिल्कुल,
1: तो रात में सुनना बहुत अच्छा लगता है आपका सखी सहेली कार्यक्रम।
0: अच्छी बात है आप लोग कार्यक्रम सुनते हैं, लेकिन ये जो काम आप करते हैं भट्टों का, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है क्या?
1: जी मैम ये तो मुश्किल काम है, इसमें मेहनत बहुत है।
0: बहुत मेहनत है इसमें तो, और आपको बिल्कुल एक तरह से अपने आप को खपाए रखना पड़ता होगा।
1: जी मैम उसमें मेहनत काम ज्यादा पड़ता है,
0: और उसमें से भी आप समय निकाल कर विविध भारती सुनते हैं और खुश रहते हैं, बहुत अच्छी बात।
1: नहीं
0: है।
1: वो तो ऐसा है कि काम चलता रहता है, विविध भारती में चलता रहता है, उसके बगैर तो मन ही नहीं लगता हमारा, जो सुबह हुआ कि हम सीधा विविध भारती चालू कर देते हैं पहले।
0: अच्छी बात है,
1: सभी लोग सुनते हैं, फिर हम तो ऐसा है कि रात में बिजली रहती, काम बिजली में

0: करना होता है रात को तो एम्पलीफायर में लगा के रखते हैं, जब बिजली चली जाती तो फिर ब्लूटूथ स्पीकर में लगा के रखते हैं।
1: इतनी व्यवस्था कर रखी है आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। हमारे ऐसे जो दीवानगी वाले श्रोता हैं, दीवानगी की हद तक विविध भारती को प्रेम करते हैं, उनसे बात करके हमें अच्छा लगता है। बताइए सुनील जी, आज कौन सा गाना सुनेंगे आप?
0: हेमराज जी के गाया हुआ गाना है, भीगा भीगा मौसम आया बरसे घटा घनघोर।
1: बहुत सुंदर, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हेलो फरमाइश।
0: हेलो
1: मंदाकिनी दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: मंदाकिनी दीदी, मैं बोल रहा हूँ राम बाबू मालवीय, कोलार रोड भोपाल से।
0: स्वागत है आपका राम बाबू जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ दीदी, आप सुनाओ आप कैसे हो, और हमारे विविध भारती की संपूर्ण टीम कैसी क्या है?
0: सब अच्छे हैं, बताइए अपने बारे में। हाँ। राम बाबू जी,
1: अपनी ड्राई क्लीनिंग का काम है, लॉन्ड्री का, और वो काम वाम करते हैं, और अपने परिवार के साथ में जो भी है जो दाल रोटी के लिए कमाते हैं।

0: खाते हैं और बढ़िया आनंद मंगल से जितना परमात्मा ऊपर वाले देते हैं उसी में खुश रहते हैं और विविध भारती सुनते रहते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है, और वैसे भी इंसान को संतुष्ट तो रहना ही होगा एक हद तक, है ना। अगर हमारी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि हम असंतुष्ट रहेंगे तो फिर जिंदगी तो खराब ही होनी है, हमारा वर्तमान खराब ही होना है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
0: आज गाना सुनना चाहेंगे, फिल्म का नाम है पापा कहते हैं, उसमें गाना है उसकी आवाज में, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही।
1: बहुत सुंदर गाना सुनना चाहते हैं आप।
0: वैसे दीदी आपके यहाँ के प्रोग्राम जो आपने नए शुरू किए वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमने चिट्ठियाँ भी भेजी है मन चाहे गीत में।
1: अच्छा चलिए सुने आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: संदीप कुमार मक्कड़, पींगा वाला चौक, गोरैया, पंजाब डिस्ट्रिक्ट जलंधर से आपका निमिष होता।
0: जी स्वागत है आपका संदीप जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं, आपका साथ है तो अच्छा, ना हो तो
0: और भी अच्छा।
1: जी हाँ जी हाँ,
0: बताइए क्या करते हैं संदीप जी आप?
1: मेरा वैसे फोटो फ्रेम और लेमिनेशन का काम है, इसके अलावा मैं गाता भी हूँ और लिखता भी हूँ।
0: अरे क्या गाते हैं और क्या लिखते हैं बताइए।
1: मैंने अपना हिंदी सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया है, मैं लिखता भी हूँ, हिंदी सॉन्ग लिखता हूँ और मैं सूफी सॉन्ग भी लिखता हूँ। गाने के कुछ बोल हैं वो सुनाना चाहूंगा।
0: गा के सुनाइए।
1: चलती ट्रेन में चलती चाय पी ले पी ले, तू मेरा हिंदू तो मुस्लिम भाई, पी ले आएगी सुस्ती मड़ेगी सुस्ती, एक्ट प्याली पी ले भाई पी ले पी ले, ओ सब है मुसाफिर दिल के अच्छे, सब है मुसाफिर दिल के अच्छे, कान कहाँ पर उतरेगा भाई पी ले, ओ चाहे मेरी गरम मसाला, पिएगा कोई किस्मत वाला, गोरा हो या बिल्कुल काला, खुल जाएगा दिल का ताला, कहता रहेगा कहने वाला, चलता रहेगा चलने वाला, सुन ले भाई सुन ले लाला, आगे मेरे फौजी भाई, तेरे पे कुर्बान में भाई, तुम हो सबकी जान हो भाई, बैठो तुम भी चाय है आई, बैठो तुम भी चाय है आई। ये है मेरे गाने के
0: क्या बात है,
1: अंतरा सुनाया।
0: अच्छा जो लिखते हैं कैसी सूफियाना कविताएं लिखते हैं?
1: सूफियाना जैसे मैं सूफियाना भी सुनाना चाहूंगा। सब सियाने मिलते ने, सब सियाने मिलते ने, ते कमला कोई कोई, ओ बोलण वाले मिलते ने चुप कोई कोई, तांदा मेला मंदा मेला, तांदा मेला मंदा मेला, ते समझे कोई कोई, ओ सब सियाने मिलते ने ते कमला कोई कोई।
0: बहुत अच्छा लगा संदीप जी, अपने शौक को आगे बढ़ाइए, लिखते रहिए और इसी तरह गाते रहिए। अगली मुलाकात में फिर आपसे कोई नया गीत सुनेंगे, बताइए।
1: तो मेरी 30 तारीख को मैरिज एनिवर्सरी भी है, मेरी वाइफ ज्योति है उसके लिए डेडिकेशन है, उनको सुनाना चाहूंगा। फिल्म है बीवी हो तो ऐसी, गाना है फूल गुलाब का, लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: परम माननीय दीदी चार सपेन चार है। नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: जी मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: जी स्वागत है आपका, बहुत पहले आपसे बात हुई भी है।
1: जी जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना, मैं आपका वही जाना पहचाना श्रोता हूँ।
0: अच्छा, आपका नाम है शारदा
1: जी,
0: तो आपका ये नाम किसने रखा?
1: मेरे पिताजी ने रखा है और मैं बसंत पंचमी के आसपास माँ शारदा की कृपा से प्राप्त हुआ था माता पिता को। तो मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, न छल न कपट न प्रमाद हूँ, न छल न कपट न प्रमाद हूँ, मैहर की देवी माँ शारदा का प्रसाद हूँ।
0: बिल्कुल वही हमने जानना चाहा कि ये जो नाम है महिलाओं का ज्यादा होता है शारदा, पुरुषों में बहुत कम ऐसे नाम सुनाई देते हैं, तो जानने की हमारी इच्छा हुई कि शारदा नाम क्यों रखा गया, कैसे रखा गया, तो आपने बता दिया है।
1: मेरे बहुत लंबे लंबे बाल भी हुआ करते थे लड़कियों जैसे, और मैं कॉलेज तक मैं यूं ही लंबे बाल रखा करता, गोरा चिट्टा रंग था मेरा और भोला सा चेहरा मासूम सा, तो बहुत से लड़के मुझे को लड़की समझ के लिए दोस्ती करते थे कि ये लड़की जरूर होगी।
0: हाँ।
1: लड़के की भेष में रहती है।
0: वाह बहुत अच्छा लगा। देखिए एक नाम के पीछे कितनी चीजें छुपी होती है ना, और अब कैसा लगता है आपको, अब लोग जानते हैं कि भाई ये तो शारदा प्रसाद जी हैं, शारदा कुमारी नहीं है।
1: सब लोग जानने लगे हैं शारदा प्रसाद प्रजापति हैं, और अब तो दाढ़ी मूछें सब हो गई हैं, तो लोग बात जानते हैं।
0: क्या करते हैं शारदा जी?
1: मैं घर पर रहता हूँ और बच्चों के साथ में आनंद पूर्वक आकाशवाणी और विविध भारती से जुड़ा रहता हूँ। रेडियो सुनना ही मेरा शौक है, दीवानगी है, जुनून है, और जब आकाशवाणी विविध भारती में हमारा फोन लगता है चुरीली हर दिल की धड़कन, तो बस हृदय प्रफुल्लित गदगद हो जाता है। इतनी खुशी इतनी प्रसन्नता होती है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, बस ये तो महसूस करने वाली बातचीत होती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और हम भी महसूस करते हैं अपने श्रोताओं की दीवानगी को। बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है विरासत है, कुमार सानू और चित्रा जी ने गीत गाया है, जावेद साहब ने लिखा है और अनु मलिक का संगीत है। गीत के बोल है, पायले चुनमुन चुनमुन झांझरे रुनझुन रुनझुन,

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हाँ जी दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मंदाग्नी जी बोल रही है?
0: हाँ जी हाँ जी
1: जी जी, गजराज ज्योति बात कर रहा था, रेला ही राजगढ़ ब्यावरा मध्य प्रदेश से।
0: अरे स्वागत है आपका गजराज जी, कैसे हैं?
1: दीदी बहुत अच्छे, मुझे आपकी जो आवाज है ना बहुत प्रिय लगती है।
0: क्या बात, ये तो आप लोगों का प्यार।
1: और शायद मैंने दीदी आपको बीकानेर से भी सुना है।
0: बिल्कुल सुना होगा, आप लोग तो वैसे भी दीवाने हैं आकाशवाणी के, रेडियो के, और हमारे श्रोताओं की वजह से ही। तो देखिए ना आज आकाशवाणी कितना आगे निकल गया है।
1: जी जी जी,
0: बताइए गजराज जी आप क्या करते हैं, अपने बारे में थोड़ा बताइए।
1: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ, और इसके अलावा जो समरसिबल रहते हैं खेतों के लिए पंप, उनकी रिपेयरिंग भी होती है हमारे यहाँ।
0: आपके पास मतलब शॉप है?
1: जी।
0: अच्छा, आप करते हैं?
1: जी।
0: अरे वाह क्या बात है, तो फिर एक पन दो काज हो गया, खेत भी संभाल लिया और ये काम भी कर लिया,
1: और साथ साथ रेडियो तो हमको मिलता ही रहता है विविध भारती। तो
0: वो तो आपकी खुराक में शामिल है ना, हो सकता है एक रोटी कम खा लेते होंगे, लेकिन विविध भारती सुनना नहीं भूलते आप श्रोता लोग।
1: नहीं भूलते हैं। जी, जी जी जी,
0: बहुत अच्छा लगता है हमें। तो गजराज जी आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: सौदागर मूवी का है, इमली का बूटा बेरी का पेड़।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत है, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मंदाकिनी जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं बढ़ापुर बिजनौर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं
0: बोलिए, नाम बताइए।
1: नाम एम ताहिर है, यानी मोहम्मद ताहिर।
0: मोहम्मद ताहिर साहब, स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: शुक्रिया मैम, बहुत बढ़िया, आपकी दुआएं हैं।
0: देखिए, ऐसा है कि आप अच्छे हैं तो अपने अच्छे कार्यों से अच्छे हैं आप, और ईश्वर की आप पर जो है अति कृपा है, अल्लाह की है ना?
1: जी जी, सब ऊपर वाले के कर्म से सब सही है।
0: क्या करते हैं ताहिर जी आप?
1: मैडम जी, मैं एक शॉपकीपर हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है।
0: अच्छा, किस विषय पर?
1: जी मैंने बाई इकोनॉमिक्स किया था।
0: तो आपने अपनी दुकान संभाल रखी है या अपने पिता की?
1: जी पापा बैठते थे, उसके बाद मैं बैठता हूँ, बस अब उन्होंने फिलहाल रेस्ट के लिए।
0: किस तरह की दुकान है
1: ये? लेडीज की है, आपसे ही मुतालिक सारे सामान है इसमें, जैसे गिफ्ट होते हैं, बैंगल्स होती है और कॉस्मेटिक्स वगैरह।
0: तो आपने एमए इकोनॉमिक्स में किया, तो आगे कुछ और एग्जाम्स वगैरह नहीं दिए क्या? आपका उद्देश्य यही था कि पिता के व्यवसाय को संभालना है?
1: बात ये थी कि उसके लिए कहीं जाना पड़ता और पापा जी को मुझे अकेला कहीं भेजना मंजूर नहीं था।
0: अच्छा, हाँ, ये हमारे माता पिता का जो अति मोह है संतान के प्रति ना, उसमें वैसे अच्छी बात है कि हम ताउम्र माता पिता का साथ दे पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छूट भी जाता है जिंदगी में। हालांकि कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, आप खुश हैं तो सब अच्छा है।
1: बहुत बढ़िया जी।
0: तो बताइए, गाना कौन सा सुनेंगे?
1: कन्यादान से मेरी जिंदगी में आते, रफी साहब की आवाज।
0: क्या बात है, तो कुछ और बात होती।
1: जी जी,
0: कोई खास मकसद इस गाने को सुनने का?
1: नहीं मैम, अल्फाज सही है, आवाज तो कोई कहने के दो राय है ही नहीं इसमें।
0: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए
1: जी। मैं जलंधर सिटी पंजाब से सोनू बात कर रहा हूँ जी।
0: सोनू जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं जी। आप मीनाक्षी जोशी जी बात कर रहे हैं?
0: हाँ जी।
1: हाँ जी मैडम जी, क्या नमस्कार आपको।
0: सुनते हैं हमारे कार्यक्रम
1: जी। मैं तो रेगुलर आपसे जुड़ता रहता हूँ फेसबुक के माध्यम से।
0: क्या बात है।
1: हाँ जी, बस क्या होता है ना, कभी कभी इबारत कुछ समझ में नहीं आती, फिर आप दो क्वेश्चन भी पूछते हैं।
0: आप जवाब देते हैं उसका?
1: हाँ जी, मैं जरूर पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जवाब दूँ आपको और मेरा नाम जुड़ा रहे वेद भारती के साथ में।
0: तो सवाल तो बिल्कुल सीधे साधे होते हैं और एक कार्यक्रम को थोड़ा सा लाइवनेस बनाने के लिए करना पड़ता है, नहीं तो कार्यक्रम बिल्कुल उबाऊ हो जाएगा।
1: और विविध भारती का प्रोग्राम, लेकिन जब से स्टार्ट हुआ है विविध भारती का, तब से मेरे ग्रैंडफादर, फादर मेरे और मैं, वो कभी भी बोझ महसूस नहीं हुई। इतने बढ़िया प्रोग्राम होते हैं विविध भारती के।
0: मतलब आपके दादा की विरासत को आपके पापा ने संभाला और अब आप संभाल रहे हैं, है ना? जैसे हम उनके कामों को संभालते हैं कि भाई हमारे दादा की ये बिजनेस था और उनके बाद पिता ने और पुत्र ने संभाला, तो विविध भारती सुनने की भी आप लोगों ने ये एक ले रखा है प्रण की हमारे दादाजी की सुनने की आदत को हम भी सुनने में डाल लेंगे।
1: उन्होंने कहा था ना, चैनल वो सुना जाए जिसमें अच्छी ज्ञानवर्धक बातें हों। तो रेडियो ऐसा माध्यम है कि कभी इसमें गलत जानकारी मिलती नहीं, सही मिलती है हमेशा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और आप लोग इतने प्यार और ईमानदारी से सुनते हैं, सबसे बड़ी बात ये है, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग कार्यक्रम पेश करते हैं और आप लोग इतनी संजीदगी के साथ अपनी बात कहते हैं।
1: जी मैडम जी, देखिए आप जितनी वीडियो पोस्ट करते हैं ना फेसबुक पर, वो सभी मैं देखता रहता हूँ और सभी में लाइक भी करता हूँ। तो आपने 90 साल का जो जश्न मनाया वो भी मैंने देखा।
0: चलिए तो आप बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको।
1: मैंने गाना सुना है जी दोस्ताना मूवी का, किशोर दा और आशा जी की आवाज में, बहुत खूबसूरत गीत है। दिल लगी ने
0: दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई
1: और आग जल पड़ी।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मैं संतोष जी आड़ा बोल रहा हूँ, ग्राम चिड़ाव कंजर डेरा देवास जिले से।
0: स्वागत है संतोष जी, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया है, ट्यूट हो गया हमको, रेडियो सुनते रहते हैं आपका प्रोग्राम, बचपन से सुन रहे हैं जी। आज 44 साल की उम्र हो गई हमारी, और रेडियो समय से सुन रहे, जो सेल वाले शुरू स्टार्ट हुए थे।
0: कैसा लगता है रेडियो सुनने से, जिंदगी संवर गई आपकी?
1: रेडियो दीदी हम है ना, हमारे फार्म हाउस पे मस्त सुना करते हैं, मजदूर काम किया करते हैं, और आपकी वीर भारती पूरी टीम को हम बधाई देना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे लिए इतने सुंदर सुंदर कार्यक्रम लाते हो, फोन इन कार्यक्रम लाते हो, और गाने पुराने सदाबहार जो सुनाते हो, बहुत बहुत अच्छा लगता है।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा, आप इतने गहराई से हमारे कार्यक्रम सुनते हैं और उनके बारे में अपने विचार भी रखते हैं। वैसे आप खुद क्या करते हैं संतोष जी?
1: जी खेती गृहस्थी का काम है, खेती गृहस्थी का।
0: तो अभी क्या है आपके खेत में?
1: जी अभी खाली पड़ा है, बस वर्षा दीदी का इंतजार है, जैसे पानी गिरता है वो हम सोयाबीन लगाएंगे दीदी।
0: तो सोयाबीन की खेती में कितनी मेहनत मशक्कत हो जाती है, कितना ध्यान रखना पड़ता है?
1: दीदी जो अब जो सोयाबीन की फसल है बिल्कुल बेकार हो चुकी है, सिर्फ ये मेहनत फसल है, जैसे पानी का इंतजार रहता है,
0: हाँ।
1: खेतों में चारा उगवाता है तो दवाई का इंतजार रहता है, डोरे लगाना पड़ता है, बेलों का समय रहा नहीं, ट्रैक्टरों से लगाते हैं और फिर भी चारा नहीं मरता, फिर डबल दवाई उड़ाते हैं, बिल्ली की दवाई उड़ाना पड़ता, बहुत कठिन का काम है ये सोयाबीन पैदा करना। उसके बाद भी फिर मौसम सहयोग नहीं देता है तो फिर बैठक भी बहुत कम होती है हम किसानों को, सोयाबीन की फसल में तो बहुत घाटा है।
0: सही कहा आपने, बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। तो फिर सोयाबीन की फसल को बार बार फिर क्यों बोते हैं, कोई कारण है खास?
1: मेहनत का तो है, फिर भी क्या है इसमें नुकसान चीज नहीं होती। अभी हम मक्का लगा दें तो जंगली सुअर खा जाते हैं, मूंगफली लगा दें जंगली सुअर खा जाते हैं, रतालू की फसल करे तो वो भी जंगली सुअर खा जाते हैं, उड़द दाल वगैरह पैदा करते हैं तो हिरन खा जाती, हिरन भी बहुत है हमारे इधर।
0: अच्छा तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता होगा आपको, तो ये तो 24 घंटे की निगरानी हो गई।
1: जी ये क्या है सोयाबीन में निगरानी नहीं रखना पड़ता है, दूसरी जो फसल है इसमें बरोबर निगरानी रखना पड़ता है।
0: तो इसलिए आप सोयाबीन को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देते हैं ना, कि सोयाबीन की फसल लग जाए। तो अपने गाँव के बारे में बताइए थोड़ा सा, कैसा है आपका गाँव?
1: हमारा गांव बहुत सुंदर है, ऐसे तो हमारे गांव के पोहे और समोसे कचौरी बड़े फेमस है।
0: क्या बात है, पोहे और समोसे?
1: यस।
0: मुंह में पानी आ गया हमारे, देखिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने हमें एक नई जानकारी दी है सोयाबीन की खेती के बारे में। तो

0: संतोष जी आप गाना बता दीजिए।
1: गाना है वो प्यार हमारा अमर रहेगा याद करेगा जहाँ।
0: फिल्म का नाम क्या है?
1: मुद्दत।
0: मोहम्मद अजीज की आवाज़
1: जी।
0: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का गीत फिर।

0: था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें, ताकि हम अन्य श्रोताओं को इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर दे सकें। हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 02228670288, दूसरा नंबर 02240024662। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: 1978 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
0: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के प्रोग्राम FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। कार्यक्रम विवरण में अब आप जानेंगे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और उनके प्रसारण समय के बारे में।

अब से कुछ ही पलों बाद दिन में 11:05 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन सकते हैं दिन में 12:00। लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर होगा दिन में 12:30 पर। आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे दिन में 1:00। 1:05 पर महिलाएं सुनेंगी अपना प्रोग्राम महिला जगत। आकाशवाणी दिल्ली से मिड डे न्यूज का प्रसारण किया जाएगा दिन में 2:00 और दोपहर समाचार होंगे 2:15 पर। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का प्रोग्राम तराने नए पुराने।

कार्यक्रम युववाणी के साथ हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे। शाम 6 बजे हिंदी में, 6:05 पर अंग्रेजी में और 6:20 पर संस्कृत में समाचार होंगे आकाशवाणी दिल्ली से। प्रादेशिक समाचारों में शाम 6:30 पर हिंदी में और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार होंगे आकाशवाणी जयपुर से। आकाशवाणी जयपुर से इस जिले की चिट्ठी होगी शाम 6:40 पर। खेती और गृहस्थी, ग्रामीण श्रोता सुनेंगे ये कार्यक्रम शाम 7 बजे।

गुलदस्ता फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम आप सुन सकते हैं रात 8 बजे। आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या का अंक रिले किया जाएगा रात 8:45 पर और रात 9 बजे News@9। बाता ही चाले ये कार्यक्रम होगा रात 9:15 पर। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी राजस्थानी गीतों का प्रोग्राम गोरबंद। शास्त्रीय संगीत आपको सुनवाएंगे रात 10:30 पर। सभा के अंत में रात 11 बजे हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे आकाशवाणी दिल्ली से। कार्यक्रम विवरण में अभी आपने जाना हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और उनके प्रसारण समय के बारे में।

आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है एफएम 110.7 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11:05 होने को हैं। अगला प्रोग्राम आप सुनेंगे चित्रपट संगीत।

आकाशवाणी का ये चुरू केंद्र है FM 110.7 MHz पर। दिन के 11:05 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बागबान फिल्म का गीत सुदेश भोसले और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत लिखा है समीर ने और धुन तैयार की है आदेश श्रीवास्तव ने।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

अमित कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे गुलशन बावरा के शब्दों को आरडी बर्मन की धुन पर। फिल्म थी इंद्रजीत। आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत आकाशवाणी चुरू से FM 100.7 MHz पर।

अमित कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे नास्तिक फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया कल्याण जी आनंद जी ने। श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी चुरू से चित्रपट संगीत FM 100.7 MHz पर।

ये थी आशा भोसले, फिल्म थी अनामिका। इस गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत राहुल देव बर्मन का।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।

श्रोताओं, अब आप सुनेंगे अकेला फिल्म का गीत सुदेश भोसले की आवाज में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। प्रोग्राम है चित्रपट संगीत।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं यादें फिल्म का गीत आशा भोसले, सुखविंदर सिंह और उदित नारायण की आवाजों में। साथ दे रही हैं सुनिधि चौहान, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया है अन्नू मल्लिक ने।

नीरज, श्रीधर, सुकृति, कक्कड़ और साथियों की आवाजों में अभी आपने सुना कुमार का लिखा हुआ और अमाल मलिक का संगीतबद्ध किया गोलमाल अगेन फिल्म का गीत। ये फिल्मी गीत इस समय आप आकाशवाणी के चुरू केंद्र से सुन रहे हैं FM 100.7 MHz पर। प्रोग्राम है चित्रपट संगीत। सनम तेरी कसम, लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत कुमार सानू और सुनंदा की आवाजों में। शब्दकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: वेलकम फ्रेंड्स टू द शो दैट नेवर एंड्स। आई हैव टेकन द चांस टू मेक यू डांस। यू विल मूव योर फीट एंड ग्रूव टू द बीट। सो देन व्हिच बीट वुड यू लाइक? दोस्तों, कौन सा डांस पसंद करेंगे आप? रॉम्बा?
2: नो।
1: सांबा?
2: नो।
1: रॉम्बा?
2: नो।
1: सांबा?
2: नो।
1: टेकिला?
2: नो।
1: टैंगो?
2: नो।
1: चार्ल्स्टन?
2: नो।
1: पोल्का?
2: नो।
1: नो?
2: नो।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं जावेद जाफरी, किशोर कुमार और एस जानकी की आवाजों में मेरी जंग फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

चित्रपट संगीत का ये अंतिम गीत आप सुन रहे थे श्वेता शेट्टी, अभिजीत भट्टाचार्य और साथियों की आवाजों में। फिल्म थी सलाखें। इस गीत को लिखा समीर ने और संगीतबद्ध किया दिलीप सेन समीर सेन ने। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब यही संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत एफएम 100.7 MHz पर। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहां घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आँखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ

जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं

0: कर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजो की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजो की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर, और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये, मन ही की प्रतीत।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
2: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर, ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
2: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
1: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
2: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
3: Stephen, happy birthday to you!
4: Happy birthday to you, Stephen!
5: Thank you.
4: How are you?
6: Happy birthday, Stephen! Thank you,
5: Congratulations.
6: Thomas.
5: Congratulations!
6: Thank you, John. Thank you so very much. Hi, yes. Martin. How are you?
3: Oh, fine, fine!
6: Thanks for coming in. Please come in. Please.
4: Oh, yes, sure. Yes. Why not? Why not?
3: Come. Hey!
4: Come.
3: John, please come here!
4: Oh, sure. Hey.
6: Join us for a drink, please.
1: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
4: हाँ

0: पूरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओह गॉड, ओह गॉड।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,

0: 메리, 잘못다. 메리, 네, 왜 안 갔다세? 아니, 못해. 네, 왜 안 갔다? 샤리르세, 아니, 문, 메, 어디에 해?
1: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुशदिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
2: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुई। ১৯৮৫ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
1: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
2: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
1: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,
3: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
4: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
3: ओह।
4: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
3: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
4: जी।
3: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
4: तो लीजिए, सुनिए।
5: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
1: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
2: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
1: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
2: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
6: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीम

0: नियमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
1: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
2: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
0: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
1: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
3: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
2: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
4: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
1: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
2: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
1: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
6: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम, आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली।
7: हाँ।
6: गुड़िया गौरव सब तैयार?
8: हाँ जी बाजी, हम तैयार हैं।
6: वेरी गुड, तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
8: आग का गोला?
6: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दूं प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
7: सूरज।
6: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई।

0: तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो,
1: बहुत आसान पूछते हो।
0: ओफो क्या करूं, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं है।
1: कि अगली बार में बहुत मुश्किल।
0: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूं, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियां तुम्हारे पास होती है ना? मैं कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
1: मुझे पता है सूरज आग का गोला होता है।
0: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है,
2: वो तारा होता है।
0: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक,
3: वो रात और दिन भी बनाता है।
0: एकदम सही एकदम सही,
4: वो हमें धूप भी देता है।
0: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
1: धूप से इतना अच्छी बात भी होती है।
0: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
1: विटामिन डी।
0: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश बहुत अच्छे।
4: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
0: हाँ हाँ बिल्कुल,
1: पेड़ों को खाना भी देता है।
0: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा, इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
1: धीरे धीरे रात घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
0: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं, और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
1: हाँ
3: जब तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
0: हाँ हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर, इसलिए दिन और रात हो रहे हैं, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
1: मौसी जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
0: हाय हाय क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना
1: वो तेज चलती है, ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
4: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
0: ना।
4: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
0: हाँ और सर्दियों में अच्छा लगता। तो बच्चों सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
1: मौसी वो बहुत बड़ा भी होता है।
0: बहुत बड़ा होता है
4: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
0: हम क्योंकि कई
1: दूर होता है इसलिए,
0: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
1: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
0: हाँ
4: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
0: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
5: सर्दी।
0: ओह ऐसी वाली सर्दी ना। अच्छी लगती है सर्दी।
1: पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
0: हाँ शुक्र है गर्मी में नहीं लगती है। सूरज आग का गोला, लेकिन
5: सूरज आग का गोला लेकिन
0: फिर भी जीवन दाता है,
5: फिर भी जीवन दाता है।
0: धरती काटे चक्कर इसके,
5: धरती काटे चक्कर इसके।
0: लगे ये चलता जाता है,
5: लगे ये चलता जाता है।
0: सर्दी गर्मी बनते इससे,
5: सर्दी गर्मी बनते इससे।
0: ये दिन रात बनाता है,
5: ये दिन रात बनाता है।
0: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक,
5: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
0: सूरज ये
5: कहलाता है।
0: शाबाश सूरज ये कहलाता है, सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
1: मौसी कर पहेली आज ही बता दो।
0: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है
4: जल्दी आना मौसी।
0: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
1: हमें देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
0: मैं तो डर रही हूँ भाई, मैं कल आऊँ कि नहीं आऊँ।
1: वो भी दस पूछेंगे,
0: दस दस पहेलियाँ। अच्छा चलो मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना। डर जाती
1: है। और आपके कुल मिला के 70 हो जाएंगे।
0: 70 हो जाएंगे? वो 10 से एकदम 70
4: नहीं, 80 हो जाएंगे।
0: फिर 100 हो जाएंगे, फिर 200।

0: इससे पहले कि ये 500 तक पहुंचे मैं जा रही हूँ। टाटा बाय बाय।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। FM 100.7 MHz पर ये आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। दोपहर के 12:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। आज की कलाकार हैं माधवी शर्मा और उनके साथी।

0: हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का एक बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। आज देश राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को नमन कर रहा है। उनकी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया संदेश में कहा है कि साहित्य के एक तेजस्वी प्रकाश स्तंभ के रूप में उनकी रचनाओं ने भारतीयों की कई पीढ़ियों में देशभक्ति और सांस्कृतिक गौरव की भावना जगाई है। उनका समृद्ध साहित्यिक योगदान आज भी लोगों को प्रेरित करता है और राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारे सामूहिक संकल्प को मजबूत करता है। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी चट्टोपाध्याय जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा है कि उनकी अमर रचनाएं और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत विचार युगों युगों तक देशवासियों को राष्ट्र सेवा और मातृभूमि के प्रति समर्पण की प्रेरणा देते रहेंगे। इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाने वाला मुहर्रम आज पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश भर में जुलूसों के साथ मातम मनाया जा रहा है और मजलिसें आयोजित की जा रही हैं। राजधानी जयपुर में आकर्षक सजावट के साथ छोटे बड़े ताजियों के साथ बड़ी संख्या में मोमिन मातमी प्रदर्शन कर रहे हैं। दिन भर निकलने वाले ये जुलूस और ताजिये रात में करबला में सुपुर्द खाक किए जाएंगे। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में विशेष धार्मिक रस्में अदा की जा रही हैं। यहां दुआ, फातिहा और नियाज का आयोजन हो रहा है। जालौर में मेहंदी की रस्म अदा कर ताजिये मोहर्रम पोल से शुरू होकर विभिन्न मोहल्लों से गुजरते हुए बड़ी पोल पहुंचे हैं। यहां से इन्हें करबला के मैदान में ले जाया जा रहा है। कई स्थानों पर छबीलें लगाई गई हैं। सभी जिलों में जुलूस को लेकर स्थानीय प्रशासन ने आम लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और यातायात मार्ग में बदलाव किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान त्याग, साहस, दृढ़ विश्वास और मानवीय मूल्य का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रीय नशा मुक्ति क्विज की शुरुआत की गई है। ये क्विज देशभर में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। देशभर के युवा इस ऑनलाइन क्विज में अगले महीने की 15 तारीख तक भाग ले सकेंगे। इसी कड़ी में प्रदेश में भी कई कार्यक्रम हो रहे हैं। पाली में नगर निगम की ओर से बैनर और पोस्टर के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने और स्वस्थ, सुरक्षित तथा खुशहाल समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाने का आह्वान किया जा रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी से जागरूकता फैलाने, नशा मुक्ति में लगे लोगों का समर्थन करने और युवाओं को नशे की बजाय आशा, स्वास्थ्य और उद्देश्य को चुनने के लिए प्रेरित करने के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से आम जन से नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लेने की अपील की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज से उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने की 21 तारीख को आयोजित हुई थी। देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से रविवार को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत जन्म से 5 साल तक के

सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों और विशेष रूप से बनाए गए पोलियो बूथों पर ये दवा पिलाई जाएगी। इस दिन खुराक से वंचित रहे बच्चों को 29 और 30 जून को स्वास्थ्य कर्मी और

जी बहनों, कार्यक्रम महिला जगत में आप सभी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप आज के खास कार्यक्रम महिला जगत में मैं आपके साथ में हूँ अनुराधा, स्वीकार कीजिए। नमस्कार।

जी हाँ बहनों, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत आज़ादी के समय भी ये पूरे जोश के साथ में गाया जाता था और इसको सुनकर हर एक देशभक्त के जो दिल में है देशभक्ति जागृत हो जाती थी और इसी जोश के साथ में आज भी ये पूरे देश में गाया जा रहा है। महान साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी बंकिम चंद्र चटर्जी की जयंती यानी कि 26 जून को मनाई जाती है। उन्हें हमारे

अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता के रूप में पूरे देश में अत्यधिक सम्मान के साथ याद किया जाता है। इनकी आज 188वीं जयंती मनाई जा रही है। उन्हें साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के कारण साहित्य सम्राट की भी उपाधि दी गई थी। प्रसिद्ध उपन्यास इनका उपन्यास जो है आनंद मठ, भारतीय साहित्य के इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: जी बहनों, घूमना फिरना सभी को अच्छा लगता है और हम आगे के कार्यक्रम में आप जब घूमने जाते हैं किस तरह से आप अपनी जो तैयारी है वो करते हैं, आपका पहनावा कैसा होना चाहिए, आपका खान पान कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे इस प्यारे से गीत के बाद।

जी हाँ बहनों, साथ चलने से सफ़र बहुत अच्छे से कटता है और अच्छा भी लगता है। अगर हम अपने परिवार वालों के साथ में घूमने जाते हैं, बहुत खुशी का माहौल होता है आसपास। लेकिन ये जो खुशी का माहौल है, ये परेशानी में तब बदल जाता है जब हमें सफ़र के दौरान कोई परेशानी होती हो। यानी कि सफ़र के दौरान अधिकतर लोगों को चक्कर और जी मिचलाने की जो शिकायत है, परेशानी है, वो होती रहती है, और ये मोशन सिकनेस के कारण होता है। कई लोगों का यह मानना है कि लंबे समय के बाद अगर वो सफर पर निकलते हैं तो ऐसा होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग रोज सफर कर रहे हैं, लेकिन ट्रिप पे जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ में ये परेशानी बनी रहती है। सफर के दौरान उल्टी जैसा उन्हें शिकायत होती है, और वो जो उनका सफर होता है वो अच्छे के बजाय कह सकते हैं बहुत ही बुरा हो जाता है। क्योंकि इतनी परेशानी जब उनको सामने आती है तो उनकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि घूमने फिरने का माहौल है वो बिल्कुल बदल जाता है। हम छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखते हैं तो जो अपना सफ़र है उसको बहुत अच्छा बना सकते हैं। यानी कि जब हम घूमने के लिए जाते हैं तो हम जब पहले तैयारी करते हैं तो उसमें एक चीज़ ज़रूर शामिल कर लें, वो है अदरक। अदरक का छोटा सा टुकड़ा आप अपने साथ में रखें, और आपको जब भी लगता है कि आपका जी मिचला रहा है या उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, तो आप उसे छील कर एक छोटा सा टुकड़ा जो है मुँह के अंदर दबा के रखें। उसे खाने की भी ज़रूरत नहीं है, उसका जो रस है आपके मुँह में जाता रहेगा तो आपको बहुत सुकून मिलेगा, और जी घबराना, जी मिचलाना, इनसे भी आपको निजात मिलेगी। इसके साथ ही जो दूसरा तरीका है वो हम बात कर सकते हैं पेपरमेंट की। टेबल के जो ट्रेवल होती है उसके दौरान अपने साथ जो पेपरमेंट होता है उसकी ऑयल की जो बोतल है उसको भी साथ में रखें, और उसके तेल की 2-4 बूंद अगर आपके पास में रुमाल है तो उस पर डाल के रखें। उसे सूंघते रहें, और आपको ये लगे कि फिर भी जी मिचला रहा है तो आप उसकी 2-3 बूंद जो है ऑयल की वो मुंह में भी डाल सकते हैं। इससे ये होगा कि उसकी जो खुशबू है उससे आपका जी मिचलाना बंद हो जाएगा और उल्टी वगैरह भी आपको नहीं होगी। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे किचन में आसानी से मिल जाता है, नींबू की। अगर आप सफ़र में जा रहे हैं, अगर छोटा सफ़र है तो आप कोशिश करें कि नींबू पानी बना के लेके जाएं बोतल में, और जब भी आपको ऐसा महसूस होता है उल्टी जैसा आप थोड़ा सा पी लें। अगर आपका सफ़र जो लंबा है तो आप साबुत नींबू भी ले जा सकते हैं, उसको सूंघने से या उसको काट के उसका रस भी अगर आप पी लेते हैं थोड़ा सा, तो भी आपका जी मिचलाना, चक्कर आना और उल्टी जैसा जो शिकायत होती है वो आपकी ख़त्म हो जाती है। इसके साथ ही जब हम सफ़र करते हैं, थोड़े से परेशान होते हैं, तो हम पानी पीना भूल जाते हैं। कोशिश करें आप पानी पीते रहें बार बार, चाहे थोड़ा थोड़ा करके पिएं, लेकिन आप पानी ज़रूर पीते रहें। इसके साथ ही बहनों, अगर जो आपकी बैठने की व्यवस्था है, जैसे कि आप बस में सफ़र कर रहे हैं तो खिड़की के पास बैठने की कोशिश करें, और साथ ही अगर आप आगे की सीट पर बैठ सकें तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और इसके साथ ही कुछ बहनों को, कुछ लोगों को आदत होती है कि वो यात्रा करते समय या तो कुछ किताबें पढ़ते हैं या फिर मोबाइल देखते रहते हैं। तो अगर आपको परेशानी है, आपका जी मिचलाने वाली परेशानी है, उल्टी की परेशानी है, तो आपको स्क्रीन से और किताबों से दूर रहना पड़ेगा। बिल्कुल आप इनसे दूरी बना के रखेंगे तभी आपका सफ़र है वो अच्छे से कट पाएगा। इस तरह से आप छोटे छोटे नुस्खों से अपने सफ़र को, अपनी यात्रा को बहुत खुशनुमा बना सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: जी बहनों, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि यात्रा के दौरान अगर आपका जी मिचलाता है, उल्टी होती है, तो आप कौन कौन से घरेलू जो नुस्खे हैं वो अपना सकते हैं। और इसके आगे हम बात करते हैं कि फिर भी अगर आपको फ़ायदा नहीं मिलता है तो आप अपने चिकित्सक से सलाह लेके दवाइयां ज़रूर लें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी जो यात्रा है इतनी सुखदायक या कह सकते हैं आरामदायक नहीं हो पाएगी। और जब हम बात करते हैं यात्रा की, कहीं घूमने जाने की, तो बहनों हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं और बहुत ऐसे ऐसे कपड़ों को सेट कर लेते हैं, जचा लेते हैं कि हम इस दौरान ये कपड़े पहनने वाले हैं, इसमें हमारी फ़ोटो होनी चाहिए, इसमें हमारा वीडियो होना चाहिए। अब बात हम जब कपड़ों की करते हैं तो हम कपड़े बहुत सारे रख लेते हैं कि हाँ ये कपड़े हमें अच्छे लगेंगे, या ऐसे कपड़े हैवी कपड़े हम रख लेते हैं कि ये दिखने में अच्छा लगेगा, लेकिन फिर जब हम उन्हें पहनते हैं या पहन के सफ़र करते हैं तो बहुत ही परेशानी का सामना हमें करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर आप हैवी कपड़े पहन के जाते हैं तो सफ़र के दौरान आप ज़रूर कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। तो कोशिश ये करें, अब जब आप यात्रा कर रहे हैं तो ढीले ढाले या आरामदायक कपड़े अगर आप लेके जाते हैं तो बहुत सुकून मिलेगा। आप कोशिश ये करें कि जो सबसे आरामदायक कपड़े हैं वो आप पहन कर जाएं यात्रा के दौरान, और उसका जो फैब्रिक है यानी कि जो कपड़ा है आपका, वो या तो कॉटन का होना चाहिए या सिंथेटिक भी अगर होता है तो सिंथेटिक में बहुत ज़्यादा लाइट वेट वाले कपड़े आप लेके जाते हैं, पहन के जाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आरामदायक होते हैं। इसके साथ ही बहनों बात करते हैं आपके जीन्स के बारे में। तो कुछ लोग जीन्स पहन के जाना पसंद करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है कि सफ़र में हमारी अच्छी जो हमने न्यू जीन्स खरीदी है वो हम पहन के जाएंगे या वो साथ लेके जाते हैं। तो कोशिश ये करें, क्योंकि जीन्स में आप कहीं ना कहीं परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है, तो जीन्स ना ले जाके आप कम्फर्टेबल जो पजामा होता है, लोअर होता है, वो आप अगर पहन के जाते हैं तो आपका जो सफ़र है आरामदायक होगा। इसके साथ ही जो हील वाले जो चप्पलें होती है या आपके जो शूज़ हैं बहुत ऊंची एड़ी वाले हैं, तो उनको भी आप पहन कर ना जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पैदल भी चलना पड़ सकता है या कहीं ऐसी जगह आप कहीं घूमने जा रहे हैं जहां पे पहाड़ियां हैं या कुछ ऊंचे स्थान है, वहां पर आपको जाने के लिए अगर आपको पैदल चलना पड़ेगा तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो जब भी आप घूमने के लिए जाएं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के फिर जाएं।

जी बहनों, हम बात कर रहे थे कि यात्रा के दौरान आरामदायक कपड़े तो ज़रूर होने ही चाहिए और कपड़े हवादार भी होने चाहिए। अगर आप ऐसे कपड़े पहनते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी पहनकर, और आपकी यात्रा भी जो है मंगलमय होगी। साथ ही साथ बहनों, अगर आप जैसे रंग का अगर आप ध्यान रखें तो और भी अच्छा लगता है। अगर आप कपड़े जो हल्के रंग के पहन के अगर यात्रा करते हैं तो आपको जो है घुटन है, परेशानी है या गर्मी है ये भी नहीं लगेगी। और आप कोशिश ये करें कि जो ठंडा रखने वाला, मतलब आंखों को ठंडा रखने वाले वाले जो रंग होते हैं वो पहनकर आप जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ ही हमें जब घूमने जाना होता है तो एक विशेष बात का और भी ध्यान रखना होता है कि हम कौन सी जगह जा रहे हैं और किस जगह पे जा रहे हैं। तो ऐसे में आप स्थानीय जो रीति रिवाज है वहाँ के, वहाँ को ध्यान में रखते हुए कोशिश करें कि उस तरह के कपड़े पहने। अगर आप किसी तीर्थ स्थान पे या कोई ग्रामीण क्षेत्र की तरफ आप जा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप जैसे कंफर्टेबल कपड़े पहनना चाहते हैं तो आप लॉन्ग स्कर्ट पहन सकते हैं, या कुछ बड़ा सा जो टी शर्ट होता है फुल आस्तीन वाला वो भी पहन सकते हैं, या और भी जो आपको कंफर्टेबल कपड़े लगते हैं वो इस तरह से पहन सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर हम स्थान को ध्यान में रखते हुए भी अगर कपड़े लेके जाते हैं, पहन के जाते हैं, तो और भी ज़्यादा आरामदायक होते हैं। इसी तरह से आप बात करें उनके, जैसे कॉटन के कपड़ों की बात की है हमने, उसी तरह से लिनन के कपड़े भी आप पहन के जा सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आरामदायक हो सकते हैं। और इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो बहुत हमारी जो यात्रा है आरामदायक होगी और हमें किसी तरह की परेशानी भी नहीं होगी।

जी बहनों, आज के समय में अकेले यात्रा करना आम बात हो गई है। चाहे वह काम के लिए हो सकती है ये यात्रा, पढ़ाई के लिए हो सकती है या फिर घूमने के लिए। अकेले सफर के दौरान सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। कई बार छोटी छोटी लापरवाही बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है, इसलिए यात्रा शुरू करने से पहले सही योजना और सही जो ज़रूरी सावधानियाँ होती है उनका हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी अकेले यात्रा करते हैं तो कुछ आसान से असरदार जो ट्रेवल सेफ्टी टिप्स होते हैं उनको अपनाकर अगर आप चलेंगे तो आपकी जो पूरी ट्रिप है वो सुरक्षित बना सकती है। इसके लिए आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रख सकते हैं कि जैसे कि आप ट्रेन में अगर सफर कर रहे हैं, अगर आपको वॉशरूम वगैरह जाना है तो आप कोशिश ये करें कि जब ट्रेन रुकी हुई है तो आप वॉशरूम वगैरह ना जाएं, क्योंकि ऐसे में कोई भी आपका सामान लेके बाहर जा सकता है। और अगर आप चलती हुई ट्रेन में अगर आप वॉशरूम वगैरह यूज करते हैं तो हो सकता है आपके आसपास बैठा कोई भी आपको आपके जो सामान है उसकी सुरक्षा कर सकता है। लेकिन इस बात का भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी आपको यात्रा के दौरान मिलते हैं आप पूरे भरोसे के साथ उस पर विश्वास ना करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपने जो विश्वास बनाया है वो आपके लिए काफ़ी देर तक बनाए रख सके। इसलिए कोशिश ये करें किसी से खाने पीने की चीज़ या कोई भी पानी वगैरह या कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम लोग पी लेते हैं किसी से, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हम ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चों को बताते रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम

खुद ही इसके मामले में लापरवाही कर जाते हैं और हमारी जो यात्रा है वो बिल्कुल असुरक्षित बन जाती है। तो हम भी यही कोशिश करें, जिस तरह से हम अपने बच्चों को समझाते हैं, हम भी इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारी यात्रा बिल्कुल सुरक्षित होगी। और बहनों, जैसे कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बात की थी कि आपके लिए बहुत सारी बातें, जानकारी, गीत के साथ में एक जानकारी भी है आपके लिए, तो हम पीएम 15 सूत्री कार्यक्रम के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। इसके तहत उर्दू शिक्षण और अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक विकास के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के अवसरों को बढ़ाना और शिक्षा से वंचित समूहों का पर्याप्त संसाधन पहुँचाना है। अगर हम उर्दू शिक्षण की बात करते हैं बहनों, तो उन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में उर्दू भाषा के अध्यापकों की भर्ती और तैनाती के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी, जो इस भाषा वर्ग से संबंधित कम से कम 1/4 जनसंख्या की सेवा करते हों।

0: अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत FM 110.7 MHz पर। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से 2 बजे मिड डे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार।
1: This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Home Minister Amit Shah calls for a united fight against drugs, says drug menace poses threat to national security and future of youth. Uttar Pradesh police arrest 8

0: से गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
1: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
1: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती हैं। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsonAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
3: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी दो दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय

0: संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
1: For our business, FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
0: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
1: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
0: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाची

0: के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 एमसीसी C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदाद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
1: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमरीका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया।
2: FM 100.7 MHz पर ये आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का प्रोग्राम तराने नए पुराने।

आशा भोसले अमित कुमार और साथियों की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे अशांति फिल्म का गीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू से फिल्म संगीत का प्रोग्राम तराने नए पुराने। लीजिए सुनिए सोहम की आवाज में मेट्रो फिल्म का गीत।

सोहम की आवाज में अभी आप सुन रहे थे मेट्रो फिल्म का गीत। लीजिए सुनिए विनीत सिंह का गाया मिलेंगे मिलेंगे फिल्म से ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का प्रोग्राम तराने नए पुराने FM 110.7 MHz पर। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3 बज चुके हैं। आज की हमारी प्रथम सभा अब यहीं संपन्न होती है। द्वितीय सभा में शाम 5 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें।

एफएम 110.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बज चुके हैं। युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी के साथ हमारी आज की सायंकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है।

जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युवाणी में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आज है शुक्रवार और शुक्रवार को होता है हमारा खास सेगमेंट हेल्थ एंड फिटनेस। जी दोस्तों, खास सेगमेंट पर बात करने से पहले हम बात करते हैं आज के दिन के बारे में। आज का दिन जो है वो मुहर्रम का दिन माना जाता है

और इस दिन क्या हुआ था और क्या इसके पीछे की कहानी है उस पर हम बात करेंगे। दोस्तों, मुहर्रम जो है वो इस्लामी हिजरी वर्ष का पहला महीना है और इसे इस्लाम के चार पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। ये केवल नए वर्ष की शुरुआत का संकेत नहीं देता बल्कि आत्मचिंतन, संयम और

से हजरत इमाम हुसैन ने सत्य, न्याय और धर्म की रक्षा के लिए अपना जो सर्वोच्च बलिदान है वो दिया था। उन्होंने अन्याय और अत्याचार के सामने झुकने के बजाय अपने प्राणों का त्याग करना स्वीकार किया। उनके साथ उनके परिवार और अनेक साथियों ने भी शहादत प्राप्त की। करबला की ये जो घटना है वो मानव इतिहास में साहस, धैर्य, त्याग और सत्य के प्रति अटूट निष्ठा का अमर उदाहरण मानी जाती है। और मुहर्रम का जो संदेश है दोस्तों, वो केवल किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी मानवता को सत्य, न्याय, ईमानदारी और मानव मूल्यों की रक्षा करने के लिए प्रेरणा देता है। इस अवसर पर अनेक लोग जो हैं वो इमाम हुसैन और उनके साथियों के बलिदान को श्रद्धा पूर्वक जो स्मरण है वो करते हैं और धार्मिक सभाएं आयोजित करते हैं, उपवास रखते हैं, दान पुण्य करते हैं तथा मानव सेवा के कार्यों में भाग लेते हैं। मुहर्रम हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, हमें सत्य और न्याय का मार्ग जो है वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यही कारण है कि मुहर्रम केवल एक धार्मिक अवसर नहीं है, बल्कि त्याग, साहस, धैर्य और मानवता के आदर्शों का प्रेरणादायक प्रतीक भी माना जाता है। और दोस्तों, मुहर्रम जो है वो इस्लामी हिजरी का वर्ष का पहला महीना है और इसे इस्लाम के चार पवित्र महीनों में गिना जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया। और इस महीने का जो नाम है मुहर्रम है और इसका अर्थ ये है पवित्र या सम्मानित। ये महीना आत्मचिंतन और खुदा की इबादत, धैर्य, संयम और मानवता की सेवा का संदेश देता है। और लगभग 1400 वर्ष पहले इराक के करबला नामक स्थान पर हजरत इमाम हुसैन, जो पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे थे, उन्होंने अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने सत्ता के लिए नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और धर्म के सिद्धांतों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। जब उन्होंने अन्याय के सामने झुकने से इनकार किया तो उन्हें और उनके परिवार तथा साथियों को घेर लिया गया। कई दिनों तक उन्हें पानी नहीं दिया गया और अंततः 10 मुहर्रम के दिन जो है उन्हें शहीद कर दिया गया। इस घटना को करबला की शहादत कहा जाता है और इसे त्याग, साहस और सच्चाई की सबसे बड़ी मिसाल है वो माना जाता है। मुहर्रम को खुशी का पर्व जो है वो नहीं मानते हैं, विशेष रूप से जो सिया मुसलमान है। इस पूरे महीने, खासकर पहले 10 दिनों में, इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत का शोक मनाते हैं। वे मजलिस आयोजित करते हैं, करबला की घटना का वर्णन सुनते हैं और जुलूस निकालते हैं। कई स्थानों पर ताजिए भी निकाले जाते हैं जो करबला की याद का प्रतीक होते हैं। वहीं अनेक जो सुन्नी मुसलमान हैं आशुरा के दिन या उसके साथ एक दिन पहले या बाद में रोजा रखते हैं, दुआ करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं। मुहर्रम हमें ये याद दिलाने के लिए मनाया जाता है दोस्तों कि सत्य और न्याय की जो रक्षा है उसके लिए हर परिस्थिति में दृढ़ रहना चाहिए। इमाम हुसैन का बलिदान ये सिखाता है कि अन्याय के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए, चाहे इसके लिए कितना भी बड़ा त्याग क्यों ना करना पड़े। इसलिए मुहर्रम केवल जो है एक धार्मिक अवसर नहीं है, बल्कि साहस, ईमानदारी, धैर्य, त्याग और मानवता की रक्षा करने का संदेश देने वाला पवित्र महीना भी है। और आज जो है वो मुहर्रम मनाया जा रहा है। जी दोस्तों, खास सेगमेंट हेल्थ एंड फिटनेस में बातें आगे यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल ये चलते हैं आपको छोटे से म्यूजिकल ब्रेक पर।

जी दोस्तों, खास सेगमेंट हेल्थ एंड फिटनेस में बात करते हैं हम हमारे शरीर के बारे में कि किस तरीके से हमारे शरीर को हम स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीर जो है और शांत मन ही एक सुखद और सफल जीवन की बीच की सबसे बड़ी जो कुंजी है जो हमें जोड़े रखता है। इसलिए रोजमर्रा की व्यस्तता के बीच भी अपने स्वास्थ्य, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। और आज के इस खास सेगमेंट में भी हम स्वास्थ्य से जुड़ी जो उपयोगी जानकारियां हैं और ऐसे आसान उपाय साझा करते हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को अधिक स्वस्थ और ऊर्जावान बना सकते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत में हम बात करते हैं दोस्तों कि नशीले पदार्थ जो है उनका सेवन हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे व्यक्ति के शरीर, मस्तिष्क और जीवन को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। और ये जो पदार्थ हैं ये पूरा जीवन जो है वो हमारा नष्ट कर देते हैं। दोस्तों, आज 26 जून के इस विशेष अवसर पर हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल स्वास्थ्य का नहीं बल्कि पूरे समाज, परिवार और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। जी दोस्तों, आज का विषय है नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध जो तस्करी है उसके विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति नशे की गिरफ्त में आ जाता है तो वह केवल अपना स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि अपने सपने, परिवार का विश्वास और अपने जीवन का उज्ज्वल भविष्य भी दांव पर लगा देता है। इसलिए नशे के प्रति जागरूकता फैलाना हम सभी की जिम्मेदारी है। दोस्तों, जानते हैं कि ये जो दिवस है वो क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या है, नशे के दुष्परिणाम क्या हैं और हम मिलजुल कर एक नशा मुक्त समाज बनाने में कैसे योगदान दे सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले इस दिवस के इतिहास के बारे में। तो प्रत्येक वर्ष जो 26 जून है उसको पूरी दुनिया में नशीली दवाओं के विरुद्ध के जो दुरुपयोग है और अवैध तस्करी के विरुद्ध जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो मनाया जाता है। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया और इसका

उद्देश्य जो है लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और नशीले पदार्थों की अवैध जो तस्करी है उसके विरुद्ध विश्व स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देना था। आज दुनिया के लगभग सभी देशों में इस अवसर पर जागरूकता रैलियां, संगोष्ठियां, विद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यक्रम तथा जन जागरूकता अभियान जो है वो आयोजित किए जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि नशीली दवाओं का दुरुपयोग क्या है। जब कोई व्यक्ति चिकित्सकीय आवश्यकता के बिना या डॉक्टर की सलाह के विपरीत किसी नशीले पदार्थ का सेवन करता है और अन्य मादक पदार्थों का आदि बन जाता है तो इसे नशीली दवाओं का दुरुपयोग कहा जाता है। शुरुआत जो है अक्सर जिज्ञासा या दोस्तों के दबाव में होती है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत जो है वो लत में बदल जाती है, तब व्यक्ति चाहकर भी नशा छोड़ नहीं पाता है। कई बार जो लोग हैं वो नशे की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं, इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं दोस्तों। कई बार तनाव, अकेलापन, बेरोजगारी, गलत संगति, फिल्मों या सामाजिक माध्यमों का प्रभाव, पारिवारिक समस्याएं या केवल नया अनुभव लेने की इच्छा जो है लोगों को नशे की ओर ले जाती है, लेकिन यह क्षणिक राहत धीरे धीरे जीवन भर की परेशानी बन जाता है। नशे के बहुत से दुष्प्रभाव होते हैं दोस्तों। नशा जो है वो शरीर के लगभग हर अंग को प्रभावित करता है। सबसे पहले इसका असर जो है वो मस्तिष्क पर पड़ता है। व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, याददाश्त कमजोर होने लगती है, निर्णय लेने की क्षमता जो है वो प्रभावित होती है। फिर हृदय, फेफड़े, यकृत और गुर्दों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तंबाकू और धूम्रपान से कैंसर का खतरा बढ़ता है, शराब से यकृत की गंभीर बीमारियां हो सकती है, मानसिक रूप से व्यक्ति चिड़चिड़ा, तनावग्रस्त और अवसादग्रस्त हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों ना सिर्फ स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है बल्कि हमारे परिवार पर भी जो इसका प्रभाव है वो पड़ता है। नशे का सबसे अधिक असर परिवार पर ही पड़ता है। घर का वातावरण अशांत हो जाता है, आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है, बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है, परिवार के सदस्यों का विश्वास जो है वो टूट जाता है। कई परिवार केवल इसलिए ही बिखर जाते हैं क्योंकि किसी एक सदस्य से नशे की लत जो है वो अपना ली जाती है। समाज पर भी इसका प्रभाव होता है दोस्तों। नशे की वजह से अपराध बढ़ते हैं, चोरी, हिंसा, सड़क दुर्घटनाएं और घरेलू हिंसा जैसी घटनाओं में वृद्धि होती है। नशा व्यक्ति की कार्यक्षमता को कम करता है जिससे देश की आर्थिक प्रगति भी प्रभावित होती है। अब बात करते हैं अवैध तस्करी के बारे में कि अवैध तस्करी क्या है। जब नशीले पदार्थों का निर्माण, भंडारण, परिवहन या बिक्री कानून के विरुद्ध की जाती है तो उसे अवैध तस्करी कहा जाता है। इससे अपराधी गिरोह मजबूत होते हैं और समाज में असुरक्षा बढ़ती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है दोस्तों युवाओं की भूमिका के बारे में कि इसके बारे में युवाओं की क्या भूमिका है। देश का भविष्य युवा है, जैसा कि हम सब कहते हैं और जानते भी हैं। यदि युवा नशे से दूर रहेंगे तो देश जो है वो मजबूत बनेगा। युवाओं को खेल, योग, संगीत, पुस्तकें, कला और सामाजिक सेवा जैसी सकारात्मक गतिविधियां हैं उनमें भाग लेना चाहिए। और अब इस विषय में हम क्या कर सकते हैं, यदि हमारे आसपास कोई व्यक्ति नशे की लत से जूझ रहा है तो उसका मजाक न उड़ाएं, उसे समझाएं, जरूरत हो तो परिवार और चिकित्सकों की सहायता लेने के लिए भी प्रेरित करें, विद्यालयों, महाविद्यालयों और समाज में नशा मुक्ति का अभियान चलाएं। याद रखिए दोस्तों, नशा समस्या का समाधान नहीं है, समस्या का समाधान है साहस, सही सलाह और परिवार का साथ। जीवन बहुत सुंदर है, इसे नशे में नहीं बल्कि अच्छे स्वास्थ्य, सकारात्मक सोच और अच्छे कर्मों के साथ जीना चाहिए। हम स्वयं नशे से दूर रहेंगे ऐसा संकल्प जो है वो आज के दिन हमें लेना चाहिए, क्योंकि आज नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। तो इस अवसर पर हमें भी ये संकल्प लेना चाहिए दोस्तों कि हम स्वयं नशे से दूर रहेंगे, अपने परिवार और मित्रों को भी जागरूक करेंगे, नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी का विरोध करेंगे और एक स्वस्थ, सुरक्षित तथा नशा मुक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। जी दोस्तों, कार्यक्रम में बातें आगे यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल ये चलते हैं आपको छोटे से म्यूजिकल एक बार।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।

0: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है।
1: मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
2: बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
0: तो फिर सही नंबर?
2: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
2: काम से नहीं।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
6: जी दोस्तों, खास सेगमेंट में अब बात करते हैं एक ऐसे महान समाज सुधारक, दूरदर्शी शासक और जनसेवक की, जिन्होंने अपने जीवन का जो हर क्षण है वो समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। हम बात कर रहे हैं छत्रपति शाहू महाराज की, जिनकी जयंती जो है वो प्रत्येक वर्ष बड़े सम्मान और श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। दोस्तों, भारत के इतिहास में अनेक राजा हुए जिन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया, युद्ध जीते और शासन किया, लेकिन कुछ ऐसे शासक भी हुए जिन्होंने अपनी पहचान तलवार से नहीं बल्कि शिक्षा, समानता, सामाजिक न्याय और मानव सेवा से बनाई। छत्रपति शाहू महाराज ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे। वे मानते थे कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक जो शक्ति है उसकी जनता होती है। यदि समाज का कोई वर्ग शिक्षा, अवसर और सम्मान से वंचित रह जाए तो देश जो है उसका समग्र विकास संभव नहीं हो सकता। इसलिए इन्होंने अपने शासनकाल में शिक्षा को बढ़ावा दिया, गरीबों और वंचितों के लिए अनेक जो योजनाएं हैं वो शुरू की और सामाजिक भेदभाव को इनको समाप्त करने के लिए बहुत से जो प्रयास हैं वो भी इन्होंने किए। अब दोस्तों, सबसे पहले उनके जीवन परिचय पर एक नज़र डालते हैं। छत्रपति शाहू महाराज का जन्म जो है वो 26 जून 1874 को महाराष्ट्र के कागल में हुआ था, यानी आज के दिन जो है छत्रपति शाहू महाराज की जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। उनका बचपन का नाम जो है यशवंत राव घाटके था। बाद में उन्हें कोल्हापुर के राज परिवार ने गोद ले लिया और वे कोल्हापुर रियासत के शासक बने। बचपन से ही वे बुद्धिमान, संवेदनशील और समाज की समस्याओं को समझने वाले थे। उन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और विभिन्न विषयों का अध्ययन जो है वो किया। शिक्षा के दौरान उन्होंने महसूस किया कि समाज में ऊंच नीच, भेदभाव और अशिक्षा जैसी समस्याएं जो हैं वो लोगों के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। जब वे कोल्हापुर के शासक बने तब उन्होंने केवल शासन करने का कार्य नहीं किया बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प लिया। उनका मानना था कि राजा का सबसे बड़ा धर्म जो है वो अपनी प्रजा की सेवा करना है। दोस्तों, किसी भी महान व्यक्ति की पहचान उसके पद से नहीं बल्कि उसके कार्यों से होती है। छत्रपति शाहू महाराज ने अपने कार्यों से ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा नेतृत्व वही है जो समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति के जीवन में आशा और सम्मान का प्रकाश जो है वो पहुंचा सके। आज भी उनके विचार हमें प्रेरणा देते हैं कि शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय ही एक मजबूत और विकसित समाज की आधारशिला है। जी दोस्तों, आप बात करते हैं कि छत्रपति शाहू महाराज का समाज सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान रहा। अब तक आप सभी ने जाना दोस्तों कि छत्रपति शाहू महाराज का जन्म जो है कब और कहाँ हुआ और वे किस प्रकार कोल्हापुर रियासत के शासक बने। अब जानते हैं कि उन्होंने समाज में बदलाव लाने के लिए कौन कौन से ऐतिहासिक कार्य किए। छत्रपति शाहू महाराज का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। उनका कहना था कि जब तक हर व्यक्ति को शिक्षा का अवसर नहीं मिलेगा तब तक समाज में समानता स्थापित नहीं हो सकती है। इसी सोच के साथ उन्होंने गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए अनेक जो विद्यालय हैं वो खुलवाए। उन्होंने छात्रावास की जो स्थापना है वो करवाई ताकि दूर दराज के विद्यार्थी भी पढ़ लिख सकें। आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गई जिससे उनकी पढ़ाई बीच में ना छूटे। और उस समय समाज में जाति के आधार पर भेदभाव बहुत अधिक था। अनेक लोगों को शिक्षा और सरकारी सेवाओं में अवसर नहीं मिलते थे। छत्रपति शाहू महाराज ने इस

अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने पिछड़े और वंचित वर्गों को शिक्षा तथा सरकारी नौकरियों के अंदर अवसर देने का महत्वपूर्ण कदम जो है वो उठाया, और इस कारण उन्हें सामाजिक न्याय का अग्रदूत भी कहा जाता है। महिलाओं की शिक्षा और सम्मान के लिए भी उन्होंने विशेष प्रयास किए। उनका मानना था कि यदि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार और समाज जो है वो आगे बढ़ता है। उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया और महिलाओं के अधिकारों के समर्थन में भी बहुत से सुधार जो है वो किए। किसानों और मजदूरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने अनेक योजनाएं लागू की। उनका उद्देश्य था कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति सम्मान के साथ जीवन जी सके। दोस्तों, छत्रपति शाहू महाराज का जीवन हमें ये संदेश देता है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो सभी लोगों को समान अवसर दे, भेदभाव को समाप्त करें और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ जो है वो पहुंचाने का प्रयास करें। आज भी शिक्षा जो है समानता और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में अनेक विचार जो उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। अब दोस्तों, हमने ये जान लिया है कि छत्रपति शाहू महाराज के जीवन परिचय और शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में उनके योगदान कैसा रहा और किस तरीके से उन्होंने योगदान दिया। अब उनके जन कल्याणकारी कार्यों और आदर्शों पर चर्चा करते हैं। छत्रपति शाहू महाराज का मानना था कि शासन का उद्देश्य जो है केवल राज्य चलाना नहीं है बल्कि जनता का जीवन बेहतर बनाना है। इसलिए उन्होंने अपने शासनकाल में किसानों, मजदूरों, गरीबों और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने किसानों की समस्याओं को समझा और उनकी सहायता के लिए कई योजनाएं लागू की। सिंचाई, कृषि सुधार और ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया ताकि किसानों की आय बढ़े और उनका जीवन जो है बेहतर हो सके। वे श्रमिकों के अधिकारों के भी समर्थक थे। उनका मानना था कि मेहनत करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान और उचित अवसर मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए भी कई निर्णय लिए। छत्रपति शाहू महाराज धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक सौहार्द के पक्षधर थे। वे सभी धर्मों और सभी वर्गों के लोगों का सम्मान करते थे। उनके लिए सबसे बड़ा धर्म जो है वो मानवता और जनसेवा ही था। उन्होंने समाज में छुआछूत और भेदभाव जैसी कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया। उनका विश्वास था कि सभी मनुष्य जो है वो समान है और प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान, शिक्षा और प्रगति का अधिकार है। आज जब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं दोस्तों, तब हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे महान व्यक्तित्वों ने ही समानता, शिक्षा और सामाजिक न्याय की मजबूत नींव रखी। छत्रपति साहू महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि समाज तभी आगे बढ़ता है जब हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिले। आज के युवाओं के लिए भी उनका जीवन एक प्रेरणा है। यदि हम शिक्षा को महत्व दें, मेहनत करें और दूसरों का सम्मान करें तो समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करें तो यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि जो है वो होगी। अब दोस्तों, फिलहाल आपको म्यूजिकल ब्रेक पर लिए चलते हैं। वापस लौटने पर बात करेंगे कि किस तरीके से जो ये जयंती है उसको सेलिब्रेट करते हैं।

जी दोस्तों, खास सेगमेंट में बातें चल रही है छत्रपति साहू महाराज की जयंती के बारे में। तो इस जयंती का क्या महत्व है, तो इस बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो हर वर्ष जो है वो 26 जून को छत्रपति साहू महाराज की जयंती पूरे देश और विशेष रूप से महाराष्ट्र में बड़े सम्मान और उत्साह के साथ मनाई जाती है। इस अवसर पर विद्यालयों, महाविद्यालयों, सरकारी संस्थानों और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा अनेक जो कार्यक्रम हैं वो आयोजित किए जाते हैं। उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की जाती है, उनके जीवन और विचारों पर व्याख्यान दिए जाते हैं तथा शिक्षा, सामाजिक न्याय और समानता के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जाता है। छत्रपति साहू महाराज का मानना था कि शिक्षा जो है वो केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज में परिवर्तन लाने की सबसे बड़ी शक्ति है। उनका विश्वास था कि यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित होगा तो गरीबी, भेदभाव और अन्याय जैसी समस्याओं को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। आज जब हमारा देश विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है, तब भी उनके विचार उतने ही प्रासंगिक हैं। आज भी हमें ऐसे समाज की आवश्यकता है जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव ना हो और शिक्षा का प्रकाश जो है वो हर घर तक पहुंचे। दोस्तों, छत्रपति साहू महाराज का जीवन हमें यही सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो अपने पद का उपयोग जनता की सेवा के लिए करें। उन्होंने कभी केवल शासन नहीं किया, बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का जो प्रयास है वो भी किया, और यही कारण है कि आज भी उन्हें एक आदर्श शासक, महान समाज सुधारक और जन नायक के रूप में जो है वो याद किया जाता है। और उनकी जयंती आज के दिन 26 जून को जो है वो मनाई जाती

जो अपने पद का उपयोग जनता की सेवा के लिए करें। उन्होंने कभी केवल शासन नहीं किया, बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का जो प्रयास है वो भी किया, और यही कारण है कि आज भी उन्हें एक आदर्श शासक, महान समाज सुधारक और जननायक के रूप में जो है वो याद किया जाता है, और उनकी जयंती आज के दिन 26 जून को जो है वो मनाई

ज्ञान का प्रकाश समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और सम्मान पर भी विशेष बल दिया। उनका मानना था कि महिलाएं शिक्षित होगी तो पूरा समाज शिक्षित होगा। और आज हम देखते भी हैं दोस्तों कि महिलाएं जो है शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, प्रशासन, खेल, सेना और अंतरिक्ष जैसे जो अनेक क्षेत्रों में हैं वो देश का नाम रोशन कर रही है। यह परिवर्तन उन महान समाज सुधारकों के प्रयासों का भी परिणाम है जिन्होंने वर्षों पहले समान अवसरों की आवश्यकता को समझा था। छत्रपति शाहू महाराज का एक और महत्वपूर्ण संदेश था, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कभी किसी व्यक्ति का मूल्य उसकी जाति, धर्म और आर्थिक स्थिति से नहीं आंका। उनके लिए हर नागरिक समान था। और आज जब हम विविधताओं से भरे भारत में रहते हैं तब हम उनके विचार जो है आपसी सम्मान, भाईचारे और सामाजिक सद्भाव का संदेश जो है उनके विचारों से हमें मिलता है। यदि हम उनके आदर्शों को जीवन में अपनाएं तो हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां समानता, न्याय और सम्मान जो है केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा बन जाए। और इसी तरीके से अगर हम उनके जो विचार हैं उन पर चलेंगे तो हम जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। और आज उनकी जयंती पर हमें भी अपने आप से ये बात कहनी चाहिए कि हम शिक्षा का सम्मान करेंगे, समाज में समानता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देंगे, किसी भी प्रकार के भेदभाव का जो विरोध है वो हम करेंगे, जरूरतमंद लोगों की सहायता करेंगे और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हुए एक बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे। जी दोस्तों, इसी सोच के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और फिलहाल ये चलते हैं आपको एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक पर।

जी दोस्तों, गर्मी के बाद जो अब मौसम है वो धीरे धीरे बदल रहा है। कई स्थानों पर बादल छा रहे हैं, कहीं हल्की बारिश हो रही है, तो कहीं उमस और तेज गर्मी जो है वो दोनों का अनुभव हो रहा है। और इस समय को प्री मानसून का मौसम जो है वो कहा जाता है। मौसम में अचानक होने वाले ये बदलाव जो है वो हमारे स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकते हैं। तो हम बात करेंगे खास सेगमेंट में कि इस बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें। दोस्तों, मौसम बदलने के साथ जो है शरीर को नए वातावरण के अनुसार खुद को ढालने में थोड़ा समय लगता है। इसी कारण सर्दी, जुकाम, बुखार, गले में खराश, एलर्जी, पेट के जो संक्रमण और वायरल बीमारियों का खतरा है वो बढ़ जाता है। इसलिए सबसे पहले अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको मजबूत बनाए रखना आवश्यक है। दिन भर पर्याप्त मात्रा में साफ और संतुलित जो आहार है वो हमें लेना चाहिए, और साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित और साफ हाथों से लगाया हुआ जो पानी है वो पीना चाहिए। गर्मी कम लगने पर भी पानी पीना कम ना करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है दोस्तों कि जिस तरीके से मौसम बदलता है, गर्मी के बाद में जब थोड़ी बारिश शुरू हो जाती है तो पानी पीना जो है वो हम कम कर देते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। साथ ही साथ ताजे फल, हरी सब्जियां और संतुलित भोजन जो है वो हमें लेना चाहिए। बहुत अधिक तला भुना या लंबे समय से रखा हुआ भोजन जो है वो खाने से बचें। बारिश की पहली फुहारों में भीगना कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन याद रखना चाहिए दोस्तों कि इस मौसम में भीगने से सर्दी, जुकाम और संक्रमण का खतरा जो है वो काफी हद तक बढ़ सकता है। यदि आप भीग जाएं तो घर पहुंचकर तुरंत सूखे कपड़े पहने और शरीर को अच्छी तरह सुखा लें। इस मौसम में मच्छरों की संख्या जो है वो भी बढ़ने लगती है, इसलिए घर के आसपास पानी जमा न होने दें। पानी की टंकियों को ढककर रखें और रात में मच्छरदानी या मच्छर से बचाव के अन्य सुरक्षित उपाय जो हैं वो हमें अपनाने चाहिए, क्योंकि इससे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे बीमारियों का खतरा जो है वो कम किया जा सकता है। मौसम में नमी बढ़ने से भोजन जो है वो जल्दी खराब हो सकता है, इसलिए हमेशा ताजा और स्वच्छ भोजन करें। बाहर खुले में बिकने वाले कटे फलों और अस्वच्छ भोजन जो है उससे हमें बचना चाहिए। यदि तेज बुखार, लगातार खांसी, सांस लेने में तकलीफ, बार बार उल्टी, दस्त या तेज कमजोरी महसूस हो तो स्वयं दवा लेने के बजाय किसी योग्य चिकित्सक से सलाह जो है वो हमें लेनी चाहिए। दोस्तों, मौसम बदलना प्रकृति का नियम है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी जो है वो हमें कई बीमारियों से बचा सकती है। संतुलित आहार, पर्याप्त पानी, स्वच्छता, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद जो है, ये 5 आदतें हर मौसम में हमें स्वस्थ रखने में मदद करती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों कि बदलते मौसम में छोटी छोटी सावधानियां हमें बड़ी परेशानियों से बचा सकती है, तो हमें जो छोटी छोटी सावधानियां हैं वो रखनी चाहिए। और घर और आसपास की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बारिश शुरू होने से पहले नालियों की सफाई करवा लें ताकि पानी जमा ना हो। रुका हुआ पानी जो है मच्छरों के पनपने का सबसे बड़ा कारण बन सकता है और जिससे बहुत सी बीमारियां फैलती है। बिजली और आंधी तूफान से भी हमें बचाव करना चाहिए। प्री मानसून के दौरान अचानक तेज हवाएं, गरज चमक और

बारिश शुरू हो सकती है। ऐसे समय में खुले मैदान, ऊंचे पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचें। यदि आप बाहर हों तो किसी सुरक्षित जगह पर स्थान देखकर वहां आपको रुक जाना चाहिए। इस मौसम में उमस अधिक होने के कारण पसीना भी ज़्यादा आता है, इसलिए रोज स्नान है वो हमें करना चाहिए। साफ़ और सूती कपड़े जो हैं वो पहनने चाहिए और त्वचा को साफ रखना चाहिए। इससे घमोरिया, फंगल इन्फेक्शन और त्वचा संबंधी जो अन्य समस्याएं हैं उनका खतरा कम हो जाता है। जो लोग खेतों, निर्माण स्थलों या खुले में काम करते हैं उन्हें समय समय पर आराम करना चाहिए और पानी पीते रहना चाहिए। शरीर में पानी और लवणों की कमी न होने दें। यदि अत्यधिक कमजोरी और चक्कर या सिरदर्द महसूस हो तो तुरंत आराम करना चाहिए। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें क्योंकि मौसम का असर उन पर जल्दी पड़ता है। बच्चों को गंदे पानी में खेलने से रोकें और बुजुर्गों को समय पर भोजन, पर्याप्त पानी और नियमित दवाइयाँ जो है वो लेने की सलाह दें। और यदि आपको अस्थमा, एलर्जी, मधुमेह या उच्च रक्तचाप जैसी कोई पुरानी बीमारी है तो मौसम बदलने के दौरान अपनी दवाइयाँ नियमित रूप से ले सकते हैं और डॉक्टर की सलाह के बिना दवा जो है वो बंद ना करें। दोस्तों, बदलता मौसम हमें ये याद दिलाता है कि स्वास्थ्य की रक्षा केवल इलाज से नहीं बल्कि सही दिनचर्या और सावधानी से ही जो है वो हो सकती है। संतुलित आहार, पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम, ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम हर मौसम में स्वस्थ रहेंगे।

जी दोस्तों, कार्यक्रम के अंत में बस मेरा यही कहना है कि स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। धन पद और सफलता का आनंद तभी लिया जा सकता है जब शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न हो। फिट रहने के लिए बड़े बदलाव नहीं, बल्कि रोज छोटी छोटी अच्छी जो आदतें हैं वो हमें अपनानी होगी। तो आज से ही हमें ये संकल्प लेना होगा कि अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही अपने परिवार, समाज और देश के विकास में बेहतर योगदान जो है वो दे सकता है। याद रखिए, पहला सुख निरोगी काया होती है। इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम से विदा लेती हूँ। जाने की इजाजत दें आपकी दोस्त डिंपल शर्मा को। नमस्कार।

युवा श्रोता अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:55 हो चुके हैं। लीजिए पेशे खिदमत है कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में आप जानेंगे हमारी इस केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी और उनके प्रसारण समय के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद शाम 6 बजे सुनेगा आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार होंगे शाम 6:05 पर। FM चूरू के स्टूडियो से आप सुन सकते हैं देशभक्ति फिल्मी गीत समय।

रहेगा शाम 6:10 का। शाम 6:20 पर रिले किए जाएंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से संस्कृत में समाचार। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकते हैं आकाशवाणी केंद्र जयपुर से शाम 6:30 पर। जिले की चिट्ठी का प्रसारण होगा शाम 6:40 पर और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार सुनिएगा शाम 6:45 पर। किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती और गृहस्थी, समय रहेगा शाम 7 का। रात्रि 8 आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। समाचार संध्या और न्यूज 8:09 रिले किए जाएंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रात्रि 8:45 पर और रात्रि 9 कार्यक्रम बाता ही चाले सुनेगा रात्रि 9:15 पर। ईमेल्स पर आधारित राजस्थानी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गोरबंद पेशे खिदमत होगा रात्रि 10। रात्रि 10:30 पर लुत्फ उठाइएगा शास्त्रीय संगीत का। हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रात्रि 11 और अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 11:05 पर।

श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में आपने जाना हमारे इस केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी और उनके प्रसारण समय के बारे में।

FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं। श्रोता आप सुन सकेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार होंगे शाम 6:05 पर। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर शामिल होने की अपील की।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के

0: अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही अपने आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि AI विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यी जांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों का त्वरित निवारण और व्यापार करने में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि यह सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि 15 अगस्त से प्रभावी होने वाला भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता ब्रिटिश संसदीय इतिहास में सबसे तेजी से लागू होने वाला व्यापार समझौता बन जाएगा। कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई थी। बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट मैच भारत और आयरलैंड के बीच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Home Minister Amit Shah laid a detailed roadmap to achieve the vision of a drug-free India today. During a meeting organized by the Narcotics Control Bureau, the Home Minister launched the vision document on narcotics control from 2026 to 2029. Earlier, addressing the 10th APEC level meeting of the Narco Coordination Center in New Delhi, the Home Minister called for a united war against drugs, saying that drug menace threatens national security, social stability, economic interests and the future of youth and the country. He urged spiritual leaders, youth and mothers to come together on a single platform to win this war.
2: Today, our country stands at a critical juncture in its fight against narcotics. The next 3 years will determine whether drugs prevail over us or we prevail over drugs. My humble appeal to all of you is that for the future of our nation over the next 100 years, this is a battle we must win. Win with the determination and win through our collective efforts.
1: The Ministry of Health and Family Welfare has proposed amendments to the Drugs Rules 1945 to simplify the procedure for obtaining permission for import of drugs for examination, test or analysis. The ministry said that the amendment introduces an acknowledgement-based system for import of all drugs in small quantities for analytical and non-clinical testing purposes.

0: आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े।
1: महेंद्र कपूर की आवाज के साथ ही आज का देशभक्ति फिल्म गीतों का एक कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM 110.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 होने को हैं। आइए सुनते हैं दिल्ली केंद्र से रिले संस्कृत में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: ये पूरे नेटवर्क पर लक्षित इंटेलिजेंस लीड कार्रवाई करें और उनके नेटवर्क को नष्ट कर दें। दूसरा है प्रीकर्सर्स एवं सिंथेटिक ड्रग कंट्रोल। उत्पादन स्तर पर ही हमने नशे को रोकने की रणनीति अपनानी पड़ेगी और कैपेसिटी बिल्डिंग, कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग जो तंत्र को सक्षम बनाने के लिए और आधुनिक बनाने के लिए ये चौथे स्तंभ की रचना की गई है।
1: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवोचत् यत् नशामुक्त भारत अभियानं जनसहभागित्वेन चालितं जनान्दोलनं जातम्। मादकद्रव्य मुक्त भारत निर्माणस्य महत्व विषये सामाजिक न्याय सशक्तिकरण राज्यमन्त्रिणः बीएल वर्मणः लेखं विनिमयीकुर्वन् श्रीमोदी एतत् अवोचत्। उत्तर प्रदेश आरक्षकेण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासस्य दान राशि स्तेय प्रकरणे एफआईआर इति प्रथम सूचना प्रतिवेदनाधारेण अष्टौ जनाः निगडिताः। इदं तावत् प्राथमिकं प्रतिवेदनं मुख्यमन्त्रिणः योगी आदित्यनाथस्य निर्देशने विशेष निरीक्षण दलस्य अनुशंसनानन्तरं पञ्जीकृतमासीत्। इदं प्रकरणं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासेन प्राप्तानाम् उपहाराणां दानानां च स्तेय सम्बन्धिनाम् आरोपाणां प्रकाशनानन्तरं सम्मुखमागतम्। न्यासस्य अनुरोधे मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन एकस्य एसआईटी दलस्य गठनस्य आदेशः प्रख्यापितः। न्यासीय सदस्यस्य कृष्णमोहनस्य लिखित अभियोगाधारेण श्रीराम जन्मभूमि आरक्षक केन्द्रे अयम् अभियोगः प्रविष्टः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। ह्यः वाशिंगटन नगरे आयोजिते द्वितीये पैक्सिलिका शिखर सम्मेलने भारतेन सह अन्यैः चतुस्त्रिंशत् देशैः कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रविधीनां विकासाय विश्वसनीय दृढ आपूर्ति श्रृंखलायाः निर्माणार्थं अमेरिका नेतृत्वे एकस्मिन् महत्वपूर्ण प्रस्तावे हस्ताक्षरं विहितम्। आर्थिक विषयानाम् अमेरिका उपसचिवः जैकब हेलबर्गः अवोचत् यत् एआई अवसरे संयुक्त विवरणम् इत्यस्य अन्तर्गतं प्रतिभागी देशाः एआई युगे विकासानुकूलं नवीनतानुकूलं च नियामक दृष्टिकोणं प्रति सहमतिं प्रदर्शितवन्तः। प्रतिनिधिभिः सह संवादे श्री हेलबर्गः प्रत्यपादयत् यत् अमेरिका भारतेन सह स्वस्य सहभागितां सुदृढीकर्तुं सोत्साहम् अग्रे आयाति। अस्मिन् शिखर सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधित्वं इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्रालयस्य सचिवेन एस कृष्णन महोदयेन अथ च भारतीय उद्योग क्षेत्रस्य प्रतिनिधिभिः कृतम्। अद्य देशस्य विभिन्न भागेषु आशुरा ए मुहर्रम पूर्ण श्रद्धया गांभीर्येण च आचर्यते। अयं दिवसः पैगंबर मोहम्मदस्य दौहित्रस्य हजरत इमाम हुसैनस्य वीरगतिं संस्मरति। हजरत इमाम हुसैनः कर्बला युद्धे सत्यस्य सदाचारस्य न्यायस्य च रक्षणार्थं स्वप्राणाहुतिम् अयच्छत्। अस्मिन्नवसरे देशे स्थाने स्थाने ताजिया यात्राः निष्कास्यन्ते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य हजरत इमाम हुसैनस्य त्यागं संस्मृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीय माध्यमेन प्रेषिते सन्देशे तेनोदीरितं यत् हजरत इमाम हुसैनस्य जीवनं सत्यस्य न्यायस्य च पथि दृढतया स्थातुम् अद्यापि जनान् प्रेरयति। अत्रावधेयं यत् राष्ट्रिय राजधान्यां देहल्यां जामा मस्जिद, निजामुद्दीन, ओखला, महरौली इत्यादिषु विभिन्न प्रमुख स्थानेषु मोहर्रम यात्राः आयोज्यन्ते। भारतस्य विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अस्य मासस्य 24-25 दिनांकयोः दक्षिण कोरिया देशस्य आधिकारिक यात्रां विहितवान्। स्वयात्रावधौ डॉ जयशंकरः द्विपक्षीय सम्बन्धान् सुदृढीकर्तुं दक्षिण कोरियायाः विदेशमन्त्रिणा चो ह्यून इत्यनेन सह विस्तृताम् उच्चस्तरीय चर्चां विहितवान्। उभाभ्यां नेतृभ्यां अनेक प्रमुखाणां

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय आयोजन कल जयपुर में राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी की लॉन्चिंग होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक मुहर्रम आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मातम के बीच कर्बला में ताजिए दफनाए जा रहे हैं और प्रदेश में बीते 24 घंटों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज, मॉनसून के अगले हफ्ते तक और आगे बढ़ने की संभावना। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर जयपुर में कल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाले समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उद्योग तथा वाणिज्य विभाग की योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण अनुदान और सब्सिडी के डमी चेक प्रदान करेंगे। वेरिको की योजनाओं के लाभार्थियों को भी भूमि आवंटन पत्र और ऑफर लेटर सौंपेंगे। प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम के दौरान राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी, ODOP कॉफी टेबल बुक और रैम पोर्टल भी लॉन्च किए जाएंगे। समारोह में रिको की डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी के आवंटन पत्र और ऑफर लेटर भी प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, राज्य मंत्री के विश्नोई सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाया गया। युवाओं और नई पीढ़ी में नशे तथा मादक पदार्थों के बढ़ते इस्तेमाल को रोकने और उन्हें जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस मौके पर देश प्रदेश में विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। श्री शाह ने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल के दौरान 1,18,00,000 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थों को जब्त किया गया है। उन्होंने कहा कि यह आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं।
1: इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 26 से 29 का जो रोडमैप है वो चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। पहला स्तंभ है एनफोर्समेंट, इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस। इसका उद्देश्य है पूरे नेटवर्क पर लक्षित इंटेलिजेंस लीड कार्रवाई करें और उनके नेटवर्क को नष्ट कर दें। दूसरा है प्रीकर्सर्स एवं सिंथेटिक ड्रग कंट्रोल। उत्पादन स्तर पर ही हमने नशे को रोकने की रणनीति अपनानी पड़ेगी और कैपेसिटी बिल्डिंग, कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग जो तंत्र को सक्षम बनाने के लिए और आधुनिक बनाने के लिए

0: ये चौथे स्तंभ की रचना की गई है।
1: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम रखे गए। डीग में जिला कलेक्टर राजकुमार कसवा की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें लोगों को नशा मुक्त भारत अभियान की जानकारी दी गई। नागौर में साइकिल जागरूकता रैली निकालकर नशा नहीं करने का संदेश दिया गया। जैसलमेर में माए भारत के स्वयं सेवकों ने नशे के दुष्प्रभावों को लेकर आम जन को जागरूक किया। पाली के बाली में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान समाज को नशे के नुकसान से जागरूक किया गया और नशा मुक्त भारत के निर्माण में सहयोग करने का संदेश दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके तहत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। हालांकि जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल से आगामी 4 जुलाई से उड़ानें संचालित हो जाएंगी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में पत्रकारों को बताया कि नए टर्मिनल से हवाई सेवाएं शुरू होने से पश्चिमी राजस्थान की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यहां पर्यटन और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयां मिलेंगी।
2: जोधपुर का हवाई अड्डा केवल जोधपुर शहर के लिए नहीं अपितु पूरे पश्चिम राजस्थान के लिए एयर कनेक्टिविटी का एक बड़ा साधन है। जिस तरह की डिमांड बढ़ी थी, उस बढ़ी हुई डिमांड के चलते हुए हमारे पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत दबाव भी था और ये मांग थी, आवश्यकता थी कि हम एक नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनाएं। ये सपना 4 तारीख को साकार होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक मुहर्रम आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर शहीदों की याद में जुलूस के साथ ताजिये निकाले जा रहे हैं। इन्हें करबला मैदानों में परंपरागत तरीके से दफनाया जा रहा है। इससे पहले प्रदेश भर में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मजलिसें और धार्मिक सभाएं आयोजित की गईं। जयपुर के रामगंज, दिल्ली रोड और चार दीवारी क्षेत्र में जगह जगह लंगर और पानी की छबीलें लगाई गई। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर मुहर्रम के मौके पर बड़ी संख्या में जायरीन ने फातिहा पढ़ी। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: आज मुहर्रम की 10वीं तारीख आशुरा के अवसर पर अजमेर दरगाह शरीफ सहित जिले भर की मस्जिदों में अकीदत और एहतराम के साथ विशेष धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में फातिहा पढ़ा गया। वहीं देश भर से आए जायरीनों द्वारा नमाज अदा कर अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी जा रही है। दरगाह शरीफ से छोटे बड़े ताजियों का जुलूस निकाला जा रहा है, जिसे फजर से पहले झालरा के में सहराब किया जाएगा। नलमद हारिज, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
1: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आमजन से इस मॉनसून के दौरान अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाने का आह्वान किया है। राज्यपाल ने आज जयपुर के निमेड़ा स्थित एक गौशाला में आयोजित धार्मिक आयोजन में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति भारतीय मूल्यों का आधार है। राज्यपाल ने गायों को चारा खिलाकर लोगों को जीवों के प्रति करुणा और दया भाव बनाए रखने का आग्रह किया। देश को सर्वाधिक सैन्यकर्मी देने वाला झुंझुनू जिले के वायु सैन्यकर्मी सुरेंद्र मोगा के सर्वोच्च बलिदान को नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट में शामिल किया गया है। सार्जेंट मोगा ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के लिए प्राण न्यौछावर किए थे। उनके साथ 5 अन्य जवानों को भी वेबसाइट के रोल ऑफ ऑनर में सम्मिलित किया गया है। इसके साथ ही युद्ध स्मारक की 3D वॉल पर भी सुरेंद्र मोगा का नाम अंकित किया गया है। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में एक प्रश्न के उत्तर में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद भारतीय सैनिकों की सही सूची देश को देने की बात कही थी। भीलवाड़ा में जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र की ओर से औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर लगाया गया। जिला

प्रबंधक कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि इस अवसर पर युवा संबल मेला भी आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्यमी के तौर पर प्रोत्साहित करने और स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना था। झुंझुनू जिले के कुतुबपुरा गांव में नाबार्ड और डालमिया सेवा संस्थान की ओर से आज नॉन वाटर शेड परियोजना का शुभारंभ हुआ। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉ आर रवि बाबू ने ग्रामीणों को वर्षा जल संरक्षण अपनाने और खेतों में अजोला और कम पानी की फसलें उगाने का आह्वान किया। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र में बैंकिंग सेवा के विस्तार और रोजगार परक प्रशिक्षण योजनाओं की शुरुआत की भी बात कही। और अब मौसम। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान पूर्वी और पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। इस दौरान दक्षिणी जिलों में भी कई जगह पर तेज बारिश रिकॉर्ड हुई। मौसम विभाग के अनुसार झालावाड़ जिले के अकलेरा में सर्वाधिक 5 सेंटीमीटर बारिश रिपोर्ट हुई। राजधानी जयपुर सहित आसपास के इलाकों में आज बादल छाए रहे और कई जगह पर बूंदाबांदी हुई। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग में प्री मानसून की बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। इस बीच मानसून गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ और भागों में भी आगे बढ़ा है। इसके अगले हफ्ते तक मध्य और उत्तरी भारत तक पहुंचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। IRCTC ने नया पर्यटन सर्किट डिवाइन ईस्ट टेंपल टूर शुरू किया है। इसके लिए भारत गौरव डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन चलाई जाएगी। प्रायोगिक तौर पर शुरू होने वाली इस 11 दिन की रेल यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों को उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर जाने का मौका मिलेगा। इसके लिए IRCTC के टूरिज्म पोर्टल पर या IRCTC पर्यटन कार्यालयों पर बुकिंग कराई जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय आयोजन कल जयपुर में राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी की लॉन्चिंग होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक मुहर्रम आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मातम के बीच कर्बला में ताजिए दफनाए जा रहे हैं। और प्रदेश में बीते 24 घंटों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज, मॉनसून के अगले हफ्ते तक और आगे बढ़ने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख अजय सिंह शक्तावत ने तैयार किया है। इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाने वाला मातमी पर्व मोहर्रम आज श्रद्धा के साथ मनाया गया। जिले में सुबह से ही रंग बिरंगे ताजिए निकाले गए। इस दौरान मोमिनों ने हैरतअंगेज प्रदर्शन किए। इससे पहले प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए शहर की निगरानी बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाए। शांति समिति की बैठक में जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक ने जुलूस के दौरान अफवाह, नशा, गुंडागर्दी या अव्यवस्था फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी। साथ ही आमजन से शांति और सौहार्द बनाए रखने की भी अपील की। पिछले दिनों पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी चित्तौड़गढ़ प्रवास पर रहे। राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष ने चित्तौड़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि सहकारी संस्थाएं समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रभावी माध्यम है। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बैंक की प्रगति और आधुनिक बैंकिंग सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी संस्थाएं आम जन को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने में महत्व

0: महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर जिले भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन ने दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर में पूजा अर्चना कर राष्ट्र कल्याण की प्रार्थना की। इस अवसर पर 12 साल विश्वास के जन कल्याण के की थीम पर 3 दिवसीय जिला प्रदर्शनी भी लगाई गई। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय वयोश्री के तहत राज्य सरकार एवं एलिम्को के सहयोग से इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत और सांसद सीपी जोशी ने शिरकत की। शिविर में 800 वरिष्ठ नागरिकों को 75 लाख रुपए मूल्य के सहायक उपकरण वितरित किए गए। पिछले दिनों चित्तौड़गढ़ सांसद और एयरपोर्ट सलाहकार समिति के अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में उदयपुर में एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद सीपी जोशी ने उदयपुर स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट को पश्चिम भारत का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एवं विमानन केंद्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने एयरपोर्ट पर टर्मिनल विस्तार, वाईफाई, डिजिटल सूचना प्रणाली, रनवे विस्तार, कार्गो हब एवं एयरो सिटी विकास की संभावना पर विस्तृत रोड मैप तैयार करने का भी सुझाव दिया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर डॉ. मंजू ने भारतीय पर्यटन एवं पुरातत्व विभाग, नगर परिषद और यूआईटी अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर ने दुर्ग पर हुए अवैध निर्माण पर कड़ी कार्रवाई कर अतिक्रमण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और अतिक्रमणों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए। बैठक में दुर्ग में विकसित की जाने वाली मूलभूत सुविधाओं, विद्युत साज सज्जा और यातायात प्रबंधन को भी प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ई वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण के लिए वेस्ट संग्रहण अभियान का शुभारंभ करते हुए ई वेस्ट रथ को रवाना किया गया। जिला कलेक्टर ने आमजन से पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करने की अपील की। इसी कड़ी में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत चित्तौड़ दुर्ग पर महास्वच्छता अभियान चलाया गया। जिले में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संकल्प और उत्साह के साथ मनाया गया। जिले भर में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में योग गुरु सुरेश शर्मा और डॉ. मुकेश माली ने योगाभ्यास कराया। कार्यक्रम के दौरान योग स्थल पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का भी लाइव प्रसारण किया गया। इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर सु पेश है प्रादेशिक समाचार।

0: पोर्टल भी लॉन्च करेला जलसा माए रिकोरी डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी रा आवंटन पत्र और ऑफर लेटर भी दिया जावेला कार्यक्रम माए उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और राज्य मंत्री के विश्नोई समेत वरिष्ठ अहलकार मौजूद रहेला आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है युवावा और नूवी पीढ़ी माए नशा और मादक पदार्था रे बद्धता इस्तेमाल ने रोकने और वाने जागरूक करने खातिर ओ दिन मनायो जावे है इन मौके माते देश प्रदेश माए न्यारी न्यारी गतिविधियां राखी जी नूवी दिल्ली माए नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर री मीटिंग माए गृह मंत्री अमित शाह नशे रे खिलाफ एकजुट वेर युद्ध छेड़ने रो हेलो करो वणा कहो कि मादक पदार्था रो ओ कारोबार देश री सुरक्षा सामाजिक व्यवस्था आर्थिक हिता और युवावारे भविष्य खातिर मोटो खतरो है श्री शर्मा आध्यात्मिक नेतावा युवावा और मातावा सु इन अभियान माए मिलर भाग लेवारी अरज करी है इन मौके माथे श्री शाह कहो के वारी सरकार रे कार्यकाल रे चालता 1,18,00,000 किलो सु बत्ती नशीला पदार्था ने जप्त करो गयो है वणा कहो कि ओ आंकड़ो नशीला पदार्था री तस्करी रे खिलाफ सरकार री लगातार कार्रवाई ने दर्शावे है
1: इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 26 से 29 का जो रोडमैप है वो चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है पहला स्तंभ है एनफोर्समेंट इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस। इसका उद्देश्य है पूरे नेटवर्क पर लक्षित इंटेलिजेंस लीड कार्रवाई करें और उनके नेटवर्क को नष्ट कर दें दूसरा है प्रीकर्सर्स एवं सिंथेटिक ड्रग कंट्रोल उत्पादन स्तर पर ही हमने नशे को रोकने की रणनीति अपनानी पड़ेगी और कैपेसिटी बिल्डिंग कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग जो तंत्र को सक्षम बनाने के लिए और आधुनिक बनाने के लिए ये चौथे स्तंभ की रचना की गई है
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस माथे प्रदेश माए न्यारी न्यारी जगावा माथे कार्यक्रम राख्या गया डीग माए जिला कलेक्टर राजकुमार कसवारी अध्यक्षता माए कार्यक्रम राख्यो जो इन माए लोगा ने नशा मुक्त भारत अभियान री जानकारी दी नागौर माए साइकिल रैली निकालर नशो नी करने रो संदेश दियो जैसलमेर माए भी माए भारत रा स्वयं सेवका नशा रे दुष्प्रभावारा बारा माए जानकारी दी पाली रा बाली माए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय री कानिसु कार्यक्रम राख्या गया इन रे चालता समाज ने नशे रे नुकसान सु जागरूक करो गयो और नशा मुक्त भारत रे निर्माण माए सहयोग करने रो संदेश दियो गयो स्वास्थ्य मंत्रालय दवा नियमा माए संशोधन रो मसौदो जारी करो है इन रे तहत आयात करी जावण वाली दवावारी बचोड़ी वैधता अवधि यानी सेल्फ लाइफ आयात रे बखत कम सु कम 12 महीना होनो जरूरी वेला हालांकि जैविक दवावां और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवावां खातिर मौजूदा नियम लागू रहेला इन खातिर आयात्री बकत कम सु कम 60% सेल्फ लाइफ होनो जरूरी वेला मंत्रालय रे मुजब इन संशोधन सु दवावारी गैर जरूरी बर्बादी कम वेला और दवा भंडार रो बेहतर उपयोग वे सकेला मंत्रालय स्पष्ट करयो है ओ प्रस्ताव केवल आयात रे बकत दवावारी बचोड़ी सेल्फ लाइफ सु जुड़ियोड़ो है जोधपुर हवाई अड्डा माथे नुआ टर्मिनल सु आवती 4 जुलाई सु उड़ाना संचालित वेला केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर माए पत्रकारा ने बतायो कि नुआ टर्मिनल सु हवाई सेवावां शुरू होने सु पश्चिमी राजस्थान री कनेक्टिविटी बदली और पर्यटन और औद्योगिक विकास ने नुवी ऊंचाइयां मिलेली
2: जोधपुर का हवाई अड्डा केवल जोधपुर शहर के लिए नहीं अपितु पूरे पश्चिम राजस्थान के लिए एयर कनेक्टिविटी का एक बड़ा साधन है जिस तरह की डिमांड बढ़ी थी उस बढ़ी हुई डिमांड के चलते हुए हमारे पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत दबाव भी था और ये मांग थी आवश्यकता थी कि हम एक नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनाएं ये सपना 4 तारीख को साकार होने वाला है माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे
0: ऐ समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्र सु सुन रिया हो पैगंबर मोहम्मद रा नवासा हजरत इमाम हुसैन री शहादत रो प्रतीक मुहर्रम आज अकीदत और एहतराम रे साथे मनायो जा रियो है इन मौके माथे शहीदारी याद माए जुलूस रे साथे ताजिया निकालिया जा रिया है इन्हें करबला मैदान माए परंपरागत रीत सु सुपुर्दे खाक करियो जा रियो है इन सु पहलिया प्रदेश भर माए मुस्लिम बाहुल्य इलाका माए मजलिसा और धार्मिक सभावां राखी जी जयपुर रा रामगंज दिल्ली रोड और 4 दीवारी खेतर माए जगह जगह लंगर और पानी री छबीला लगाई जी अजमेर माए मुहर्रम रे मौके माथे खासो उछास देखियो जा रियो है ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती री दरगाह माथे फातिहा पड़ी और ब्यूरो माणा खबर नवीसू
3: आज मुहर्रम की 10वीं तारीख आशुरा के अवसर पर अजमेर दरगाह शरीफ

0: सहित जिले भर की मस्जिदों में अकीदत और एहतराम के साथ विशेष धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में फातिहा पढ़ा गया। वहीं देश भर से आए जायरीनों द्वारा नमाज अदा कर अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी जा रही है। दरगाह शरीफ से छोटे बड़े ताजियों का जुलूस निकाला जा रहा है, जिसे फजर से पहले झालरा के में सहराब किया जाएगा। नलमा दादीच, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
1: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आम जनसू इन मॉनसून रे चालता 32 पेड़ लगाने रो हेलो करियो है। राज्यपाल आज जयपुर रा निमेड़ा थापित एक गौशाला माए राखीजा धार्मिक आयोजन माए भाग लियो। इन मौके माते वणा कहो कि सनातन संस्कृति भारतीय मूल्यारो आधार है। राज्यपाल गाया ने चारो खिलार लोगा ने जीवा रे प्रति करुणा और दया भाव बनाए राखने री अरज भी करी। देश ने सबसू 32 सैन्य कर्मी देवन वाला झुंझुनू जिला रा वायु सैन्य कर्मी सुरेंद्र मोगा रे सर्वोच्च बलिदान ने नेशनल वॉर मेमोरियल री वेबसाइट माए भेड़ो करियो गयो है। सार्जेंट मोगा ऑपरेशन सिंदूर रे चालता देश खातिर आपरा प्राण न्योछावर करया हा। मारे साथे दूजा 5 जवाना ने भी वेबसाइट रे रोल ऑफ ऑनर माए भेड़ो करियो गयो है। इनरे साथे ही युद्ध स्मारक री 3D वॉल माथे भी सुरेंद्र मोगा रो नाम लिखियो गयो है। ध्यान जोग है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद माए एक सवाल रे जवाब माए ऑपरेशन सिंदूर रे चालता शहीद भारतीय सैनिकारी सही सूची देश ने देने री बात कही ही। भीलवाड़ा माए जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र री कानिसू औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर लगायो गयो। जिला महाप्रबंधक कमलेश कुमार मीणा बतायो कि इन मौके माथे युवा संबल मेलो भी राख्यो गयो। इनरो लखस युवावा ने उद्यमी रे तौर माथे प्रोत्साहित करने और स्वरोजगार खातिर प्रेरित करयो गयो है। झुंझुनू जिले रे कुतुबपुरा गांव माए नाबार्ड और डालमिया सेवा संस्थान री कानिसू आज नॉन वाटर शेड परियोजना रो शुभारंभ हुयो। नाबार्ड रा मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर आर रवि बाबू ग्रामीणा ने बिरखा रे पानी ने भिड़ो करने और खेता माए अजोला और कम पानी री फसलां उगाने रो हेलो करियो। इन मौके माथे वणा खेतर माए बैंकिंग सेवावां रे विस्तार और रोजगार परक प्रशिक्षण योजनावां री शुरुआत री बात भी करी। IRCTC नुओ पर्यटन सर्किट डिवाइन ईस्ट टेम्पल टूर शुरू करियो है। इन रे खातिर भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन चलाई जावेली। प्रायोगिक तौर माथे शुरू होने माथे इन 11 दिन री रेल यात्रा रे चालता श्रद्धालुआ और सैलानिया ने उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड रे खास तीर्थ स्थला माथे जावन रो मौको मिलेला। आ यात्रा दिल्ली माए सफदरगंज रेलवे स्टेशन सु शुरू वेली। रेलगाड़ी माए यात्रियां ने 3-स्टार होटल माए रुकाणो भोजन समेत AC वाहना माए दर्शनीय स्थल माथे घुमाया जावेला। इनरे खातिर IRCTC रे टूरिज्म पोर्टल माथे या IRCTC पर्यटन कार्यालय माथे बुकिंग कराई जा सके है। अरब है मौसम। प्रदेश माए लाडला 24 घंटा रे चालता पूर्वी और पश्चिमी भागा माए कुछ एक जगावा माथे बारिश की गतिविधियां दर्ज करी जी। इनरे चालता दक्षिणी जिला माए भी कई जगावा माथे तेज बिरखा दर्ज हुई। मौसम महकमे रे मुजब झालावाड़ जिला रा अकलेरा माए सबसू 32.5 सेंटीमीटर बिरखा दर्ज हुई। राजधानी जयपुर समेत आसे पासे रे इलाका माए आज बादल छाया रिया और कई जगावा माथे बूंदाबांदी हुई। महकमा रे मुजब आवता 2-3 दिना माए बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग माए प्री मानसून री बिरखारी गतिविधियां बणियोड़ी रह सके है। इन बीचे मानसून गुजरात और मध्य प्रदेश रे कई और भागा माए आगे बढ़ियो है। इन रे अगले हफ्ते ताई मध्य और उत्तरी भारत ताई पहुंचने खातिर परिस्थितियां अनुकूल बणियोड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 28 जून ने आकाशवाणी रा मन की बात कार्यक्रम माए आपरा विचार साझा करेला। ओ मासिक रेडियो कार्यक्रम रो 135वां एपिसोड वेला। कार्यक्रम रो प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन रा सगला चैनला AIR न्यूज री वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप माथे करियो जावेला। साथे ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय रा YouTube चैनला माथे इनरो सीधो प्रसारण भी वेला। हिंदी प्रसारण रे तुरंत पाछे क्षेत्रीय भाषा मा माए भी कार्यक्रम रो प्रसारण करयो जावेला। और आखिर माए खास खास खबरां आप एक कर फेरू सुनो। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस रे मौके माथे राज्य स्तरीय आयोजन काले जयपुर माए। राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी री लॉन्चिंग वेला। गृह मंत्री अमित शाह अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस रे मौके नशे रे खिलाफ एकजुट होर युद्ध छेड़ने रो हेलो करयो। हजरत इमाम हुसैन री शहादत

0: रो प्रतीक मुहर्रम आज अकीदत और एहतराम रे साथ मनायो जा रियो है। मातम रे बीचे करबला माए ताजिया दफनाया जा रिया है और प्रदेश माए लाड़ला 24 घंटा माए कुछ एक थोड़ा माथे बिरखारी गतिविधियां जारी। मॉनसून रे अगले हफ्ता ताई और आगे बदवारी आस है। इन रे साथ ही प्रादेशिक समाचार रो ओ बुलेटिन अठे ही पुरोव्यो माणा। आगलो समाचार बुलेटिन काले सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: FM 110.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बज चुके हैं। किसान भाई अब सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती और गृहस्थी।

0: कार्यक्रम खेती और गृहस्थी सुनणारे सगळे किसान भायाने गोपाल भाई का निशु
1: और खेता भाई का निशु
0: मोकळा मोकळा
1: राम राम। गोपाल भाई दया आज जोश में
0: भाई, जोश तो ये है के किसाना के जो खेता में हो जाए ने जद जिया पेड़ पौधा है भाई यहाँ पल पलान लाग जाए ने भी यही देखो के किसान है जगह एकदम खुश हो जाए और खुशी को देखो के बात भी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्योंकि खेती किसाने में थे जानो के खेता भाई किसान के तो 365 दिन है जगी बाकी है क्या पूरा शेड्यूल बने हुए हैं, छुट्टी को दिन मांगे खत्म हो वही को नहीं तो भाई एक फसल को काम सल्टाऊ को नहीं भी ऊपर आगली की तैयारी करने लग जा
1: हैं। ठीक बात
0: तो
1: है।
0: अब जो टीम चल रही है वो देखो के खरीफ को शुरू हो ही गयो
1: हैं भाई। बाइतांग और बगतर थे बिरखा की दोनों की बात करी नहीं हाँ। दोनों अंग आवे तो किसान के छिन चट जाए
0: घुगरिया बन जाए
1: है ने
0: हाँ।
1: और बा घुगरिया की रौनक तो नक ही है उड़ा रहे तनी आले बा
0: भाई देखो कायदो भी है क्योंकि किसान है जो खेता भाई देखो आपको पेट तो भरे ही भरे बाकी और जगह मानस ने
1: जिया जुन को पेट भरे
0: बाको देखो के पेट भरे अपना जो पशुधन है तो बाको भी देखो के पेट है जो भरे और किसान है जो देखो के हमेशा देखो के दिन भर रात दिन देखो के काम के मां लागियो रहे है तो ई खातर टेम पर जब बिरखा हो जाने तो पीवने को तो आज कुंडा में पानी और खेतांग में देखो के 5-4 दिन ही हो यही पड़े हीरा की पड़े लगी।
1: ठीक बात।
0: अब हीरा की पड़ने से उसका मूक प्राणी पशुधन जो है ना अपनो तो बाके चेहरे पर भी देखो के
1: हैं मुंह मारने रहे हो
0: हाँ, क्योंकि जका दूध दें खेतों भाई बांके तो देखो के खाज है जी दिन में सगड़ा करें कदे हाथ फेरे कदे भूंगरों खाज करें कदे वन पानी पियावे कदे नीरे कदे क्यों ही पण थे जानो के बांगे सागे सागे जगह हिना पशु ही जगह कोई सुध बुध कौन ले तो बांगी सुध है जी देखो प्रकृति ले और बूढ़िया हमेशा कहता है के भया खेत को पेट है जो बड्डो बहुत है गरा चाहे बकरी होवे चाहे रेवड़ होवे पशुधन होवे अर घर को कोई मोटियार हुआ चराना रो खेत ले जा ने चाहे क्यों ही ना दिखो पर फिर भी ए जगह जीव ने ए इन्हें भी ने सीवा सरवाटा में मुंडा मार मूर के एर आपकी व्यवस्था है जगी जचा ले हैं।
1: ठीक
0: तो ई खातर देखो के बिरखा तो होगी और बुआई का काम जड़ा सड़ का जोर का लग गया तो बटे तो किसान है जगह देखो के खेत बा भी दिया है और शुरुआत के मां जका किसान है खेत तैयार करेड़ा बीज बोडेगी बंग व्यवस्था ही और खेत बाया बंग है खेता भाई खेता का मां जका मूंग है ने भाई इश्या हो गया छोटा छोटा भाई इश्या फूट रहा लग गए जाने मोबाइल में फोटो खींच लिया मांगी है एक तो कोई भी छोटी चीज हो ने चाहे गिलास ही हो चाहे लोटो है चाहे बाल्टी है टापर चले ने
1: खिलो ना बकरी हो हाँ
0: बकरी ब्यावर भी दो बच्चे कहेंगे पहले बकरिया गलत ना होता।

0: दो लोटिया था लटकेड़ा, तो घर का मां टाबर ठीक रहता तो माने क्या दिन भर गोदी लिया भाजा फिरता है। तो छोटी कोई भी चीज हो बा फूटरी लागे सोनी लागे, बिको हरेक देखो का मानस को भी का जो ध्यान है वो भी आकर्षित हुए। तो जका मूंग बाया ने वह दो दो तीन तीन पत्ती का खुडांग मा हिस्सा दिखे कह यहाँ देखी थी सोर हो धीरे धीरे देखो के बिरखा तो अब हो ही सी, क्योंकि किसान के जीवन में तो देखो का आस हो आस बड़ी है, आस है तो अपनो जीवन है खेता भाई, आस नहीं है तो थे जानो के क्यों को
1: आस टूटी सांस टूटे।
0: हाँ अब देखो के
1: पने देखो आस है नी,
0: हाँ
1: आस करे ही करे पने खेती बाड़ी का जो ढांचो है नी,
0: हाँ हाँ
1: वो बदल रहे है। और गोपाल भाई संकट तो इश्यू आ गयो कब खेत बचाने का जका लेला है नी, बैपड़न लाग गया,
0: सही बात,
1: सोचन लाग गया आपा भी सरकार भी के किया खेत बचे।
0: ठीक बात है भाई, ओ जको मनो चालू होयो ना तुम्हारो छठो मिनो, तो इक्की एक तारीख हुई देखो के एक जिकी केंद्र सरकार है अभियान चालू करियो खेत बचाओ अभियान। अपना जगह माननीय केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान है, तो बे एक जून ने देखो के ये अभियान को चालू करियो और पूरे मन्ने ओज को कार्यक्रम है वो चाल रही है। तो ओज को खेत बचाओ अभियान है वो देखो के आपने जगह देश भर का कृषि विज्ञान केंद्र है या कृषि विश्वविद्यालय है केंद्र और राज्य सरकार जगह बंगा जगह कृषि महकमा ही वह सगड़ा मिलके और ओज को अभियान है एक माह बढ़ चढ़ के भाग है जगह ले रहे हैं किसाना ने जानकारी दे रही। ओज को अभियान है एक माह जिया उर्वरक उपयोग है, मृदा परीक्षण है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, प्राकृतिक खेती है, जल संरक्षण है, हरी खाद को उपयोग है, जे मेवड़ो कम हो तो बिछी स्थिति में आप कौन सी खेती बाड़ी करा, नकली असली खाद या बीज की पहचान आप क्या करा, ऐज का हिस्सा विषय ही आप पर देखो के और बहुत कुछ जानकारी है जी दी जा रही है।
1: और देखो आपने चेष्टा करनी चाहिए जानकारियां ना आप अवेर हाँ और अपने लगे के अपने लिए उपयुक्त जानकारी है बने आप बरता भी और आपने तो कहबत भी है गोपाल भाई।
0: हाँ
1: जे अच्छा माड़ा किसे भी भांत का आदमियों में बैठनो पड़ जा
0: जी
1: तो बंगी बात है जी ध्यान सुनो।
0: हाँ हाँ
1: है ने बांगे बातांगे मां सगड़ी तो कोनी पर एक दो टप्पा तो इसे लाग देगा जका काम आवेगा।
0: ठीक बात
1: है ने भी नुगरा नुगरा मापा बैठा ने
0: हाँ
1: गुणगारा में बैठा जो तो बा मिया मालो के सोटन से जो की खरी बात ला देगी
0: श्याणी बात
1: है ने। हाँ। तो अपा चेष्टा करा
0: के
1: हरेक मिशन हरेक स्कीम हरेक योजनाओं आप जुड़ा
0: जी
1: और बंगी जकी गुणग्राही बात है बातों आप जुड़े गेर अपनी जकी खेती बाड़ी के मां जका लाभ है मुनाफा है जका आप जोड़ा अपने
0: घर रिश्ते में
1: और सगे आप भी चेष्टा करा के ओ जमानो नवाचारी है।
0: हाँ हाँ
1: और नवाचारी ई मायने में होनो जरूरी भी हो गयो के खेत है जका आवड़ी हो गया बाड़ा हो गया।
0: ठीक बात
1: है ने
0: भाई जोत तो कम होगी
1: नी
0: होगी साहब
1: और जोत कम होगी कोनी।
0: हाँ
1: गोपाल भाई ओंती भी जागी भाई जमीन को जो को छेड़ो है जो को तो तय ना पेड़ो है।
0: सही बात है तो बदनो तो हाथ को
1: बदनो तो हाथ को नहीं
0: कोनी बदनो
1: पर जकी जनसंख्या तो बढ़नी है
0: बढ़ रही है सा
1: भाई एक दादो बिंगे तीन बेटा हो या फिर बांगे दो दो या बांगे एक एक हो क्यों हो अंतो अंतो भी दादा रे खेत का 15 टुकड़ा तो 10 टुकड़ा तो आपा कर लिया
0: भाई खेता भाई अमर बेलारो सो काम हो रही
1: है, हो रही है।
0: बढ़ती जा रही है
1: हाँ।
0: नाल नाल निकल के करो किता ठाडा हो रहे हैं।
1: हाँ पण बाबा जमीन का नाल तो बीते रहना है नी
0: बीता ही
1: तो आपा भी बा में भी जमीन के में ईशा नाल रोपना है के जका अमर बेल बने।
0: ठीक बात है
1: मानो नी भी आपने कने जे 2 बीघा भी जोत आवे तो भी 2 बीघा की जोत में अपन 100 बीघा सो नाज लिया जत तो पार पड़े जमाने
0: श्याणी बात है।
1: और एक और भी फर्क आयो है पहले के जमाने में अब के जमाने में फर्क आयो है कि पहले देखो मोटो खानो और मोटो पैरनो।
0: सही बात
1: लागत बहुत कम है हाथा कमाएडो सो की हो अठे तानी के कपड़ा भी आता है जका बुनगे जका पैरता
0: जकांगन मशीन कोनी या दर्जी कुन सीमा कुन सकती तो बे चोलो पजामो बा गंजीर पठारो वो कपड़ो आया कर तो लाइनारो तो
1: काट कतरनी सुई हूं
0: और

0: दोलड़ो धागो पो के बिगमा
1: खम्पियो धागो के तो के
0: बे कपड़ा लुगाई जी की सीम दिया करती बे पर्या करता ठाटू धोके तकिया तले दाब देता परेश हो जाती आप भाई है तो बताओ भाभी एक
1: नाके की बात क्यों करा।

0: हाँ
1: रे आज दिन में तावड़ो पड़ो बिशो जे तावड़ो तपत रात नहीं हुई तो आपने कने चोखा कुल रेसी लगाने भी
0: ठीक बात
1: है नी।
0: है।
1: पर
0: हाँ
1: पहली को जमाने में आप मान लिया के जक्के और ने करा तो अपन जक्के माचे के ऊपर बैठा भी माचे की लकड़ी आपने खेत की
0: सही बात है
1: है
0: ऐसा।
1: रोईडे रोईडे का पा चोखा जका पागा कटा गया शीशमी जकी इस शेरू ले आ गए एर घरा खाती बैठा गया सिलवाऊ था आप माचो
0: जेल लगा दिया मांगे सिरसिंह को तेल तो 100 साल ही कौन जा।
1: घर को पूरा को पूरा निर्माण हो माचे को।
0: हो सा
1: फिर दूसरी बात करा कभी को ताणु बाणु सूत कातेड़ो एक पूरा को पूरा जके सूत को माचो मना आपा तो
0: हाँ।
1: मूंज को मना तो मूंज बंटेड़ी ओ जट को मना तो जट है जकी कातेड़ी है
0: भाई
1: नी
0: वो
1: क्या मैं मना
0: जगह
1: नी।
0: घरा में ढेरो रखा करता
1: हाँ
0: ने जो
1: हाँ
0: खालप का मायने अर बो देख लियो ते बे ढेरों कात कात के सूत अर इसी और डिजाइन काट के माचो बनाता तो खेता भाई भाई माचा 100 साल कुन जाता।
1: बिल्कुल तीन बांध का माचा होता एक तो जट का बकरी का या ऊंट का जट का कातेड़े का होता
0: हाँ।
1: एक मूंज का होता
0: होता सा
1: सरकने की मूंज
0: हाँ
1: जैसे कि
0: सरकनो
1: पीट पीट के रे बा मनाईड़ी आपने भी मूंज का मनाई था।
0: होता
1: तीसरो जो को सूत को तो सूत मान लो कि भी आप बाजारों आपने लेना
0: हाँ
1: पड़तो
0: हाँ
1: कच्चो सूत और बाकी फिर
0: हाँ
1: आपने काटना पड़तो तो
0: जी
1: तीनों स्वरूप में पूरो पूरो निर्माण है जो को मेहनत को
0: मेहनत को
1: और बनता इतना डिजाइनदार बुजो नाते फूल मोरिया ऊंट अठदानी के
0: हाँ
1: गोपाल भाई को नाम भी ऊपर पर लिखो जातो
0: भाई
1: है
0: आज भी
1: नी।
0: देखो के कई गांव में ही बे
1: हाँ
0: कारीगरे बन टेम तो देखो के मैं आंखियां देख के आयु वहां के घर
1: हाँ
0: जाके के ब्याह शादिया में आज भी गांव में और कई समाजा में इश्यू है के भाई को ब्याह करे ने जिदे बो जुगो माचू है ने
1: क्या बोलो लियो तो बनेंगे
0: वो
1: आते हैं नहीं
0: एक बन के
1: जगो
0: दिन बे शो माचो बनावे थे देखो बान बता दियो नाम पता तारीख बार क्यों थन मनाड़ू है ने वो कह दो साबी सूत में 2-3 बात को सूत काम में लेवे और वो शो 2200 बनावे तो देख है ने तो ये आश्चर्य हो है के वो सूत किया करके रे
1: कमर पत्थर सो लिख दे
0: किया
1: ऊपर।
0: बनाई है तो देखो के कला तो कला ही है।
1: तो माचो लकड़ी होगी
0: हाँ
1: बनावट आपनी होगी फिर
0: हाँ
1: भी ऊपर अपन दरी बिछाई दरी गई बैना
0: सही
1: है
0: बात
1: ना
0: है।
1: भाई
0: हाँ
1: बेलोगड़ों के ओ रुई हो कि और ने तो कातरों भी कात कात के जकी
0: हाँ
1: दरी है अपने बहना मन लेती दरी बिछा ली
0: बनती सा
1: दरी नहीं तो गुदड़ो गुदड़े में दादारी दो तीर माँ है जका बचेड़ा पुराना घाबा।
0: अच्छा एक आ बात भी है कि
1: हाँ
0: पुरानो जो को कपड़ो है भी को गुदड़ो को उपरा ने कोई आपा बनावा ने
1: हाँ
0: जिया कातर को तकियो है ने
1: हाँ
0: वो खेता भाई आपने स्वास्थ्य के लिहाजू देखा या आपा कई बार देखा ने नाड़ में दर्द आ गयो
1: कहाँ
0: जिया मोटा तकिया लगावे ने कोई रुई
1: हाँ
0: जान मीना की गला ले या फिर आजकल रुई आ रही है नकली रबड़ की बात देखने में तो भाई लगे भी गुद्दी है जी सीख जा है। और हरेक आदमी देखा के बंको ही फिर के भाई क्यों है बोले मेरे तो नाड़ में दर्द आ गयो पण कातर जी की बंसी डेने जी की घाबा बनाओ आपा वा कातर का तकिया बना के पतला पतला थे ग्रां इस्तेमाल करो एक भी आदमी आ उनका को लगावे ने तो ये आदमी जी शोर हो गए है तो देखो
1: वो घिचगिचो तो कोनी है पण वो लंबे लाभार हो है
0: लंबे लाभार हो।
1: काटो है वो को है
0: हाँ
1: तो करडो
0: देखो
1: पड़े
0: पहलड़ा की सोच देखो के कितनी दूरदर्शी के कातर जी की एने भी नहीं फेंकता को नहीं
1: फेंकता को
0: भी
1: नहीं
0: को भी तकियो बना लेता तो देखो भी कपड़े की जी की 1 इंच की कातर है ने भी को भी सदुपयोग हो गयो
1: तो आप बताओ
0: है।
1: कि अब आपने कने माचो आपनो आपने
0: हाँ
1: कने दरिया आपनी आपने
0: हाँ
1: कने गुदड़ा आपनो
0: जी
1: ऊपर ओढ़ने भी खेसलो और बाखलो तो देखो आपा बढ़ता ही
0: बनता सा
1: ते नी।
0: हाँ
1: तो आपा पूरा संसाधन आपने घर का होगा
0: हाँ
1: केक
0: हाँ
1: नहीं होममेड
0: हाँ
1: है नी मेड
0: सही
1: इन इंडिया होममेड
0: हो
1: रे बैक
0: सही बात है।
1: रे बैक इन
0: हो
1: इंडिया आत्मनिर्भर भारत सोखी बिंगता
0: सारो
1: हो
0: आ गयो बिम
1: ओनी बिंगमा।
0: हो सा
1: तो आप बताओ के फिर भी मैं लागत लागत की बेले बगत मापा उपयोग करया
0: सही बात है।
1: कच्चो माल संसाधन आपने करना भी
0: हाँ
1: कातर फेंक के आपा कूड़ डिब्र गिरया कूट लो यो खेता में परेशानी हुई सगली चीज हो नी बिंगे बजाय आपा बिंग उपयोग करियो
0: सही बात है।
1: है
0: अरे
1: नी।
0: कातर का तकिया खेता भाई वास्तव में ये चीज पर देखो खास करके घर जो है ने तो घर की जगह कुशल प्रबंध कह बा महिला हुआ है और महिला ही देखो के घर ने चमकावे और महिला ही आज की क्या मुंडो मार दे है
1: दिरानी
0: तो
1: भाई हो है
0: धीराणी भाई अभी चाबी को कड़ो है जो महिला का नहीं हुआ
1: आपा
0: तो
1: मानना नया भलाई आप अपने कर्ड में फिर वो करा घर बसावा
0: हाँ
1: घर तो बसानी है बसायो गोपाल भाई।
0: हाँ तो हरेक काम ने भाई आपने उठनो पहली उठेगी और आपने सोनो बाद में।

0: सोएगी हैं भोजन सेन पे लिख रहावेगी लास्ट में बा करेगी जी सब्जी नए बन जाए तो ही बाकी को नहीं कि मेरे खातर सब्जी कौन बन जाएगी बाकी कि है के देख जी के फलगा पूछ पांच गेर आपकी कड्डी एक दो दही में करके आपको किया के पेट भर ले हैं। तो बाग को देखो का हरेक काम करने की जिसकी टेक्नोलॉजी है तकनीक जिसकी है भी को देखो का कोई मुकाबला को नहीं। चाहे खेती बाड़ी का काम है तो बा में भी देखो का आपने जिसकी महिला जिसकी ही बाकी देखो के हरेक जगह जिसकी भूमिका है ना वह बहुत महत्वपूर्ण है। और सरकार इनकी भी चाह रही है कि भाई जीतो जी जानू या मन लगा के जगह आप काम करांगा ना भी का खेता भाई प्रकृति जिसकी है ना वह भी किया के भरपूर सहयोग दिया जी हाँ पढ़ने वालों टाबर है भी ना आप हमेशा ही काम वाया मेहनत करो और मेहनत को फल है जो मीठो हो आग गोखोगा तो देखो रिजल्ट है जो बढ़िया होगो और कहो भी गया के खसत खेती और जगत विद्या है।
1: तो गोपाल भाई ए बात तो आपा सगड़ा जाना
0: हाँ।
1: जो जमानु नहीं जमानु देखता देखता बदले है
0: हाथ
1: का संसाधन गमाया
0: हाँ।
1: आत्मनिर्भरता हूँ आपा नक गया माचो है जो को बाजारों खरीद के लेने लग गया लोहारो
0: हाँ।
1: बिंगे सागे पट्टा लेने लग गया
0: रबड़ का
1: रबड़ा रा अने फिर भी छाने भी दरी है जकी भी मोलारी कह गए गलिया मेला मारता फिर दरी ले लो खेसला ले लो बटू सोडियो भी बरा के लिया जो को बाजारों बरा के लिया ओडन भी जकी लिया कामलिया खेसला बेबी बाजार लिया
0: सही बात
1: तो सगड़ी लागत आ गई और आप भी लागत क्यों खाने पीने में लागत आ गई जका मिर्च मसाला सगड़ा आप कूट गए शानदार शुद्ध अपना घरे इस्तेमाल करता पापड़ बड़ी खेलरी संगड़ी मुंगेड़ी जकी सगड़ी चीज जकी आप रखता बिठे बैठे बिन बाजार ना आप आरोपित कर दियो गड्डी दाल ना आप रोजाना हिस्सों गायब कर दी खिचड़ी दलियो तो गयो ही गयो तो एक ढंगो कहा के जकी लागत थी जकी आप बता ली जान बुझियो बता ली या मान लो कह लियो बाउल में बता ली
0: सही
1: तो लागत पे बद गई जब फिर खेती ने गई घट तो फिर खेती का नहीं सोचना तो पड़ेगा नी नवाचारी खेती पे कह रहे दो बीघा में जगह अमर बेला नाल तो फिर अपन लगानी पड़ेगा
0: लगाना पड़ेगी
1: तो फिर लगाना पड़ेगा पक्ष आनो पड़ेगा अपने उन्नत खेती का नहीं
0: भाई खेता भाई आदमी जठे जी असली चीज है ना अपनी मूल जड़ बिन आप छोड़ गए जद की एक चक्का चौंध का नहीं तापड़िया होया ने बीता ही देखो का जाल में फंस गया और वो जो को जीवन चक्र है वो एक मकड़ी को जाड़ू है हैं। अब क्या का आदमी का जब थपेड़ा लागे विपरीत परिस्थिति आवे जब भी की अकल ठिकाना आवे
1: ठोकर लागे जब बेरो पड़ेगा टेसी दर्द हो रहे
0: पुरानी चीज जहाँ खान पान वो आयो तो कोविड जो को लेन आयो तो वो अपन बहुत कुछ सिखा के
1: शरीर में जान ही नहीं
0: हाँ
1: वो बच्चों वो चिलकणु जो को गयो
0: बाकी देखो बाकी बोलांगी पिंपली बोलगी तो कारण ही शिक्षा अपन आई मिली के जिकी असली चीज है भी दूर ना बाजो जको टाबर प्रकृति का जितो जुड़ाव में रहो नजदीक में रहो चाहे बड्डो ठेरो या कोई हो वो भी तो निरोग रहो और सबसे जो जरूरी काम है वह है काया निरोगी रहनी क्योंकि अपनी काया निरोगी रहेगी इज्जत तो देखो के संसार का चाहे कितना ही काम दाम हो कितो ही बाजा दौड़ हुए कितनी हो अपा हंसी खुशी के सागे भी पूरा कर लेगा पर अपनी काया इज्जत अपनो साथ नहीं देगी ने तो चाहे कितनी चकाचूंद हो कितना ही माल मिलता हो कितनी योजना चालीड़ी हो मन में इज्जत आपने सुकून कोनी तो बाकी का जगह जितना ही जगह अड़गा ही ने वह देखो बेकार है तो प्रकृति अपन जुड़ के जगह टेम टेम का या नवाचार का या खेती बाड़ी का समय अनुकूल की खेती है आ सारी बात ने ध्यान रख के और अपन ने आपने किसान बयान किया कि आगे बढ़ना चाहिए
1: ताकि गोपाल भाई देखो थोड़ो सा ध्यान ना पा लोक संगीत को कर लिया तो
0: भाई ये देखो के रेडियो का तीन उद्देश्य बताऊं मैं सूचना शिक्षा और मनोरंजन और कार्यक्रम भी आपने देखो के लम्बो चल है तो बात तो देखो ठावड़ी है तो बमलाल सोलंकी की आवाज ने माई एक लोक रचना किसान बयान सुना देवा
2: ये सकी खाटू के वो सकी

0: हाँ, तो अभी आप भवनलाल सोलंकी और साथियों की आवाज रमाए या लोक रचना सुनी। और अब देखो खेता भाई, कोई भी जियो को काम आपा करा न तो वो मिलजुल के करा न, बिको देखो के आनंद है वो न्यारू है
1: मिलजुल के गीते।

0: पाइप बदल देंगे लिए सगली बात में सजा सजे जरूरत होगी।
1: सही
0: नहीं ताने माने सजा का कह तो उधारा लेना पड़ेगा और कह फिर दाड़ी पर लेना पड़ेगा।
1: सही बात
0: है नी।
1: हाँ हाँ
0: तो वो भी शुद्ध हो गयो। दूसरों आप जो खरीदांगा बीज भी खरीदांगा खाद भी खरीदांगा छिड़काव के लिए उर्वरक रसायन सो भी खरीदांगा।
1: हाँ।
0: सामूहिकता में खरीदांगा दो पैसा सस्तो मिलेगा प्रमाणिकता नहीं आप पूछ सकांगा तो किन्ने भी सामूहिकता में नुकसान तो है ही।
1: अरबीम सागे खेता भाई आप भी है के पांच दस एक पंद्रह मानस एक जगह भेड़ा बैठेगा और कोई आप जी आप प्रस्ताव रखियो कोई बिंदु पर भाई वो काम किया कर बीज लियावांगा भाई कठू लियावा है तो भेड़ा बैठ के किए का कोई निर्णय निकल गया वने वो भी चोखो आवे क्योंकि भीम जे कोई से जे कमी बती हुए तो भाभी किए का शंका दूर हो जा तो भाई मिल के अब एक भाई है भी कन देखो के बीज मोकलो पड़े दूसरे कन को नहीं दो दाना ही तीसरो कह भाई हमारे कन तो पांच किलो ही मूंग पड़े ही मान तो पचास किलो मूंग और लेना पड़ सी है तो जगह कन पड़े ही बिन तो बेचना कौन पड़ा और जगह कन कोनी बिन लेना कौन पड़ा और घर की घर में ही रहेगी। जी हाँ ट्रैक्टर की बात बताई तो भाई सगड़ा जरूरी थोड़ी है कि ट्रैक्टर हो जरूर थोड़ी है कि हड़ा को साधन हो है। अब दस जना को समूह पांच जना के नहीं घर बहते हैं तो भाई आपका मिलजुल के देखो के हड़ाऊ जी भाई कर ली तो बल्ले बल्ले है, है? तो बीए के एज का किसान उत्पादक संगठन है। अब सरकार की आंकी भी मानसिकता होगी अब समूह एज का बनाया कोई कंजिया जोत कम है तो सरकार कहे भाई इतना जना समूह बना लियो थाने पट्टी दे देसिया तार दे देसिया और मिल के देखो कहे थे थारी तार बंदी कर लियो। तो ये बहुत सा ऐसा काम है जिसका समूह ने बढ़ाने के लिए और अपनी जगह सरकार है बेबान प्रोत्साहित करें तो बीओ के मिलजुल के जो आप काम करांगा भाई हाथ की आंगली खेता भाई इकसार को नहीं है। अब एक आंगली है बिंदु की है कह हर कोई मरोड़ के तोड़ गिरे पर भेड़ी हो वो मुक्को बन गयो है अरे आप कवाई आगे भाई संगठन में शक्ति हो तो मिलजुल के आप कोई काम करांगा बिका परिणाम जगह होगा ना औसत है वह एकल्पीय ना हो बहुत ज्यादा होगा। और आई देख लियो संयुक्त परिवार हम देख लियो संयुक्त परिवार का बहुत फायदा है एकल्पीय परिवार हो गया तो भाई इन्हें मैंने जो नाड़ने जाए तो इधर को आसरा कुंटा ताला ढके जाए क्योंकि समय इश्यू आ गयो है के दो मिनट आदमी सब्जी लाने जावे कह के जाग भाई मैं सब्जी लाने जाऊं दस मिनट लाग जाएंगे इतने देखो ले रू चूर दी चूर मोसो है तो थे जानो के टेम की जी नजाकत है बिन समझ के। और जी आज के टेम में भी आप इस तरह का जगह किसान उत्पादक संगठन ही मिलजुल के आपा कोई काम करांगा
0: भरोसो कमानो पड़ेगा।
1: हाँ
0: शानी बात भाई आपा भरोसो खोयो है नहीं मानस के प्रति मानस के खातर
1: हाँ।
0: तो बिने थाने भी नुकसान है मने भी है
1: जी
0: थाले घर भी ताला जुड़ के सब्जी लानी पड़ेगी और मने भी लानी पड़ेगी।
1: हाँ।
0: तो घाटो तो दोनों का नहीं हो
1: दोनों का नहीं
0: दोनों का नहीं हो नहीं
1: और ये चीज ने स्वीकार भी
0: स्वीकार करनी पड़ेगी।
1: हाँ।
0: तो एक और भी हो के बिंगो हो के रूपली पल्लर खोड़ में चले अपनी कह बती नी
1: तो
0: बोज में दो पीसा आ गया।
1: हाँ हाँ।
0: पीसा या फिर आप किंग रहा गोपाल भाई
1: सही बात है
0: भी आपा पहली कहता के बोरे लाओ को शीर है नी।
1: हाँ।
0: भाई आज मेरे कन कोई बोरो को नहीं तो कहते गोपाल भाई दे बोरो।
1: हाँ।
0: गोपाल भाई कने जोड़ो को नहीं तो गोपाल भाई तड़के कहते जोड़ो दियो
1: भाई समाज ई खातरी तो बने
0: वो सच हो।
1: हाँ।
0: पर गोपाल भाई कने बोरो जोड़ो दोनों मेरे कने बोरो जोड़ो दोनों गोज में पीसा है।
1: हाँ।
0: जद आवृत्ति आगे गोपाल भाई की अपन के छाप है।
1: हाँ।
0: है नी
1: सही किता ही अल्लाह मारो।
0: हाँ के जरूरत है अब आपा गोपाल भाई की दरावा क्यों गोपाल भाई के आप अणसरे तो आंखो नी।
1: हाँ हाँ।
0: आपा अपनी ओडा अपनी बिछावा के लेनो और के
1: भाई बा कह करे ने के अपनी अपनी डबली अपना अपना राग
0: तो बिंगे कारण हो के आदमी है जो को एकल खोरी होते गयो
1: ठीक बात है
0: और न इले की माननी न बिल्ले की माननी कह तो दरावे कोनी।
1: हाँ हाँ।
0: और जद कह करनी बे कदी इले पटपड़े में पड़े कदी इले पटपड़े में पड़े जद जाके शानो है रे यार गोपाल भाई की तो जरूरत थी अपन
1: जी
0: अपन तो आपने कर्मा गोपाल भाई की मुलाकात खोली नी।
1: हाँ हाँ।
0: फिर जाके बतला गोपाल भाई ने।
1: हाँ।
0: गोपाल भाई कह है तो कोई नी
1: सही बात है
0: तो गोपाल भाई फिर भरोसो क्यों करोगे बिंगो
1: ठीक बात है
0: भाई काल तानी आपनो शीर हो साजो हो पीडीए को प्रेम हो।
1: हाँ हाँ।
0: थोड़ो सो स्वांज होते भी प्रेम के तू लात मार के बाज गयो
1: माड़ी चीज है
0: अने आज अणसरी पीढ़िया पुट होया जो भरोसो की हो पर वो भरोसो तो फिर तोड़ने ने कमानो पड़ेगा
1: सही बात
0: है तो वो भगत आओ गयो के लोपा लोप भगत एकदम का।

0: रूपा लोभ भगत में अपने भरोसा देखो कमानो पड़ेगा। यहाँ को नहीं खेती में दाणो कमाना है, खेती में भरोसा भी कमानो पड़ेगा, पड़ोसियों को भी कमानो पड़ेगा, परिवार को भी कमानो पड़ेगा, और देखो जमीन को भरोसा तो अपने प्रति बहुत टूटो गए
1: बुढ़िया क्या करे ने।
0: अपा जमीन ने इतनी नशीली बना दी के बुझो ना, जमीन को सगड़ो ज्यादा भरोसा अपन तोड़े तो जमीन को भरोसा भी अपने बढ़ानो पड़ेगा।
1: भाई बुढ़िया में सही क्या करता आज भी कहे के मिल के चालूगा तो बीका देखो का फायदा गणा है। साख बनाता खेता भाई अपन
0: बर्स लागे
1: और खोता एक सेकंड लागे है। अब एक सेकंड में आपा खोदीर फिर आपा पछो चावा के बीबी लाइन पर भी गिल्ले पर आनो चावा टाइम बहुत लागे है।
0: और गोपाल भाई घरांगे बिचारा भींत है नी, मिस्त्री दो दिन में काट जा
1: काट दे सा,
0: पण भी भींत ने दुड़ाऊं ता है नी पीटियां लाग जाए
1: लागे सा
0: लागे नी
1: लागे।
0: और जद तनी बा धुड़े नी जद तनी इतो नुकसान हो चुक्यो है के बिंगे भरपाई को नहीं हुए।
1: ठीक बात है
0: नी
1: हाँ।
0: और कई कई परिस्थिति से आ जाए के बा ने काटने के लिए व्यूस हो जाए आदमी पर बिना नुकसान तो अपने समझना पड़ेगा नहीं।
1: ठीक बात है।
0: और नुकसान जानना पड़ेगा
1: हाँ हाँ।
0: और जानना भी कोनी पड़ेगा, भींत के इल्लपस और भींत के इल्लपस दोनों ने समझाना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, आप भी तो भी अपने समझना पड़ेगा
1: हाँ।
0: देखो फायदो तो देखो
1: इयासी
0: है
1: हाँ।
0: और देर सवेरे आगे भी आवेगी। और गोपाल भाई भी आप भी हुए
1: हाँ।
0: के जक्का भींत खिंचवाणिया हुए नी आदिया मादिया हुए जगह हाँ
1: हाँ।
0: बंग आपको नफो भी भींत के माँ हुए
1: होए होए
0: होए नी
1: होए
0: तो बीने भी आपने समझनी पड़ेगी। और आपा आप महसूस करनो पड़ेगा के आपा अपने घर की तासीर, आपा अपने खेत की तासीर, आपा अपने पशुधन की तासीर जीती जाना
1: हाँ।
0: क्यों बढ़िया कोई कौन जान सके, न पड़ोसी जान सके, न रिश्तेदार जान सके।
1: सही बात।
0: तो आपा भी तासीर के आधार के ऊपर अपने जो संप है, अपने जो की सामूहिकता है जकी बनाए रखा आगे बढ़ा।
1: तो बाता चिंता तो देखो का आपा और भी करांगा, पण पप्पू मस्ताने की आवाज रमाई एक लोक रचना किसान भाया ने और सुना दे।
0: सुनाओ सर।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: हाँ तो किसान भाई, अभी आपा पप्पू मस्ताना और साथियों की आवाज रमाई या लोग रचना सुनी इंडो और बिरखा होने से खेता भाई खेता का माज का रूख ने वे भी यहाँ पल पलाओ है। सूरज की देखो किरणा पड़े ने वहां के पत्तियां के ऊपर दिन के तो देखो वे लागे इतना फूट रहा जी करे खेत में गेड़ा के फोटूड़ा खेच लिया है। आगे देखो के जब टेम आओगी रुत आओगी भी टेम देखो के इंडा भी गालांगा उपगली भी मचावांगा सारा काम वे देखो के
2: तेजादानी मौज मस्ती है
1: क्योंकि आपने राजस्थान की संस्कृति है। और अब देखो के सागे सागे ई बात को भी आपने जो ध्यान रखना पड़सी के जिया शुरुआत में भी आप बतलाया के मौसम जो है एक माह बहुत कुछ बदला
2: बदल तो है।
1: आ दो तीन साल को भी जे इतिहास आप देखा ने तो पेड़ा कहता अप्रैल मई जून आग बरसती कठे बादल एक छांट को नामो निशान को नहीं। पर आ साल में आप देख रहे हैं 5 दिन

0: दस दिन जिये टेम्परेचर 40 ऊपर टप्पे तो बादल या इन्हें मैंने आके आंधी
1: पांच आंगल करी जा
0: कर जा तो उसको बदलतो मौसम है इके हिसाब हूँ अपन खेती बाड़ी का काम करना और इके हिसाब हूँ आप जो पशुधन है
1: बिंगे स्वास्थ्य को ध्यान रखना।
0: हाँ वो देखो के बहुत जरूरी
1: है। और वो भी यो है के अब कांदी तो की ठीक आई है
0: आई सा
1: और परेशान आम हूँ
0: हाँ, हाँ।
1: पर जो को लगातार थे तावड़े की बात करी नहीं बा कौन रही और बा भी कौन रही खतरनाक हो गयो कि आज आप आज की बैठे बात करा
0: जी
1: दिन में पड़े तावड़ो तकड़ो पटपड़ी पटपड़ी बड़े आज
0: पसीनो निकलो है
1: हाँ। और जी ही 5 बजा बादली आ खड़े हो के मैं बरसे को
0: सही बात
1: है
0: हाँ हाँ।
1: वो जो बदलाव है अब रात बा ठंडी रहनी दिन है जो को पूरो एकदम मंज तपत को
0: सही बात
1: तो बिंग माँ बीमार होने की संभावना सगड़ो ज्यादा हुए
0: ज्यादा रहे
1: और आपा तो फिर भी जाप तो कर ले पशुधन आपा किंग भरोसे छोड़ांगा भाई
0: सही बात
1: पशुधन के स्वास्थ्य के प्रति तो अपने जागरूक रहवांगा बिने या मानिए चालियो के ना रहे कोई तपत को नहीं बादली आ रहे अरे खुंटे का मान के आप छोड़ दियो जब वो तो बितावड़े में तप ही गो
0: अच्छा, जागोगे ने आप भी देखने के मावे के जब ऋतु परिवर्तन हो है तो बी टी एम के बांध बांध का जगह संक्रामक रोग है वह आपने पशुआ माँ के ज्यादा है तो बस यू बचाव खातर अब आप आज देखा के बड़ा बड़ा जगह गांव में ज्यादातर गांव में पशु औषधालय गवर्नमेंट खोल रखे और बड़े पशु जगह डॉक्टर है वे भी कार्यरत है और सरकार की तरफ देखो के अभियान भी चल रहे के घर घर जाके वे देखो के पशुओं के टीकाकरण करावे पर फिर भी कई बार के पशु इन मिने गेड़ हुए या कई किसान है जिनका खेता में रखे पशु है तो बठे रहने शिवबांग का सगड़ा को किए के कई बार टीकाकरण को नहीं हुए तो बठे आपनों किए के वो कर्तव्य बने के बी टाइप में जिया कोई पशु वंचित रह गयो ने तो डॉक्टर साहब है वहां संपर्क करके आपने पशुओं का टीकाकरण जो है वो जरूर करवाना चाहिए क्योंकि आगे आना जो को टेम है वो बिरखा को है जड़ी भी लगेंगी अब थे जानो के मुख प्राणी अब बोल के आके देख मारे बुखार चिटगी मारे नमूनी हो गयो मारे खुर पक्को हो गयो और मारे मुंह पक्को हो गयो अरे ए तरह का अड़ंगा के आईसाली हो अब कड़े कोई नया तो हुए को नहीं तो एक तो पशुओं को टीकाकरण कराना बहुत जरूरी है एक खेता भाई अक्सर आप देखा के गाँव की खेल ने कोई भी गांव में देख लियो थे
1: वहाँ
0: खेड़ा का माँ खेता भाई एक एक हाथ जिको वो जिकी गंदगी है ने ब्यू बे
1: खेल तो कादम भरी रहे
0: कादम और भी कादे में भी राम जाने किवरो केक की अड़गो जुको है तो आपा तो अब देखो के सगड़े गांव जाके खेल गांव की सफाई तो कौन कर सका पर जगह श्रोता ही जगह किसान है बाहू आप निवेदन कर सका के भाई आपने गांव में खेले तो कम से कम आपने पशु ही जो है वो पानी पीवेगो है तो टेम काट गए 2-5 युवा जगह ही भी को पानी काट गए और बाज की भी गंदगी या कूटरो जो है कांप जगी है वो सारा काट गए नाके गेर देना चाहिए ताकि बिक माँ की है जो पानी आप रखा पशुआ खातर अब आवारा पशु ही अब दूध जगा दे घर जगा आप खूंट जुड़ेड़ा रखा बांधो बटड़ा में घायल घायल के कुंडो काट गाड़ी दिन गमा 10 बारी पानी पियावा पर जिकी धार कुंदी पहली तो भाई धार देती पर अब वह टलगी तो बांधे को कह जेवड़ो काट दियो अब खेल इसी जगह है के बठे कोई भी जिया बकरी के मुंह को रोग होयडो है बेड़ का होयडो है कोई सांड डेबी को होयडो है अब स्वाभाविक सी बात है 30 लगेगी तो वो खेल पर जागो
1: जागो
0: और बठे पानी पीवेगो अब एक संक्रमित पशु है वो भी खेल में जाके पानी पी लियो ने तो वह कीटाणु जगाई वह पूरा पानी गवा फैल गया अब बठे स्वस्थ पशु जो जागो और वो बठे पानी पीवेगो वो भी रोगों ग्रसित हो गयो तो आपने गांव को यो जगह सुन रहे हैं कार्यक्रम वहां को देखो कह यो कर्तव्य बने के आपने गांव की जिकी खेल वन आप साफ सुथरी रखा ताकि आपनो जो पशुधन है वो निरोग रहे पशु किसान देखो के एक दूसरे का पूरक है घर जे किसान है धीणो नहीं है तो खेता भाई अपना गोडा जगह ही नई जूती बाजा ने चरेड़ चढ़ बिया कर लगा जाने टूटेगा कटाऊ तो पशु निरोग रखना भी बहुत जरूरी है
1: भी स्वाभाविक बात है नी के खेती बाड़ी का

0: जिसकी खेती है
1: हाँ
0: थाने मूंग बे सोना लागे नहीं
1: लाग गए
0: बांगे मूंगा जको गुण जदी करेगा जदे बे मूंगा लाडवांगा मा घी होएगो
1: सही बात
0: वो आवेगो किनो फेरे
1: बिल्कुल
0: वो आवेगो भी पशु
1: हाँ
0: और पशु भी आपा निरोग पशु स्वस्थ पशु को जो उत्पाद है वो लेवांगा
1: ठीक बात
0: जदी आपा पार पड़ेगी भी आपा मानन लाग गया के जकी फसल है
1: हाँ।
0: ज्यादा उत्पादक मात्रा में लेने का नसीली होगी दवाइयां की मांगी बहुत बहुत मात्रा होगी वहां दवाइयां की मात्रा के कारण जो पशु जो खा जो पूरा नशीलो खान लाग गयो
1: सही बात
0: नशीलो खान लाग गयो जो भी दूध के मई भी
1: हाँ,
0: जकी अपन दवाई तो गिरी खेत के मां वह दवाई है जकी गई पशु के पेट के मां
1: बिल्कुल
0: और फिर भी कुछ हिस्सो है जो आयो दूध के मां तो वो एक ढंगो आयो कि घूम फिर के अपने के नहीं
1: तो आपने पेट तक पुग
0: रहे नहीं वो
1: हाँ।
0: तो अच्छा आपा मान लो के मूंग ही बात करी आपा दाल भी मूंग लावा खेत तो लावांगा नाको कौन लावांगा
1: ठीक बात है
0: आपा कणक बाजरी लावांगा बा किनू खेत तो लावांगा तो आत कोनी आप ले खेत की तो आप बेच दे रहे सुधा आपा किनू लिया संभव ही कोनी होगी
1: अब
0: नाकू आओ क्यों दूसरो तो नाके फेरे थार भी रखे को नहीं सोच
1: सही बात
0: तो वो फेरे पूरो नुकसान है जो आपा झेल लियो है तो पशु धन आपा कने है तो भी पहली चेष्टा है कि भी पशु धन के पीड़ता नहीं खुराक भी निरोग फुके खेड़ा और स्वच्छ पानी को नहीं
1: सही बात
0: भी कने खुराक भी बा स्वच्छ फुके और बस स्वच्छ खुराक जद फुकेगी जद अपनो खेत है जो भी बचाने की मुहिम में स्वच्छता की मुहिम आओगे
1: सही बात
0: है नहीं तो अपने परंपरागत खेती का जो तरीका बने भी समझना पड़ेगा नवाचार ने भी आपने समझना पड़ेगा और बिंग बिचाड़े के एक रहनी एक पुल बनाना पड़ेगा के भी पुल के ऊपर आप जगह आगे बढ़ सका है नहीं इशू नहीं हुआ कि इन्हें कुएर इन्हें खाई है एक में तो पढ़ना तय हो तो किसी स्थिति न हो अपना कुएं को भी बचाव कर ले अपना खाई को भी बचाव करा बीच को गेलो है और भी गेले में बट गया अपना देखो पशु धन ने अपना बचाव और अपने खेत ने भी बचाव अपना स्वास्थ्य तो स्वाभाविक रूप में फिर आप ही बची जाओ
1: भाई अपा टेम टेम के बतलाव करता रहा के भाई अपनी जगह भूम है प्रकृति जगह है या खेत की मृदा कह दिया बिने अपा जीती सही रखांगा राजी रखांगा बिम देखो के सारे जीवा को जो हित है वो समाहित है क्यों सब्जी को उत्पादन जमीन में उसी अनाज को जमीन में उसी ये पेड़ पौधा फल जगह उत्पादन हो रही है तो जमीन बिना तो क्यों को नहीं
0: कोई नहीं
1: है अब पशुधन है तो घास फूस की व्यवस्था जगी होसी तो बात देखो जमीन में उगसी जदी तो बांसक होसी अब जमीन का माँ के आप जहर छिड़ छिड़के बिन कर दी एकदम खराब है अनाज कौन सब्जी कौन फड़ा कौन उत्पादन अपन करनो पड़सी क्योंकि इसो कोई विकल्प को नहीं कह भाई आगे कोई अब जरूरत ही को नहीं अपन क्यों कि जिंदा रहने के लिए भाई सारी चीजा जगी जरूरी तो प्रकृति ने बचाने के लिए निरोगी रखने के लिए पर्यावरण ने शुद्ध रखने के लिए आपनो जो आहार है वो बढ़िया रहे आपनो स्वास्थ्य बढ़िया रहे आपनो पशुधन को स्वास्थ्य बढ़िया रहे इसके लिए आपने खेत की माटी जिकी है बिन अपन देखो के जहरू बचानी बहुत जरूरी है और आ चीज आ बात जितनी तावड़ी आपने दिमाग में बैठ जाएगी ने बीता या मानो के अपा फायदा में रहेंगे
0: और एक और भी समझने पड़ेगी आपने जमीन की तस्वीर ने भी आपके समझ गया आपने बीज
1: हाँ।
0: बीज को उपयोग करना पड़ेगा
1: हाँ।
0: खेती को उपयोग करना पड़ेगा अब कई साल कुमारी कुमार बीजन लाग गयो चिणा ही बीजन लाग गया आ साल में मूंग ही मूंग है जो
1: हाँ।
0: बीजन लाग गया पर हरे खेत में मूंग हुआ कोई जरूरी को नहीं
1: है
0: मूंग खेत के आधार पर किस समय
1: नारी
0: नारी जमीन की तस्वीर के आधार पर नारी नारी अपने समझने पड़ेगी और मोटे रूप में चलता चलता देखो एक आप बात आप भी कर ले मूंग आधारित खेती है जकी आ आ साला में ज्यादा उन लागी रबे थे जिक्री करियो बड़ प्लांटा जका
1: हाँ।
0: देखिया वो भी थाने बुंटो भी मूंग
1: ही दिखियो
0: मूंग ही दिखियो नी
1: हाँ।
0: तो आपा आपने इलाके में माना आरएमजी 62 आरएमजी 268 आरएमजी 344
1: यानी
0: आईपीएम 23 विराट एक किस्म है जकी आपने अथुने राजस्थान के इलाके में एकदम उपयुक्त माने जाए
1: अनुकूल है
0: और बिजाई के लिए आप माना यहाँ के आंधी नाम है
1: हाँ हाँ
0: 20-25 जून लेके 15 जुलाई तानी है जो की उपयुक्त होगी
1: हाँ, हाँ
0: और अभी चेष्टा करनी चाहिए कि मैं होता ही

0: जी
1: नमी है
0: नमी
1: हरी माटी का मापा
0: की बुआई है जी
1: करा और लगे टगे 5-6 किलो प्रति बीघा 12-15 किलो है प्रति हेक्टर के हिसाब में बीज की दर और चेष्टा करा के फफूंद नाशी या राइजोबियम या पीएसबी कल्चर हूं आपा बिंग उपचार करके बीज गेरा हिसाब की बात करें 15-20 किलो नाइट्रोजन 40-50 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टर के हिसाब और जिंक की कमी है तो बिंगे हिसाब हूँ अभी मान्य जावे और खरपतवार नियंत्रण की भी मोटी मोटी बात करें तो बिजाई हूँ 20-25 दिन पच्छे जकी पहलो जुको उपाय है जुको निदान जुको कर लेना चाहिए और आवश्यकता हुआ जरूरत पड़े तो 35-40 दिन बाद में पीड़ा मोजेक वायरस त्रिप्स फड़ी छेद के जका जका रोग है बचाव का हिसाब हूँ आप ने करना चाहिए और अनुमान है कि 10-15 क्विंटल प्रति हेक्टर 5-6 क्विंटल प्रति बिघे के हिसाब हूँ जो मूंग उत्पादन दे सके तो मूंग दृष्टि आप माना के जे खेती करने आप सोचा तो पहले भी जमीन की तस्वीर ने जरूर समझा और फिर तस्वीर के हिसाब बीज की किस्म आप बरता
0: तो बात चीता तो मोकली कर ली एक लोक रचना आपने किसान भाई ने और सुना देवा सुजान सिंह खींची और साथियों की आवाज में

0: साथी और साथियों की आवाज रमाई या लोक रचना सुनी और देखो के बात के टीम को लागन है। अब थे जानो के मैं बरछिड़ो यार ठंडो इडी यार ओजू भी उड़ी गए मेड़ो खत भी चालू हो जा है तो ठंडो मौसम है जिसके के किसानों बतराने ने भी जी करवो करे कोई बातचीत और करवो
1: तो गोपाल भाई अब तो फेरो में बतराने पड़सी हां तो लेनी पड़सी सीख
0: राम राम।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती और गृहस्थी FM 100.7 MHz पर। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बज चुके हैं। लीजिए पेशे खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता।

श्रोता भी सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को फिल्म अभिमान में। आप सुन रहे थे मजरू सुल्तानपुरी के शब्दों को सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में। आइए एक बार फिर से सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज फिल्म का नाम मेरे हुजूर।

श्रोता भी सुन रहे थे हसरत जयपुरी के शब्दों को शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में। आवाजें थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। आइए सुनते हैं कुमार सानू और अनुराधा पोडवाल को।

आशिकी फिल्म में श्रोता सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू को। आइए एक बार फिर से सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजें।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: श्रोता, इस वक्त FM चूरू से सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। अगली आवाज आपकी रेडियो सेट पर आप सुन पाएंगे अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: FM चूरू से श्रोता सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। आइए अगली आवाज सुनते हैं लता मंगेशकर की।

श्रोता भी सुन रहे थे राज कमल के संगीत निर्देशन में पी पंकज के शब्दों को। आवाज थी यशुदास की, फिल्म का नाम सावन को आने दो। इसी के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता यहीं संपन्न होता है। FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आप सुन सकेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले समाचार संध्या।

0: न्यूज 8 का प्रसारण होगा रात्रि 9 बजे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: कजरा रे चंचल नैनों में सूरज चांद कड़ेरा।
2: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे। और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। गृहमंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
3: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
2: गृहमंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
3: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
2: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1 करोड़ 18 लाख किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस

0: के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत यूके व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमरीका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमरीका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक के नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि एआई नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एआई बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के

0: भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशूराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। इशू के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। US ओपन बैडमिंटन में किदांबी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदांबी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू तोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और यूएस

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।
1: कार्यक्रम बाता ही चला सुनन हारा सारा है ताड़वा ने भाई मोन गानी सुन
2: और पंकज भाई का न्यू मोखड़ा मोखड़ा
1: राम राम।
2: मोन भाई देखो के अब सी बखत जको ने वो चाल रियो बिरखा को और बिरखाले बखत के मायने थे जानो के एज का मना में भाई साढ़ है सावण है बादू है और अगेती आपने जिकी फसल बाड़ी आप करा जिकी जेठ में भी करा और अब काले तो देखो जेठ कमाई अधिक मास हो रो और बरसात भी सावण हुई मोटा मोटी चारू सिवाना जकाई में बह गया रुखाड़ भी बढ़ गई काम बढ़ गयो और आपा मोटा मोटी जका खेती आला हा जका किसान हा खेती करनिया धन पशु रखनिया बाके लिए ओ जको बखत है ओ बखत रहे तड़ा तड़ी को क्योंकि बरसात होता है आपने सब पहली जकी बात तो अब आवे कि भाई आपा आपनो जको खेत है भी खेत ने जल्दी जल्दी बावा और बाजा भी बात भी यहाँ के भाई टेम पर बावा आगे जल्दी निप जाएगो अपा वाके बतकान है के बंको दे लो रले दूर में जंको खेत पछेता में बंको दे लो रले दूर में जंको खेत पछेता में बीज बखत पर बाया निप जाए इरा बालू रेता में तो टेम सिर अगर बाई तो गयो तो नाज जको ने वो न्यारो रे सिमोन भाई लाग किए बा मोकड़ियो सी बड़ सी सावल बखत पूरो मिल सी अंतर है ना चीजा को पर जिसो आपा सोचा हा सब काम विषय हो इको मतलब आपा चाहवा बखत सारू बरसात जकी है वह हमेशा होती रहा आ नहीं हो गया एक बरसात हो रही एक बरसात हो रही बरसात होती रहे बरसात अगर आपा चाशा तो भी बरसात सारू अपन सावा चेती रखनी पड़ सी अपन ख्यात रखनी पड़ सी अपन सावधानी रखनी पड़ सी
1: बिल्कुल
2: खुद की धन पशु की खेत खड़े की टाब टिकर की छोटे बड़े की सगड़ी
1: बिल्कुल।
2: अब बात सुने जब तो यहाँ लगे बरसात के मायने कितनी सावधानी की जरूरत है बरसात के मायने पग पग पर सावधानी की जरूरत है मोहन भाई किसी परिस्थिति आ जा आपने शामी है तो वो जो टेम है भी टेम की अपन सोचनी पड़ेगी
1: बिल्कुल
2: सोचनी यह पड़ेगी के एक तो सौ पहली जगह बात करा आपा बाबा तो आवे के बरसात के महीने देखो नाण ने जी करे सको
1: बिल्कुल करस उड़ीक रहे में की
2: उड़ीक रहे ने
1: कद देखो बिरखा वेर कद ना हुआ
2: अब एक महीने के छोटो और के बड़ो जी तो सको ही करे
1: सको ही करे
2: छोटा जगह टाबरों में ठेकदी निगे करके देख लियो जद्दा जया नासी ने जो होश तो जया लीला और ये दूजनी छुटन लाग
1: जा दूजनी छुटन लाग जा दांत बाजन लाग जा
2: दांत बाजन लाग जा तो के इको मतलब वो है के फेर जको भी बड़ो है घर को बिन आ सोचने की जरूरत है के अब ओ जगो टाबर है इन टाबर ने और पानी का मान नुआनो या बेनो जको है वो
1: उचित
2: गलत है उचित को नहीं क्योंकि तड़के जे टाबर के जुखाम लाए जैसी परेशानी हो सी बीमार हो गयो बुखार चढ़गी तो डॉक्टर के लेके आपा नहीं बाजनो पड़ेगो फिर भी की खाट पकड़िया बैठिया रहो तो बरसात में नानो जो को है वो कठे ही गलत को नहीं है लेकिन अपन आ जरूर सोचनी पड़ेगी आ जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि जक्के के पानी की लाग है या पानी की लाग नहीं है तो भी जक्को आदमी टाबर छोटो बड़ो बरसात में ज्यादा समय अगर बीज गयो तो 20 समय के बाद में बीमार होने की संभावना है। दूसरी बात है पानी जको है ना पानी पानी के मायने

0: ज्यादा देर बीजना है ना, चमड़ी का जका रोग है बंक होने की भी संभावना रहे मोहन भाई। पानी को और चमड़ी को मेल को नहीं, बोली देर आप बीज जावा नावा जब भी देख लियो कई बार जे गबा दो आप कई देर बीज गया तो बी के बाद में पगा की जगह चामड़ी है भाई अजीब सी हो जाए ठीक है ने? तो ब्यू जका त्वचा संबंधी रोग है जका चमड़ी संबंधी रोग है वह रोग का होने की संभावना बढ़ जाए
1: बोली देर पानी में रहने से। भाई बिया तो ठेको जिया बारिश बढ़िया लागे सगड़ा नाड़ना को भी जिक्र है राइडी देखो बढ़िया ही रहा अपने खेतों के लिए पेड़ पौधा के लिए पर हर चीज को नफो नुकसान दोनों चीज हो
0: वैसा
1: तो बठिन फायदो करे तो दूसरी तरफ जिया थे बता रहा हूँ लंबा टाइम तक नाने से अपना त्वचा संबंधी रोग हो जा टाबर हो जाए सर्दी जुकाम बुखार भी उसके
0: उसके साथ
1: अरबी के अलावा देखो और भी बीमारियां घर का आसपास पानी अगर इकट्ठो है तो भी कमाए देखो मच्छर आने की वजह से डेंगू मलेरिया इसी बीमारियां भी हो जाए तो सागे बारिश के महीने आप बारिश को आनंद ले रहे हैं तो सागे अपन की सावधानी रखनी भी जरूरी है
0: बहुत जरूरी है।
1: खान पीन से संबंधित हो चाहे अपना स्वास्थ्य संबंधित हो इस प्रकार की सावधानियां सागे रखनी चाहिए अपन।
0: भाई खाने पीने की तो यूं है कि देखो के जको मौसम बदले या कोई भी चीज ज्यादा हो बट्टे की शरीर ज्यादा कमा तो शरीर जो वो अनुकूल हो जाए लेकिन जटे पलटे मौसम या कोई भी स्थिति हो तो बट्टे मोन भाई शरीर ना आदत को नहीं हो शरीर ना आदत अगर नहीं है तो बड़े परेशानी आवे भाई एक माहौल में अपना बटे तो किए आदमी अभ्यस्त हो जाए लेकिन जटा आदमी अभ्यस्त नहीं है शरीर आदमी को अभ्यस्त नहीं है बटे किए वो बटे शरीर ने तालमेल बैठाने में समय लेगो समय लेगो तो बटे थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है
1: बिल्कुल
0: क्योंकि बट्ठा आप ज्यादा धक्को कर सै या कोई चीज का मां जा सै तो बटे मोहन भाई वह परेशानी आपा नहीं झेलनी पड़ेगी दूसरे को बटे रोल को नहीं
1: बिल्कुल
0: तो इसलिए मौसम के अनुकूल होना जो को है ना वो ज्यादा जरूरी है।
1: सही बात है
0: ठीक है ना नहीं नाको को लागे
1: कौन लागे सर
0: फिर जो गाय भैंस दो पशु हैं लगभग रहे भैंस जिकी है बी की प्रकृति सी है कि बिन पानी में प्रेम ज्यादा है ठीक है ने पर अगर आप बात गाय की करा तो गाय जिकी है बथे देख लो दो छांट लागते हैं या बेली बेली होने लाग जाए
1: बिल्कुल होने लाग जाए ओट ढूंढने लाग जाए
0: ओट ढूंढने लाग
1: भाई कोई घर की कोई छज्जे की ओट मिल जाए तो भी के नीचे खड़े ला दे पानी में भी जाओ
0: तो धन पशु जको भी के लिए अनुकूल है भैंस जकी है भी की आप बात कर ली भैंस जकी है वह पानी के मायने राज्य हो गए रहे लेकिन गाय जकी है वह बीती दूर जानो चाहे तो जो झंटो छिड़को है परेशानी हो बटे जको पशु चाहे भेड़ है बकरी है बैठे देख लियो बीज के राज्य को नहीं हो तो बन आप जल्दी जल्दी मां बांधा
1: बिल्कुल
0: मानस की आप बात कर ली बिजनेस संबंधी कर ली त्वचा संबंधी कर ली जको सामान्य आदमी है वो मान लो चाहे बीज गयो नानो अलग चीज है मोहन भाई मैं आयो आप नाया नाया मानसिक रूप में आप तैयार हा नाने का आप कपड़ा पहन के फिर नाया पर अगर आप बीज रहा ठीक मतलब आप नाने के लिए तैयार को नहीं परिस्थिति में बीज गया तो अगर आप बीज गया तो बीजेड़े कपड़ा का मैं ज्यादा देर नहीं रहना जल्दी जल्दी जको है अपा कपड़ा ने बदला क्योंकि ब्यू एक तो फंगस होने की संभावना रहे दूसरी बात कपड़ो जको है वो ज्यादा देर बिजेड़ो रहे कोई डील के लाग हो जाए ठीक है ना
1: सही
0: रेसेज हो जाएगा चालने में परेशानी रहेगी और स्वस्थ आदमी जको है भी कभी चमड़ी संबंधी विकार हो सके
1: दिक्कत हो सके
0: हाँ विकार हो सके चमड़ी संबंधी तो आज जरूर आप ध्यान में रखा कि आपने अगर भीज गया गलती से तो ज्यादा देर अपन बिजड़ो नहीं रहना बुजुर्गो वो तुरंत बदलना
1: बिल्कुल
0: और संयोग बस मान लो परिस्थिति साथ कौन दी और अपन जल्दी कपड़ा चेंज कौन कर सकया थोड़ो बड़ो समय लागे और अपन यहाँ लागे लागे के भाई शरीर के मायने बरसात के कारण अपन थोड़ी परेशानी हो रही है या महसूस हो लगी कि मेरी दिक्कत न हो जाए काल ने तो फिर जया कोई काडो है या चाय पीने वालों जो है वो चाय पियो, दूध पीने वालों वो दूध पीस का थोड़ी बड़ी हल्दी वगैरह डाल के दूध के मायने पी जा सके। हल्दी हालांकि जनरली आप चोट के लिए पीवा पर हल्दी जकी बा गिरमास दे शरीर ने इंस्टेंट जकी रिलीफ है बा मिले। बी के अलावा गर्म और क्यों नहीं है तो गर्म पानी भी पियो जा सके चाकी नहीं गुटका गुटका लेके आप गर्म पानी पीस का भी उनके थोड़ो काल जो न्याय हो जा। और भोजन जको है खास तौर तरल जको भोजन हो तरल हालांकि भोजन को नहीं हो तरल बनाना पड़े जो मान लियो बरसात को टाइम है और संयोग घर खिचड़ी की दलियो बने रहे तो बिना आप गर्म दूध के सागे खास काम भी हम घोट लिया तरल होगी या अगर मान लियो दिनों दाबो आप रखने आदमी हाँ और अपन भाई गया कि भी आपने कोई घनी सी समस्या को नहीं घर में तो जे हलवो हलवो घर बन रहे हो या सेकड़ी लापसी बन रही है और बन रही है तो बिना थोड़ी पतली बना लिया अपना लूपरी वाला हिसाब हो या थोड़ी और पतली तो बाकी गले को भी सिकाव हो जाए।
1: बिल्कुल
0: उधर पूर्ति तो वही हो सागे गले को सिकाव हो जाए तो बिका की मल्टीपल फायदा है। बिक बाद में घर निकल के मोहन भाई अगर आप खेत का नहीं चलना भाई आ तो आज नहीं कि अपन खेत में जाए बिना सरजा खेत में तो अपन जानो पड़सी
1: सरयून
0: जानो पड़सी तो बरसात के दिनांक मायने जकी प्राकृतिक आपदा है बाकी संभावना मोहन भाई बनेड़ी रहे।
1: बिल्कुल
0: और खास तौर जकी बिजली पड़ने की जकी घटना ही बैठे देखता हो गौर करता हो तो आपने क्षेत्र में आ सालांग मायने बोली बड़ी
1: बिल्कुल बड़ी।
0: अब पहली तो आप बात आ कर ली कि बरसात में बीजनो नहीं ठीक है तो खेत खड़े के मायने आप जावा जद करीब करीब तो मोहन भाई खेता मायन खुडी झूपड़ो क्यों क्यों अड़खने जकी लाद जा लेकिन सगड़ा में कोला तो बहुत सारा खेत ऐसे ही है जकांग मायन वो साधन को नहीं
1: बीजना पड़े पड़े।
0: अब मैं आवे जद मानस के करे वो जल्दी उन जल्दी के करे कह तो कोई जंटी जंटी नीचे जा नहीं कोई रोड़े नीचे जा आपने यही पेड़ जाता ही। अब मोहन भाई जका विशेषज्ञ ही बे बरसात के समय थे गौर करो तो एडवाइजरी जारी करे।
1: बिल्कुल
0: बिक मायने पहली जकी बात आई हो कि बरसात के टाइम कोई जंटी जंटी हो या खेजड़ी रोडो जो भी अभी के नीचे नहीं
1: जाना नीचे जान नहीं जाना
0: नहीं जाना
1: क्योंकि बिजली वगैरह पड़े का विशेष करके बठी पड़े
0: हाँ खास तौर बठे ही पड़े। अब आप्पा के अगर थोड़ा सो मैं बरसे बरस ताई आप्पा या सोचा ले कोई जंटी जंटी के नीचे चला
1: केबरो की नहीं दिखे कोई ओट दिखे बड़े मत ही पुग जा
0: हाँ केबरो भाई नाको लागे थोड़ा बंच जावा
1: सही है
0: चला खुदा ने खासता मान लो कोई जे हादसा हो गयो तो फिर बाद में तो रह रही है फिर किए
1: बाद में किए
0: तो एक तो ई बात को जरूर ख्यात रखा आप के खेत खड़े के मायने खास तौर बरसात के टाइम में कोई भी जंटी जंटियो कोई भी रोइडो कोई भी कंकेड़ो किकर जो भी है जैठे भी आपा नहीं लगे कि अठे बरसात कम लग गए तो आ दिमाग को जरूर काट दिया अठे बरसात कम लागे सुरक्षित है बरसात तो कम लागे लेकिन सुरक्षित
1: सुरक्षित कौन बड़े
0: बिजली आकाशीय बिजली पड़ने की संभावना जकी है बठे
1: बने रहे
0: और खुले की बजाय।
1: बिल्कुल और एक हिसाब देखो जकी घर की अपनी बिजली कनेक्शन है
0: हाँ हाँ
1: खोड़े के टाइम का महीना अठे भी कई बार दिक्कत हो जाए क्योंकि दीवारा का महीने सील रहे और अठ से अपना सारा कनेक्शन हो तो बहुत बार दीवारा का महीने करंट आ जाए है गेट हो भी करंट आ जाए और ईशा जगह अपना बोर्ड लाग रहा बिजली आ रहा खटका लाग रहा आम करंट आ
0: जाए
1: तो ईशा मौसम में जो बारिश को कोड़ो रहे तो एक महीने को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए बच के रहे।
0: बिल्कुल
1: पगा में जब भी आप कोई बटन चालू कर रहे हैं स्विच चालू कर रहे हैं तो पगा में चंपल पेरेडी रखे या फिर इस प्रकार की ध्यान रखे करंट दौड़ रही है तो भी ठीक करवाओ क्योंकि इसी समस्या बहुत ज्यादा मौसम का महीने।
0: बिल्कुल आप बहुत बढ़िया बात बताई है कि इसी चप्पल या जूता जो भी है जगह करंट रोधियों में बन पैर के ही आप कोई भी काम करा। हालांकि आजकल इसी कोई स्थिति को नहीं कि घर का माइन झूलता जगह तार है बह रहे सगड़े फिटिंग बढ़िया हुए।

0: लेकिन भी बाद में भी जका स्विच है बटन है बम में भी करंट चुको है वो ईटेम आ जाए कोई तार लूज हो जाए स्पार्किंग की समस्या है सब बढ़े तो खास तौर बिजली का मौसम आप भी ध्यान रखा के नंगे पाव नहीं हुआ कोई चीज ने छुआ नहीं और जटे अपा नहीं लगा के रिस्क है तो बटे जका भी बिजली सुधारण वाला मिस्त्री है कारीगर है जका जानकार है बहुत तुरंत संपर्क करके ठीक करवावा। तो बरसात को जो मौसम है बिन इलिए ही ज्यादा संवेदनशील माने मोहन भाई बीमार होने की संभावना ज्यादा रहे चोट लागने की संभावना ज्यादा रहे चोट लागने की कहीं रहे कि पानी को जटे कटाव सी या जटे नालों पर बटे जमीन उबड़ खाबड़ मिल सी
1: बिल्कुल
0: तो बटे अपन सावधानी बरतनी चाहिए चाहे कई बार किए हुए थोड़ो सो पानी पड़ियो हुए और आपा कोई दुपहिया साधन पर हाँ मोटरसाइकिल है या जो भी है बठा पा या सोच लिया के निकल जाशा के फर्क पड़ना है अब निकल जावा और रिस्क ले लिया सवारी है साग है परेशानी है और बा रिस्क मान लो जे गेलो साफ सुथरे निकल गया जब तो ठीक है लेकिन बटे जे कोई खतरे की स्थिति हुई आजकल ओडो ही सिस्टम रहे एक मोटरसाइकिल पर लगभग पूरा परिवार आ जाए ओडा ही परिवार हो एक परिवार एक दो सदस्य हो आलियो जी रिस्क होगी तो गांव गली के मायने जावा यात्रा भी करनी पड़े मोहन भाई इन बिना सब देखना पड़े तो सब ज्यादा जरूरी है कि पानी अगर भरेड़ो है बटे क्या पा निकल रहा तो बटे पूछताछ करके पूरी सावधानी बरत के भलाई पैदल हो बने कोई साधन हो अपने फिर आप बैठेगी निकला लापरवाही नहीं बढ़ता मूर्खता नहीं करा
1: बिल्कुल क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत बढ़िया देखा जी थे करियो पानी इकट्ठो है
0: हाँ।
1: और आप देखा निकल जाए और बहुत बार हादसा हो जाए बड़े बीच में कोई खड्डो हो
0: हाँ।
1: कोई छोटी मोटी नाली आखड़ी हो तो भी को भी अपन बेरो बन रहा है अचानक सब आने से गिर भी सके बिग मैन और ज्यादा गेरो हो तो और ज्यादा दिक्कत हो जाए
0: चोट लाग जाए
1: तो इसी समस्या भी बहुत ज्यादा हो तो जब भी बारिश का मौसम आप निकला तो सारी चीजा की सावधानी रखनी जरूरी है और बातचीत कहानी किस्सा अपना चालू रहेगा बीस से पहले आप करवाऊ अपना तालवा को मनोरंजन
2: भली।

जी साढ़े मास में मथुरा त्यागी गोकुल ने ध्यायो ध्यायो साढ़े मास में मथुरा त्यागी रे गोकुल ने ध्यायो रे ध्यायो साढ़े मास में मथुरा त्यागी गोकुल ने ध्यायो जी धुर धुर मरे।

भदौ मासिय दू घर आए इंदर धर रायो धर रायो भदौ मासे आए इंदर धर रायो हाँ भदौ मासे ये दू घर आए इंदर धर रायो यदि चिमकण लगी बिजली हाँ चिमकण लगी बिजली मारो मनड़ो हर सायो बिरखा अबिरखा

आसो जा मैं आस लगी जब उद्धव संदेशो लियायो लियायो आसो जा मैं आस लगी जब उद्धव संदेशो लियायो आसो जा मैं आस लगी जब उद्धव संदेशो लियायो ए जी कार्तिक मैं घर आए श्याम कार्तिक मैं घर आए श्याम माता देव की को जायो बिरखा ओ बिरखा

आज चंद्र सखी की बीनती कद तो मासो गायो, चंद्र सखी की बीनती जद तो मासो गायो रे गायो, चंद्र सखी की बीनती तो मासो गायो। ये जी धन धन राधे बड़ भागने, हाँ वो धन धन राधे बड़ भाग।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: तो देखो मोहन भाई, अभी आप संदेश सुनिया और संदेश ऊपरली एक बढ़िया सी लोक रचना सुनी आप। बिरखा बरसो मेरा राम चौमासो आयो, भवनलाल सोलंकी साथिया की आवाज में। और बातम बातम बखत भी हो गयो है अपने कार्यक्रम को बड़ा माता बखत बखतरी बात का नहीं तो बड़ा फिर बखत बखतरी
2: बिल्कुल बड़ो सा।

0: हाँ तो देखो पंकज भाई के गांव के मायने गट्टा पर बूढ़ा बुजुर्ग बैठे रहन।
1: के सीसीटीवी कैमरे की बात करोगे ते?
0: हाँ तो बे के है के खूब उम्र ले डर और खूब अनुभव रवन भाई लगा अपन के भाई आंको टाइम गयो आंकी फैशन जी आप चेंज होती रहे तो अपन ये लगे गुजरे जमाने का है पुरानी
1: वे आप
0: बातें करे।
1: अपनी धरोहर है मोहन भाई, और सीसीटीवी में यहां बोलियो के बनने गांव गली की पूरी समाचार थाने मिल जाऊ, क्योंकि बे रोज की
0: बिल्कुल
1: बटे बैठे घूम फिर के सगली बात जकी है वो आने को बटे केंद्र होवे, पूरे गांव का समाचार अच्छा नाऊ मरियो जियो खुशी गमी सब बटे मिल जाए, और
0: सब
1: पूरे गांव की ख्यात राखसी टाबना टिकना का उठ बैठना लेके और कोई की ओछी माड़ी तक सब बटे जानकारी मिले।
0: सारी बातों को बंद ध्यान रहे। और
1: हाँ
0: देखो जोर की बात ई फोन से भी फर्क पड़े बे ई चीज नहीं रख तो बाकी याददाश्त बहुत जोर की रहे
1: हाँ
0: सब बाकी याद रहे की कन क्वेठर के बात हुई सब रिश्ता नाता सब
1: हाँ
0: ई चीज में भी खोड़ा कौन रहे तो बन के अनुभव खूब बांका कह कर न के बाल दौड़ा तावड़म को नियोड़ा
1: सही है।
0: अनुभव हो बन तो बांग नहीं मैं बैठी एक दिन
1: अच्छा
0: दादू जी रागन
1: हाँ
0: तो बे कोई कन्ने सागारो बैठी और वो किए गए हर चीज का मैंने बढ़िया काम करेड़ो रहे तो बिम तो कह मैं करियो मैं करियो अरे कोई न्याऊ काम हो जाए जब वो भी ने टाल देगा तो मेरे को
1: अच्छा
0: जब बे बिन कहो के भाई मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू जब
1: हाँ
0: मैं
1: हाँ
0: कन्ने बैठे हो मैं भाई मेरा बात समझो कुछ
1: समझो
0: रहे
1: बने
0: तो
1: आई को अर्थ तो
0: मन
1: बताओ।
0: बताओ तो श्री जब बे कहो के बेटा बताऊं तो ना पूरा अर्थ सहित तो बताऊं एक कहानी के तरीके को बताऊं तो बे बात बताई कई एक टाइम की पुराने टाइम की बात एक सन्यासी बनियो नयो नयो गांव का
1: अच्छा
0: मायने
1: हाँ
0: और गांव के बाहर जाकर एक जगह है जगी वो चारों मेर करके बाड़ और कुटिया बना लिया आपकी
1: अच्छा
0: और थनबेरो का आपने जो आदमी संन्यास ले लियो और भक्ति भाव में लाग जाए भी कि आप खूब आओ भगत को
1: हाँ आ बात तो
0: खूब मान
1: है,
0: सम्मान करा भी को क्यों
1: आ बात सही है।
0: तो इस कम हम वो लाग गए बड़े भगवान ने याद करे और आपको बाकी जगह काम है भी छोड़ दिया आपका जीवन का ग्रस्त जीवन ने छोड़ दियो
1: हाँ।
0: तो भगवान की सेवा में लाग रही हो और आपकी कुटिया जचाली बड़े बढ़िया है बड़े बगीचो बना लियो जोरदार
1: हाँ
0: ज्यादा ध्यान बगीचा में रहते भी को
1: हाँ अच्छा
0: बढ़िया पेड़ पौधा फूल चोखा लगा लिया ऐसा जोर का कन्ने की कोई निकला तो सुगंधी आओ बड़े
1: लियोसा
0: इसी जोर की धीरे धीरे गांव का जगह लोग है वे भी सुबह शाम जाना चालू हो गया धूनी लागल लागी
1: वे तो
0: बढ़िया
1: जा
0: बड़े
1: जाइसी देखो
0: हैं
1: साहब।
0: बढ़िया धूनी लागती जब बाबा ने उपदेश भी देव लगो भाई
1: ओ
0: जिसो ज्ञान हो विशोबान बताओ लगो कि दुनिया में कुछ भी हो ने आपा की गुण करनिया
1: सही है।
0: परमात्मा करे सुख
1: हाँ उपले मर्जियों चाले।
0: हाँ आपा की गुण करा अड़पत्तो भी हेल रियो ने आपा सांस भी ले रिया बस सब ऊपर लगी मर्जी से
1: सही बात है।
0: न्याऊ बढ़िया जो भी हो रही है सब करणियो वही है
1: हाँ अपना
0: करता
1: कोई
0: वही
1: डोल
0: है
1: को नहीं,
0: आपा खाली दृष्टा देखा आपा खाली बाकी सब कुछ वो ही करे ओ
1: बात तो
0: ज्ञान
1: सही।
0: वो सह गांव आराम देवे सह का बात भी समझ में आओ के
1: बाबूजी
0: महाराज
1: बात
0: जी
1: सही गए।
0: बाबू जी बात बढ़िया कहे
1: हाँ
0: सह के दिमाग में आ गया बात और वो बढ़िया आपको बगीचों से चाइड हो रहा गए बिना गर्व भी बगीचा के ऊपर कभी
1: हाँ हाँ
0: ईशा जोर का फूल पूरे गांव में कोई उगार को राखियो
1: आर
0: तो
1: बार
0: ना
1: को
0: बड़े
1: नहीं।
0: बड़े को जो को सम्राट हो वो
1: हाँ
0: भी बड़ा आया कर तो भी का बगीचन देख करना और वो भी
1: लिया
0: घूमया कर तो और वो भी वाह वाह कर तो को वाह
1: फिर तो देखो कायदो बने भी को।
0: के शानदार बगीची लगा रखी है भगवान ऊपर में देखे परमात्मा बांक जच्ची के यार भगत जोर को
1: तकड़ो।
0: तकड़ो होगी एक कर परीक्षा लेके देखा तो भी परीक्षा लोने की सोची और एक गाय के रूप में आया नीचे धरती पर
1: अच्छा
0: और आके एक दिन महाराज जी तो सुबह पूजा करा पूजा पाठ के मायने लाग रिया विलीन हो रिया
1: अच्छा
0: अरबे के बगीचा में बड़गी

0: गाय यार बड़के बड़े जो भी फूल पौधा फल लाग रहा है खागी इन बिन दान उजाड़ दियो
1: लियो सा।
0: थोड़ी देर बाद में भगत जी बार आया तो देखियो उद्यान उजाड़ियो पड़ियो पूरा
1: झाड़ आई होगी
0: झाड़ आई जोर की अर बे करतार दृष्टार सो क्यों भूल गया
1: लियो सा
0: है कापा की नहीं करनी है भगवान करनी है सारी बात निकलेगी दिमाग सर फल सर पीछे एक डांग पड़ियो जोर कोसो और वो काट गए फटकारी पांच सात एक इतन बा गाय अंटा चिताई
1: लियो सा
0: गाय मुर्गी अब एक बार तो झाड़ में मार दी और बाद में जब गुस्सो शांत हो देखो कि गाय कौन रही जो हाथ पग कांपा लगा कहो तो गऊ हत्या को पाप लगा
1: लियो सा
0: पाप चढ़ गयो पाप ही नहीं महापाप हो तो गऊ हत्या। अब धीरे धीरे दुनी को टाइम ओवर गांव का एक एक एक एक, एक सुर सुर के धीरे धीरे आश्रम का न्याणा चलू है रात देखेगा महाराज जी हो के करो महाराज जी हो के करो तो गऊ हत्या होगी वो तो पाप ही नहीं हो तो महापाप हो गयो
1: लियो सा।
0: अब महाराज जी डर गया एक बार तो काम पर लगा हाथ पक पर धीरे सी बाद याद आई बा को ज्ञान है जुकवाडा जुको भी सदा दिया करता सारा कभी ओ मैं थोड़ी करी ओ तो परमात्मा है करनी मैं तो खाली दृष्टा हूं तान पत्तो इतना दिन से समझा रही हूं करता आपा थोड़िया कर सब भगवान है उसके गाय न मरनो होगो परमात्मा ने मारनो होगो एक मोक्ष को टाइम हो गयो
1: बानो मेरो लागे
0: बानो लागे मेरो तो मैं कुण करनी पंग बात भी जची दी गांव कभी
1: बाबू जी कह रहे
0: बाबू जी कह रहे सही कह रहे और बाबू जी सदा ही बात कह रहे भाई आज पहली बार ये तो शुरू से ही बात करी है कि भाई जो भी करे वो भगवान करे आपा कौन आपा तो खाली देखनी आपा तो वही हो देखा बाकी तो परमात्मा ही है करनी
1: सही है
0: जचकी बांग बात और धीरे धीरे बात आई गई कर दी अर महाराज जी आपका ओटा बगीचा का मायन लाग गया तन मन धन से ओजू भी ने सजान लाग गया ओजू पेड़ पौधा है जगह उगान लाग गया फूल जगह उजाड़ दिया बे ओटा उगा रहा भगवान भी सोचो का आदमी तो सीधो को नहीं हो आपा तो सोचो भगत जोर को है अपनो टेडो है एक कर और परीक्षा ले आएंगी भगवान के करियो के दूसर का दूसरो रूप लेके अगली बार कोई संत को रूप लेके
1: अच्छा
0: हाथ का मैंने त्रिशूल अर घूमता फिरता भी आश्रम के ना है आगे आश्रम का आगे त्रिशूल रूप के जोर से कोई अलग
1: अलग निरंजन है।
0: अब मैंने आवाज सुनता ही भगत जी है जगह बाजर है यार आके कहो महाराज जी आओ आओ आओ हाथ जोड़िया बांका का पधारो मेरी बगिया का मैंने आया मैंने आता ही कहो कभी मैं तो कन्ने की निकलन लाग रही
1: हूँ
0: और ई बाग का मैंने खुशबू ऐसी जोर की आई फूल मेरू
1: रहे
0: कौन
1: गयो
0: मैं सोचियो मैं भी देखू
1: सही बात
0: और मैं देखना आ गयो जो कि बिल्कुल थे बहुत बढ़िया काम करियो
1: सही टाइम पर आया हो
0: सही टाइम पर आया हो थे और मैं बार की टाइम एकदम फ्री हूँ आओ थान दिखाऊं ओ पौधो है जगह मैं फलाने दिन लगाए और ओ पौधो मोगरा गुए ओ मैं नींबू को पेड़ लगा रखी हूँ अठा नार को लगा रखी हूँ एकदम राजी हो रही और एक एक चीज गिनाओ क्योंकि वो मन से करे बटा काम पूरा पूरो भी को ध्यान बढ़ी भाई भक्ति भाव तो करे वो बात भी तो ठीक करे
1: ज्यादा ध्यान
0: पर मोह भी को बिन्न लाग गयो और सागे थाने बेरो गए बोला लोग मानन लाग जाए तो थोड़ो अहंकार भी आ जाए घमंड भी आ जाए गांव का सा आदमी मानने लगा भी की बात उपदेश दे तो वो कह तो भी मान जाए तो थोड़ा बहुत अहंकार भी आया भी आदमी में रह तो राजी हो गए बताओ अब बे के गए आया तो भगवान या रूप लेके जब कहो ओ पौधो कौन लगायो का मैं लगायो ओ कौन लगायो का वो भी मैं लगायो का सोच ले बेटा तू ही लगायो ये का मैं ही लगायो का ओ पूरा बगीचो का वो पूरा बगीचो ही मेरे ही लगायो जग बहुत बढ़िया बात है कह के अर ओटा जान लग गया जाता जाता भी न कहो के मैंने एक बात कहनी है भगत जी थान कहा बोलो महाराज के मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू
1: तो
0: जग महाराज में समझे गो नहीं बात जग बात तो तू समझ जाएगो गाय मरी साक्षी तू और वृक्ष लगाया साक्षी भगवान है
1: सही है
0: अब तू सोच लिया बात
1: हाँ कटे कई यारी को के मतलब नहीं पड़े
0: के जिस दिन तू गाय मारी जब तो तू कह दियो के परमात्मा मरवाई है
1: हो बाग के चाय बिना पत्तो ही को नहीं
0: आला आज तू वृक्ष लगाए रखे है जितो पेड़ पौधो वृक्ष लगाए तो जोर को इक खतर के मैं लगायू
1: इको मालिक मैं
0: इको मालिक मैं तो इया कह के रा बात समझा।

0: ठीक है, इस दिन से अब बात चालू हुई।
1: भाई देखो भैया, देखे न मोहन भाई, जब तो बात तो ऐसे ही है, मानस को स्वभाव हो बस की बात को नहीं, आदमी जो है ना वो जटे वाह वाही हो ने, बटे तो वो खुद लूटनो चाहे
0: बिल्कुल,
1: और जटे बुराई हो ने वह दूसरे पर गिरनो चाहे, और एज की बात ही ने एक है तो कहानी के रूप में, लेकिन ए समाज ने दिशा दिखाने वाली बात है
0: बिल्कुल,
1: के वास्तव में मानस जको है ने वो ई चीजों जुड़ेड़ो है बिकी मूल प्रवृत्ति में बिके स्वभाव में, के वो जट्ठे भी बड़ाई को या बड्डम को वगो ने बट्ठे वो आके गो का ओ मेरो
0: बिल्कुल,
1: और जट्ठे ही लगे ने के ई बात भी नीचो देखनो पड़ सके या आ बात माड़ी है ओ मैं कौन करियो
0: सरक जे धीरे सिंह
1: ओ तो ओनो ही हो या भाई मैं मत तो कौन हूं करनी हो अर्जे होवे मेरे करियो होवे जद और को नहीं हो रहा फिर
0: हां आ तो होनी ही रोनी होनी का बड़ चल
1: हां तो इलिए स्वभाव ते जकी चीज होने बे चीज मानस में आसी आसी
0: बिल्कुल,
1: फिर चोलो जे आप पैर लियो मान लियो चोलो बदल लियो तो भी चोलो बदलो सोच कौन बदले ठीक है ने सोच तो विशी रहनी है और ओ इंसान को स्वभाव ये बढ़ाई जी की बस चोखी बात
0: बिल्कुल लगा
1: बात और भी करांगा बखत बचेड़ो हेताड़वा को मनोरंजन करावा सुनावा एक मीठी सी लोक रचना
0: बिल्कुल सुनाओ सा।

0: हाँ तो देखो, सीमा मिश्रा और साथिया की आवाज में बहुत ही मीठी सी लोक रचना सुनी है आपा भी। और इम पहले देखो पंकज भाई, आपा बात करण लाग रिया के जो क्यों अबार बारिश को मौसम है, इक महीने की सावधानी रखनी चाहिए। पछा आपा देखो कहानी किस्सा के ऊपर आ गया, खूब सारी बात करी आपने तालवा से।
1: देखो मोहन भाई, अपनी बात, अपनी कहानी, अपना किस्सा ए सफल जदों जद अपना हितालु ज कहीं बे अपन बतावे,
0: बिल्कुल।
1: और बे बतावे कहीं बे अपन पानड़ी लिखे, और पानड़ी लिखने भी बना अपने पत्ते की जरूरत रहे।
0: सही बात है।
1: तो हितालुओं आ अर्ज करा कि भाई कार्यक्रम थाने किशोक लागे मान जरूर बताओ, थारो जको भी सुझाव है वो कार्यक्रम में मैं शामिल करांगा, जकी भी कमी है वह मैं सुधार करांगा।
0: बिल्कुल।
1: पानड़ी लिखण माथे पतो मारो नोट करो, कार्यक्रम बाता ही चाले,
0: कार्यक्रम बाता ही चाले,
1: द्वारा केंद्र निदेशक,
0: द्वारा केंद्र निदेशक,
1: आकाशवाणी चूरू,
0: आकाशवाणी चूरू।
1: पिन संख्या 331 बिंदी बिंदी एक।
0: भाई एकदम ई पते के ऊपर आपा ने लिखेगा तो सीधी आपने के ना होगी, और जो भी कमी बत्ती है
1: हाँ
0: वे आपा ने बताओगे, और आपा बिल्कुल सुधार करांगा।
1: बिल्कुल
0: भाई
1: बिल्कुल
0: कार्यक्रम में कोई और बात है, कोई और
1: भाई, कोई
0: चीज जोड़नी है
1: हाँ जोड़नो
0: तो
1: है, कोई
0: जोड़ांगा।
1: घटानो है, कोई भी देखो समय को विभाजन है, अपा एक महीने कोई जो कोई चीज शामिल और करनी चाहिए या जकी चीज जरूरी नहीं है बस शामिल कर दिया, ए इससे जका सुझाव है भाई आपने हेतालवा को नु आसी तो आपा निश्चित रूप में वहां पर गौर कर सर, आपने कार्यक्रम ने जको है वो सोनो बनाने की कोशिश कर सर, क्योंकि हमेशा आपने कोशिश आई रहे मोहन भाई कि आपने जो कार्यक्रम है वो आपने हेतालवा के मन ने भाणो चाहिए,
0: बिल्कुल।
1: और वो जिद्दी बावगो जब आपा हेतालवा की जकी कसौटी है भी के ऊपर खरिया उतरने की कोशिश करांगा, या जकी आकी बात है अपना जका हेतालुआ मांग मन की जकी बात है बापा ये कार्यक्रम में शामिल करांगा।
0: बिल्कुल।
1: बात और भी करा लेकिन घड़ी आगे बढ़ने की इजाजत देरी को नहीं है, तो आज को कार्यक्रम बाता ही चल रहा है, अठाई ताई फेरों मिलन ताई पंकज भाई ने
0: और मोहन भाई ने
1: सीख दियो करा।
0: राम राम, राम।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम बातें ही चले FM 110.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं श्रोताओं के ईमेल्स पर आधारित राजस्थानी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गोरबंध। गोरबंध सुनने वाले तमाम श्रोताओं को नमस्कार। मनीष भारद्वाज का कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सीमा मिश्रा और साथियों की आवाजों के साथ।

सीमा मिश्रा की आवाज में बेहतरीन गीत चंद्र गोर्जा पसंद करने वाले हमारे आज के श्रोता हैं ग्राम मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताइडे बसंत राम और इनके साथी। इसी गीत को पसंद कर रहे हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य, कोयल, नानक चंद। आप लिखते हैं शिवाजी कॉलोनी रोहतक से। पीयूष सिक्का, कुनिका सिक्का, डुग्गू सिक्का, मंगल, जनागल, रोशनी, अंकुर, इंदु, डॉक्टर सुनील, आप सभी लिखते हैं चक 5 MD पतरोड। इसी गीत को पसंद करने वाले हैं मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल, मानस, गंगा देवी। आप लिखते हैं तख्त घर छत्तीसगढ़ से। राष्ट्रपाल गजभई, राधिका, बेबी, अनिष्का, तन्मय, आप सभी इस गीत को पसंद कर रहे हैं डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से। इसी गीत को पसंद करने वाले हैं राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित, तानिया नारंग, बठिंडा रोड मंडी डबवाली से। संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, आप सभी लिखते हैं बागपत उत्तर प्रदेश से। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या, सुचा सिंह, जयपाल यादव, आइए आप तमाम श्रोताओं की पसंद पर ये गीत सुना, अगली पसंद की ओर चलते हैं।

पणिहारी लोकगीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं बिहारी कॉलोनी शहादरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य। चंडीगढ़ से लिखते हैं राहुल खुराना, रचिता केशु, रिधान खुराना। इसी गीत को पसंद कर रहे हैं शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, दुर्गेश्वरी जायसवाल। आप लिखते हैं जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से। सुराना मोहल्ला बीकानेर से नरेंद्र सुराना, कांतिलाल, शरद, मयंक, विमल, विमल अभाणी, लालेंद्र, होलेंद्र आचार्य, रोनी जैन, प्रमोद दसमानी। इसी गीत को पसंद कर रहे हैं मां नर्मदा श्रोता परिवार शिव कोटी ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश से राकेश, पप्पू सेन, निशा, ओम, सपना, धर्मेंद्र, मुकेश, द्वारिका बाई सेन, मनीषा बाई चौधरी। बड़वा से पुष्पेंद्र रावल, इंदिरा फूलचंद और इनके साथी। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी, निमित आहूजा। ग्राम फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद, पुष्पेंद्र डूडी। लोकू कॉलोनी लोहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी, सुरेंद्र, बरखा, योगेंद्र और नरेंद्र चिंडालिया। श्रोताओं, इस वक्त FM चूरू से आप सुन रहे हैं ईमेल्स पर आधारित राजस्थानी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गोरबंद। आइए सुनते हैं हमारे श्रोताओं की अगली पसंद।

गीत पसंद कर रहे हैं नेकी राम रिवार्ड, संतोष ममता कल्पेश शैलेश रिवार्ड, गांव सैनसवास जिला झुंझुनू से। गांव नाईवाला हनुमानगढ़ से लिखते हैं वेद मिड्ढा अलका मिड्ढा। डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभैये राधिका बेबी अनिष्का और तन्मय। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से लिखते हैं दीपेश वर्मा पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा। पदमपुर श्री गंगानगर से लिखते हैं मेहर अरोड़ा ममता कीर्ति और भूमिका। गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब से लिखते हैं प्रियांश बगड़िया ओम रजत गरिमा बगड़िया। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से लिखने वाले हमारे श्रोता हैं मोहम्मद फरमान सलमान इरफान इसरार नरगिस खातून। मोरटक्का माफी जिला खंडवा से लिखते हैं जगन्नाथ पटेल कमला अंतिमा ज्योति शुभम

देवकिशन, भावना मनमानस और कनिका पटेल। दतरिंगी भाटपारा छत्तीसगढ़ से लिखते हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि और नौखेलाल वर्मा। इसी गीत को पसंद कर रहे हैं कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी, सुशील योगी, बब्बू डब्बू और साथ में हैं राजू मिगलानी और बबीता। आइए आप तमाम श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं अगली फरमाइश।

श्रोताओं, अपने रेडियो सेट पर इस वक्त आप सुन पा रहे हैं आपके ही ईमेल्स पर आधारित राजस्थानी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गोरबंध।

पद्मा टाकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से इसी गीत को पसंद कर रहे हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र शाह, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर, अमनदीप, आप लिखते हैं सेक्टर 7 मोहाली चंडीगढ़ से।

0: कालका से पसंद करने वाले हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज। इसी गीत को पसंद किया गया है विक्रम कड़वासरा। आप लिखते हैं गांव कलाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से। साथ में लिखते हैं सचिन सतीश योगेश कड़वासरा। गांव जाखोद से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश, दीपक, पूजा खटक। बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, तानिया नारंग। फवारा चौक वार्ड नंबर 6 सिरसिला, जिला चूरू से पसंद करने वाले श्रोता हैं संदीप सिंह सोनगरा, सोमल, कार्तिक, प्राची और इनका समस्त सोनगरा परिवार। साथ में लिखते हैं सचिन चौहान रामसरा वाले, ददरेवा से गंगा शिम्पा, उषा अवनी, अक्षय और हाशिम कुरैशी। गांव नथाना पंजाब से पसंद कर रहे हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से पसंद कर रहे हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। आप तमाम श्रोताओं को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ईमेल भेजा।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
0: आइए श्रोताओं, आज के कार्यक्रम की आखिरी पेशकश सुनते हैं।

इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से पसंद कर रहे हैं ओम प्रकाश राय, उषा, अमित, हैप्पी, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी, प्रांजल रॉय, रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, ग्राम पोस्ट बहिना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, निधि, निखिल, संजय, अंशु, यश, प्रियांश और शिवम वर्मा, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया और नमन ढींगिया। आइए आप तमाम श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं एक गीत।

सीमा मिश्रा की आवाज के साथ ही आज का गौर बंद कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। श्रोताओं, आप भी अपनी पसंद का कोई भी राजस्थानी लोकगीत हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का एड्रेस है gorbanchuru@gmail.com। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए अपने साथी मनीष भारद्वाज को। FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत।

कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के तहत श्रोताओं आज आप सुनेंगे उस्ताद बिस्मिल्ला खान का शहनाई वादन। आज आप सुन रहे हैं राग पुरैया धनश्री।

अभी श्रोता सुन रहे थे शहनाई वादन राग पुरैया धनश्री। आइए सुनते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का शहनाई वादन राग दुर्गा।

श्रोता भी सुन रहे थे उस्ताद बिस्मिल्ला खान का शहनाई वादन। इसी के साथ हमारा आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

FM 107 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। श्रोता आप सुन सकेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 11:05 पर। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलैंड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।